0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके, और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, योग की ओट पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। मैं समता आपके लिए हर रोज सुबह एक नए आसन, एक नए व्यायाम को लेकर के आती हूँ। उसी श्रृंखला में आज हम करेंगे सब लोग मिलकर के उदर प्रदेश अंग की क्रियाएं, यानी लेट कर किए जाने वाले आसन, जिसमें सबसे पहला जो आसन आता है, यानी सबसे पहली जो एक्सरसाइज आती है, वो है उत्तान पादासन। आइए अब हम मिलकर शुरू करते हैं। अभ्यास क्रम एक, पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं, दोनों हाथों को कमर के अगल बगल में रखें, हथेलियां जमीन पर स्थिर करें, सांस लें और बाहों पर हल्का दबाव देते हुए दोनों पैरों को एक साथ जमीन से लगभग 60 डिग्री के कोण पर उठाएं। दोनों पैर एक हाथ एक साथ मिले हुए हों व पंजे सामने की तरफ तने हुए हों। एक से दो मिनट इसी अवस्था में रुकें, मूल अवस्था में वापस आएं, श्वास प्रक्रिया सामान्य रखें। श्वास क्रम व समय, पैरों को ऊपर उठाते समय श्वास रोकें एवं नीचे आते समय श्वास को छोड़ें। ऐसा 3 से 5 बार हम कर सकते हैं। सावधानियां जान लें, कमर या रीढ़ आदि में किसी प्रकार का तेज दर्द हो तो आप यह आसन बिल्कुल ना करें। आइए दोस्तों, अब हम लाभ जान लेते हैं। पहले स्थान से हटी हुई नाभि को ठीक करता है, यानी अगर आपका नाभि से संबंधित कोई भी, पेट से संबंधित अगर कोई कष्ट है, तो पहले स्थान से हटी हुई नाभि को यह आसन ठीक करता है। पेट की चर्बी को कम करता है। कब्ज के लिए रामबाण है। पीठ, कमर एवं पेट की मांसपेशियों को सुदृढ़ता प्रदान करता है। वायु विकार का शमन करता है। उत्तान पादासन में आपको विशेषकर जब आप ये आसन करेंगे तो पेट से संबंधित, पीठ, कमर और मांसपेशियों से संबंधित सभी आसनों की श्रृंखला आती है। आइए अब हम इसमें क्रम दूसरा कर लेते हैं, यानी कि गति में उत्तान पादासन। पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं, अगल बगल में रखें, सांस लेते हुए बाएं पैर को इतना उठाएं कि समकोण की आकृति निर्मित हो। कुछ देर रुकें एवं श्वास छोड़ते हुए वापस मूल अवस्था में आ जाएं। इस प्रकार बाएं पैर से 5-6 बार रखें। इस प्रकार बाएं पैर से 5 और 6 बार करें। यही क्रिया दाएं पैर से करें। अब यही क्रिया दोनों पैरों को एक साथ उठाकर करें। आइए दोस्तों, हम लाभ जान लेते हैं। उदर प्रदेश, पाचन तंत्र, मेरुदंड, पीठ के निचले हिस्से की पेशियों को मजबूत करता है, लोच व लचक पैदा करता है, चर्बी दूर कर जंघाएं एवं नितंब सुडौल बनाता है। गति में उत्तान पदासन जब हम करते हैं तो पेट से संबंधित सारी समस्याएं तो ठीक होती हैं, साथ में जंघाओं पर जो कि एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी धीरे धीरे कम होता है। आइए दोस्तों, अब हम तीसरा आसन कर लेते हैं। पैरों द्वारा वृत्त बनाना, यानी पाद वृत्तासन। शवासन में लेट जाएं, पहले दायां पैर सीधा उठाएं और उसे दाएं तरफ से बाएं लाते हुए वृत्त बनाएं। ऐसा 10 से 15 बार करें। अब उसी पैर से बाएं से दाएं तरफ घुमाएं। अब बाएं पैर से उपरोक्त क्रिया करें। दोनों पैरों को यही क्रिया दोहराएं।
अर्थात एक पैर को हवा में गोल आकार देना है, फिर दूसरे पैर को गोल आकार में हवा में एक आकार देना, और अंत में दोनों पैरों को एक साथ गोलाकार आकृति में हवा देना है। श्वास क्रम क्रिया करते समय श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहेगी। लाभ: कमर दर्द में राहत, नितंब मजबूत और सुडोल बनते हैं, पैर की समस्त मांसपेशियों को लाभ मिलता है, मोटापा कम करने के लिए यह सबसे अच्छा आसन है, पेट और जंघाओं की अतिरिक्त चर्बी को दूर करता है। आइए दोस्तों, अब हम इसी श्रृंखला में अगले आसन की ओर चलते हैं, जो कि पाद संचालन क्रिया यानी कि साइकिल चलाना है। श्वासन में लेटें और कल्पना करें कि आप साइकिल चला रहे हैं। पहले एक पैर उठाएं और साइकिल चलाने जैसा आगे पीछे ऊपर नीचे करें। 10 से 15 बार सीधा पैंडल एवं उल्टा पैंडल मारें। अब दूसरे पैर से पहले पैर की पुनरावृत्ति करें। दोनों पैरों को साइकिल पर बैठकर चलाने की क्रिया करें। अब दोनों पैरों को एक साथ जोड़ें और साइकिल चलाने की क्रिया को दोहराएं। एक बार 10 से 15 बार सीधे पैंडल और फिर उल्टे पैंडल घुमाएं। यह प्रक्रिया दोस्तों आप 10 से 15 बार लगातार कर सकते हैं। साइकिल चलाने की इस प्रक्रिया से पेट की चर्बी, जंघाओं की चर्बी और नितंब की जो चर्बी है वो बहुत ही जल्दी ही ठीक होती है। आइए अब हम इसके लाभ जान लेते हैं। उदर प्रदेश को लाभ होता है। टखने, पिंडली, घुटने, जांघ, नितंब व कमर, इन सभी अंगों को लाभ मिलता है। जोड़ों को खोलकर मांसपेशियों को सुचारू करता है। अपान वायु का निष्कासन करता है। मोटापे को कम करने में सहायक सिद्ध होता है। जंघाओं एवं नितंबों को सुडौल बनाता है। थकान होने पर यह बिल्कुल न करें और पैरों को जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना ही पीछे ले जाएं। आइए अगले आसन की ओर चलते हैं, जो कि है सुप्त पाद संचालन क्रिया। जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं, हाथों को अगल बगल में रखें, बाएं पैर को घुटने से इतना मोड़ें कि जंघा का हिस्सा पेट से स्पर्श करें। अब पैर को सामने की तरफ सीधा करें, जमीन से 2 फीट ऊपर और जमीन पर रख दें। यह क्रिया 5 से 10 बार पहले बाएं पैर से और फिर दाएं पैर से करें। अब यही क्रिया विपरीत दिशा में करें। पहले बायां पैर जमीन से फिर 2 फीट ऊपर उठाएं और फिर पैर को घुटने से मोड़कर पेट से लगाएं और जमीन पर सीधा रख दें। यही क्रिया दाएं पैर से करें। समय: यह सभी क्रियाएं 5 से 10 बार कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम सुप्त पाद संचालन क्रिया के लाभ जान लेते हैं। उदर प्रदेश में स्थित चर्बी को कम करता है, पाचन तंत्र मजबूत कर कब्ज को दूर करता है। नाभि अपने स्थान से हट गई हो तो उसे यह ठीक करने में सहायक सिद्ध होता है। तो दोस्तों आज के हमारे जो आसन थे वह थे लेट कर किए जाने वाले आसन और उदर प्रदेश में अंग क्रियाएं जो संचालन की जाती हैं उनसे संबंधित आसन। यदि आप निरोगी हैं तो सदा निरोगी बने रहने के लिए योगा अभ्यास करें, और यदि आप रोगग्रस्त हैं तो निरोग होने के लिए योगा अभ्यास अवश्य ही करें और स्वस्थ व सुंदर हो जाएं। इसीलिए दोस्तों करें योग, रहें निरोग। तेरा आहार ही तेरी औषधि हो और तेरी औषधि ही तेरा आहार हो। आप शायद इस लाइन से परिचित नहीं हैं, लेकिन आज इसी लाइन को मैं आपको आ रही हूँ परिचित कराने, यानी आपकी योगनी समता। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो योगशाला में, जो कि आपकी आर्य समता लेकर के आती है।
ये अभी आपने जो लाइन सुनी ना, तेरा आहार ही तेरी औषधि हो और तेरी औषधि तेरा आहार हो। प्राकृतिक चिकित्सा का एक बहुत बड़ा सिद्धांत यही है कि आहार ही ऐसा किया जाए जो औषधि का नाम दे, यानी औषधि को नाम देने के साथ साथ उसे काम भी दे और जिससे शरीर के विकार स्वयं दूर हो जाएं। शायद आपको ये भी पता होगा कि पूर्णता सिद्धांत भारतीय विद्वानों के मत से मिलता हुआ है। इसे भारतवर्ष की विद्याओं का सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सक माना गया है, क्योंकि उस 2500 पुराने युग में भारत की सभ्यता और संस्कृति का संसार के सभी भागों में प्रचार तब तक हो चुका था। इसलिए इस प्रकार जब तक मनुष्य प्रकृति की गोद में पलते खेलते थे, उनका रहन सहन भी प्राकृतिक नियमों के अनुकूल था, तो वे अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक ढंग से ही करते थे। पर मध्यकाल में जब बड़े बड़े राज्यों और साम्राज्यों की स्थापना हो गई, तो उन्हें बड़े आदमियों के रहन सहन में भोग विलास की अधिकता होने लगी और उनकी पूर्ति के लिए भांति भांति की कृत्रिम उपायों का प्रयोग भी करना पड़ा, जिसके चलते साधारण लोग भी उनकी नकल करने लगे। नकली चीजों का इस्तेमाल अधिक सुंदर और आकर्षण बनने के कारण से उनके स्वरूप पर पड़ने लगा, उनके शरीर पर पड़ने लगा, उनके मस्तिष्क पर पड़ने लगा, जिसका सीधा असर उनके अपने रहन सहन पर भी होने लगा। इसीलिए आज जो मैं आपको बताने आई हूँ वो है प्राकृतिक योग। योग में प्राकृतिक का क्या समावेश है? प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली का अर्थ होता है प्राकृतिक पदार्थों, विशेषज्ञ प्रकृति के 5 मूल तत्वों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारण का उपाय करना। विचार पूर्वक देखा जाए तो यह कोई ऐसी गुहा विषय नहीं है। जब तक मनुष्य स्वाभाविक और सीधा साधा जीवन व्यतीत करता रहता है, तब तक बिना सोचे विचारे भी प्रकृति की इन शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें लाभ होता आया है। जब वह मनुष्य स्वाभाविकता को त्याग करके कृत्रिमता की ओर बढ़ता है, अपने रहन सहन तथा खान पान को अधिक आकर्षण और के स्वास्थ्य संबंधी उलझनें बढ़ने लगती हैं और समय समय पर उनसे शरीर में कष्टदायक प्रक्रियाएं होने लगती हैं, जिसको रोग कहा गया है। इन रोगों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार की चिकित्सा प्रणालियां आजकल बहुत सारी प्रचलित हो गई हैं, जिसमें हजारों तरह की औषधियां, बहुत सारे ऐसे कृत्रिम उपयोगों को लेकर के हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाने की ओर चलते जा रहे हैं। लेकिन शायद आप ये जानते हैं कि प्रकृति अपने आप में एक डॉक्टर का काम करती है। जैसे हम बिना किसी दवा के लिए किसी भी रोग को पूर्णता नहीं ठीक कर सकते हैं, हमें उस दवा की आवश्यकता होती होती है और हम दवा लेने के लिए जाहिर सी बात है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक वैसे ही चिकित्सा यानी प्राकृतिक चिकित्सा हमारे लिए उतनी ही लाभप्रद है जितना कि हम अपने शरीर के लिए बाकी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मानसिक चिकित्सा, उपवास, वायु चिकित्सा, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा और आहार। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि सभी चिकित्साएं हमारे लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इसी के साथ साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ क्या होता है। प्राकृतिक चिकित्सा ये अन्य चिकित्साओं में श्रेष्ठ माना गया है। जैसा कि हम हर एक रोगी को दवाई देकर ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, उनसे दवाइयाँ, इंजेक्शन इत्यादि का उन पर प्रयोग होता है और वह उपचारों का आश्रय लेता है। रोग के कारण रोगी में जो वह लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें दूर करता है और उन लक्षणों के विलुप्त होने पर डॉक्टर का कार्य समाप्त हो जाता है। डॉक्टर रोगी के संबंध में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। इस चिकित्सा से कुछ दिन के लिए रोग दब जाता है और वह नष्ट हो जाता है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा जीवन की एक वो पद्धति है जिसे हम अपने आप में स्वस्थ रह करके उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला कुदरती इलाज के मूल तत्व पंच महाभूत। शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु नाम के 5 तत्वों से हुआ है, जो पंच महाभूत कहलाते हैं। इनमें सबसे आवश्यक तत्व वायु है, जिसके बिना एक क्षण का अस्तित्व ही नहीं है। वायु जीवन है, तेज तत्व शरीर को शक्ति पहुंचाता है। जल से रक्त संचालन का कार्य ठीक प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम आज बताएंगे चिकित्सा पद्धति में वायु का प्रयोग
क्या होना चाहिए। वायु का प्रयोग, प्राकृतिक जीवन के अनुवायु को हवा का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। वैसे हवा तो हम सभी लेते हैं, किंतु ईश्वर का प्रसाद तो स्वच्छ ताजी वायु में प्रकट होता है। घर के चार दीवारी या गंदी नालियों और कूड़े करकट से भरे मोहल्लों, बाजारों या कारखानों में स्वच्छ हवा मिलना कठिन है। अतः हमें चाहिए कि प्रातःकाल किसी उद्यान, जंगल या शहर से दूर टहलने जाएं और ताजी हवा से फेफड़ों को खूब भरें। प्रातः सायंकाल स्वच्छ हवा में दीर्घ उच्चारण यानी दीर्घ मंत्र उच्चारण का प्रयास करना चाहिए। ये कसरत करने से फेफड़े सशक्त रहते हैं। वायु अधिक लेने से रक्त शुद्ध होता है, जीवनी शक्ति का विकास होता है। आपके मकान, खिड़कियों और रोशनदानों से युक्त जो भी हवा आती है उसे हमें स्वतः लेते रहना चाहिए। सोते समय कमरे में यथेष्ट वायु रखें। बिस्तर पर पड़कर आप कपड़ों से मुंह ना ढकें। दूसरी बुरी आदत मुंह से सांस लेने की होती है। काफी लोगों को ये देखा गया है कि सोते समय उनका मुंह खुल जाता है या उनकी आदत में आ जाने से उनका मुंह वह स्वयं ही खोल लेते हैं। या चिकित्सा में वायु मुंह से लेना सबसे खतरनाक साबित होता है। नथनों की राह सांस लेने से वायु को स्वच्छ होने पर अवसर मिलता है और उसे जितना गर्म या ठंडा होना चाहिए वो वैसे ही ली जा सकती है। वायु के संपर्क में अधिक से अधिक रहने की आदत डालिए। अपना अधिक समय उद्यान, सरिता तट, खुले स्थानों, सैर सपाटे, जंगलों, प्रकृति के आंचल में रहकर व्यतीत कीजिए। वायु का जितना अधिक उपयोग कर सके कीजिए। हवा लग जाएगी और हम बीमार हो जाएंगे, यह निरा भ्रम ही है। शुद्ध, स्वच्छ और ताजी वायु तो प्राण दाता है, उसे अपने अंदर कार्य करने दीजिए। प्रकृति की यही सबसे बड़ी एक अनोखी हमारे लिए उपहार है, जिसे हम समझ ही नहीं पाते हैं और उस उपहार से वंचित रह जाते हैं। प्रकृति की आश्चर्यजनक शक्ति हमारे लिए स्वयं चलकर आती है और हमें उसका स्वागत करना चाहिए। प्रकृति की इच्छा अनुसार मनुष्य को पृथ्वी के साथ निकट संबंध रखना चाहिए। कमरे के फर्श, पत्थरों या हरी घास पर नंगे पांव चलने से शक्ति प्राप्त होती है। जमीन पर सोने से जो सुख और शांति मिलती है, वृक्षों तथा घर की शैया पर वैसी दुर्लभ है। रात्रि में पृथ्वी पर सोने से निद्रा और शरीर में शांति होने के कारण से बलदायक भी मिलता है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सोते समय हमें अपने नथनों से यानी अपनी नासिका से ही श्वासों का लेना निरंतर जारी रखना चाहिए। मुंह से जितना हो सके श्वास नहीं लेनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का शरीर पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पृथ्वी, आकाश, जल और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम सभी निवृत्त रहते हैं। प्रकृति की इच्छा अनुसार मनुष्य को पृथ्वी के साथ निकट संबंध रखना पड़ता है और चाहिए भी। कमरे के फर्श, पत्थरों या हरी घास पर नंगे पांव चलने से शक्ति प्राप्त होती है। जमीन पर सोने से जो सुख शांति मिलती है, वृक्षों तथा घर की शैया पर वैसी दुर्लभ है। रात्रि में पृथ्वी पर सोने से निद्रा और शरीर में शांति होने के कारण पृथ्वी का बलदायक प्रभाव सूर्य स्नान या नंगे बदन सोने की अपेक्षा अधिक चमत्कारिक होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि हम किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, किसी प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाते हैं, तो उनके पास एक उपाय ये जरूर होता है कि आप थोड़ी देर नंगे पैर जमीन पर चलें। इसका कारण सीधा यही है कि गुरुत्वाकर्षण हमारी शरीर के पैरों के तलवों से होकर के हमारी पूरी आंतरिक शरीर में जाता है, जिसके कारण से हम स्वस्थ रह पाते हैं। दैनिक जीवन में पृथ्वी के साथ आप निकट संबंध निम्न के प्रकार से बना सकते हैं। नंगे पांव चलकर पृथ्वी तल से सीधा स्पर्श होता है। जर्मनी में तो इस प्रकार का एक आंदोलन तक आरंभ किया गया था। नंगे पैर रहना स्वाभाविक और आरोग्यप्रद है। नंगे पांव चलने वाला पांव को दृढ़ करता है और पृथ्वी से प्राण शक्ति खींचता है। नंगे पांव चलने से रुद्राभिसरण बराबर होता है और हमारी मानसिक स्थिति भी ठीक होती है। कई रोगों में पृथ्वी पर सोने पर चमत्कारिक लाभ होता है। सोने के लिए ऐसी भूमि पसंद करनी चाहिए जहां घास स्वाभाविक जीवन प्रारंभ करने वालों को कुछ दिन हवादार पर्ण कुटी में सोना चाहिए। आनंदी और फुर्तीला रहने के लिए यथासंभव प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। प्रकृति में
पशु कम सोते हैं किंतु गहरी निंद्रा सोते हैं। हम भी यथाशय आराम के लिए नव जीवन संचार के लिए विश्राम करना चाहिए। थोड़ी और आवश्यक नींद लेने से दृढ़ता, दीर्घायु एवं नव जीवन आता है। अधिक नींद लेने से आलस्य बढ़ता है, आयु और समय का भी नाश होता है। कृत्रिम शिथिलता अधिक निंद्रा का परिणाम हो सकती है। साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे प्राणायाम जो कि पृथ्वी से जुड़े हुए होते हैं। आपने कभी सोचा है या सुना होगा, आपने सुना होगा कि हम जब भी योग के लिए

जिसको करने से सीधा का सीधा पृथ्वी का जो लाभ है, पृथ्वी से निकलने वाला गुरुत्वाकर्षण है, उसका लाभ हमें निरंतर मिलेगा। तो आइए कुछ ऐसे प्राणायाम जो मैं आपको बताऊं। सबसे पहला तो आपको करना है, तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं मात्र दो ऐसे प्राणायाम जो सीधा सीधा पृथ्वी से जुड़ करके बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला है ध्यान योग मुद्रा। ध्यान योग मुद्रा यदि हमें पृथ्वी से निकलने वाले गुरुत्वाकर्षण को लेना है तो हमें किसी मैट या चटाई पे नहीं बैठना है। दूसरा है शवासन। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कई बार कि सब प्राणायाम योग करने के बाद में शवासन जरूर करना चाहिए। जमीन पर आराम से शरीर को ढीला करके लेट जाना होता है और सारी प्रक्रियाओं को आंतरिक स्थिति से यानी मनोस्थिति में उस पूरे योग प्राणायाम को दोहराना है। तो इसी तरीके से पृथ्वी का कोई जानवर मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करता, मनुष्य ही इन मादक पदार्थों का विष लेकर सेवन करता है और प्रकृति के द्वारा सजा पाता है। पृथ्वी पर अधिक से अधिक बैठिए, सोइए, चलिए, विश्राम कीजिए। पृथ्वी की आर्द्रता या सर्दी से न डरकर घूमने फिरने या यात्रा के लिए जमीन पर बैठकर या सोकर आराम करने का अभ्यास चाहिए। उत्तेजित मस्तिष्क वाले आदि वातग्रस्त मनुष्यों को शांति पूर्वक पृथ्वी पर बैठने और सोने से अधिक लाभ मिलता है। रात्रि के समय प्रकृति से एक नया जीवन प्रभाव निकलता है। रात्रि के समय पृथ्वी की शक्ति अति प्रबल हो जाती है। तो आइए हम आपको कुछ और ऐसे योग से आपको बताने जा रहे हैं जो कि हम घर में बैठ करके ही इन सारी चीजों को कर सकते हैं। तो छोटे छोटे योग आसन को अगर हम घर बैठ के करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा आराम मिलता है और प्रकृति से योग में हम पृथ्वी से भी जुड़ पाएंगे। सबसे पहले मैंने आज आपको बताया कि अगर हम ध्यान योग सीधा पृथ्वी पर ही बैठ करके करेंगे, यानी कि कोई मैट, चटाई या चादर बिना बिछाए हुए, तो उसका सीधा लाभ हमें मिलता है, क्योंकि पृथ्वी से निकलने वाले गुरुत्वाकर्षण और योग के माध्यम से होने वाली शक्ति आपस में मिलकर एक नई ऊर्जा का संचार करती है। और दूसरा है शवासन, जो सब योग को करने के बाद में एकांत चित होकर के पृथ्वी पर लेट जाना है और मानसिक तौर से जितने भी योग आसन आपने किए, कोई भी आसन किया है, उसे अपने अंदर उसको दोहराना है। कोने जमीन पर स्वच्छ बालू 5 इंच स्तर के रूप में बिछाकर उसे बिस्तर के रूप में प्रयोग किया, उन्हें अत्यंत लाभ हुआ। ऐसे बिछौने पर खुले आकाश के नीचे सोना श्रेयस्कर है, क्योंकि आकाश में अद्भुत शक्ति होती है तत्व को ग्रहण करने के लिए। खुले आकाश के नीचे सोना श्रेयस्कर है, क्योंकि आकाश में अद्भुत शक्ति है आकाश तत्व को ग्रहण करने के लिए मैदान में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। प्रकृति के साथ योग करते समय आकाश यानी स्काई स्पेस का विशेष स्थान होता है। आकाश विशालता, शांति, स्वतंत्रता का प्रतीक है। जब हम खुले आकाश के नीचे योग करते हैं तो हमारा मन सीमाओं में मुक्त होकर विस्तार का अनुभव करता है। योग दर्शन में आकाश को पंच महाभूत में पहला तत्व माना गया है। यह शून्य नहीं बल्कि संभावनाओं से भरा विस्तार है। गहरी श्वास को लेते समय आकाश की ओर ध्यान लगाने से मन हल्का हो जाता है, तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। खुले आकाश के नीचे किया गया योग श्वास को गहरा और स्वाभाविक सा बनाता है, मन को स्थिरता और स्पष्टता देता है, नकारात्मक विचारों को छोड़ने में मदद करता है, आत्मा को प्रकृति से जोड़ता है। और जब हम आकाश की ओर देखते हुए योग करते हैं तो भीतर भी वैसा ही विस्तार महसूस होता है। प्रकृति के साथ योग में आकाश हमें यही सिखाता है, खुला होना, स्वीकार करना और संतुलन में रहना। इसी के साथ में कुछ ऐसे आसन और प्राणायाम जो आकाश के नीचे बैठकर के हम कर सकते हैं, जो कि हमारी सारी नकारात्मक विचारों को छोड़ने में मदद करता है। उसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, अग्निसार और ऐसे तमाम 8 प्राणायामों में मुख्य सूर्य नमस्कार भी हम आकाश के नीचे यानी खुले आकाश में हम कर सकते हैं। और इसी तरीके से कई ऐसे योग प्राणायामों की श्रृंखला में हम अपने आप को जोड़ते हुए प्रकृति के साथ योग में जुड़ते जाएंगे। प्रकृति से जुड़ने का मतलब है कि हमारे

0: हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक।
1: प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

भाइयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
2: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: अच्छा ये बताओ बच्चों, चांद पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने। शाबाश। और दूसरा कदम किसने रखा? और दूसरा कदम भी उसी ने रखा होगा ना, आखिर वो लंगड़ा थोड़ी ना था।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान. और आज है सैटरडे. सैटरडे मतलब कि भाई साफ फंडे, क्योंकि वीकेंड का दिन होता है और ये दिन बहुत ज़्यादा ख़ास हो जाता है अपने आप में, जब वापस से हम मिलने आपसे आ जाते हैं आपके सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल शो में. सो चलिए, इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले कि भाई सैटरडे का स्पेशल थॉट क्या है जो आज आप तक आने वाला है, और इसके बाद ऐसे बैक टू बैक ज़बरदस्त सूदिंग से सॉन्ग सुनते रहेंगे अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में. फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम. ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन.
1: Now you're listening Good Morning Gonda with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, सो आज का थॉट सैटरडे की तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि आज का थॉट सच में बड़ी ही प्यारी बात कहता है। सो जानना नहीं चाहेंगे कि क्या कहता है? चलिए, सो आज का जो थॉट है वो कहता है कि प्रेम पाने की इच्छा से पहले, प्रेम पाने की इच्छा से पहले प्रेम देने की कला को सीखो। प्रेम पाने की इच्छा से पहले प्रेम देने की कला को समझो, ऐसा कहना आज के थॉट ऑफ द डे का। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि हर शख्स कहीं थका सा है, हर शख्स कहीं रुखा सा है, हर शख्स कहीं उलझा सा है, हर शख्स कहीं जल्दबाजी में है। उन सभी चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए हर शख्स चाहता है कि उसको प्रेम किया जाए, उसको प्रेम मिले। होता नहीं है कि प्यार से कोई डील करे तो हम कहते हैं अरे वाह कितना प्यारा इंसान है, कितना अच्छा इंसान है। तो शायद वो जो हम इंसान होते हैं, हम जानवर होते हैं, हमारे अंदर अगर हम प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर जानवर हो या फिर इंसान हो, हर किसी को प्रेम अच्छा लगता है। इवन पौधों में भी अगर आप ये देखेंगे कि भाई जितनी प्यार से छूते हैं उतना पौधे खिल जाते हैं, उनको भी एहसास टच होता है। ऐसे इंसान को होता है, इंसान भी चाहता है कि उसे प्रेम किया जाए, क्योंकि ये सबसे अजीम व तरीन फीलिंग होती है। यानी ऐसी भावनाएं विकसित होती हैं अंदर जिसमें आप कह सकते हैं कि आप परम आनंद में होते हैं। जब माँ प्यार से आपको पुचकारती है तो भी वही फीलिंग आती है, जब पिता आपको गले से लगा लेते हैं तो भी आप परम आनंद में होते हैं, जब भाई आपका कहता है आंखों में आंखें डाल करके मैं हूँ, और जब बहन आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हटा देती है। इस तरह से कहीं से भी कैसा भी प्रेम मिलता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रेम पाने से पहले प्रेम देने की कला सीखना होगा हमको। क्योंकि हम कैसा भी बिहेवियर करें हमारा रहे और हम एक्सपेक्ट करें, उम्मीद करें कि हमको प्रेम मिलेगा, तो शायद नहीं। जैसी वाइब होती है हमारी, जैसे हम होते हैं वैसे ही हमको लोग मिलते हैं, उसी तरह हमसे बातचीत भी करने लग जाते हैं। सो प्रेम पाने की इच्छा से पहले, अगर ख्वाहिश है प्रेम पाने की, प्रेम देने की कला को सीखना ही होगा, तभी हम प्रेम पाने की इच्छा पाल सकते हैं और तभी हम उस भावनाओं की अनुभूति कर सकते हैं। सो यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। अब ज़रा सोचिए कितना प्यारा थॉट ऑफ द डे है, और ये प्यारा सा थॉट ऑफ द डे कहता है कि भाई अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि प्रेम देना भी एक कला है, है ना? सो आज का सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे कैसा लगा हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं। और फिलहाल सुनिए इस खूबसूरत से गाने को, जिसको फिलहाल तो हमने रोक दिया था, लेकिन इस थॉट को सुन लेने के बाद ये गाना आपको और भी ज्यादा पसंद आने वाला है। स्टे ट्यून्ड।

0: हाँ जी, क्या बात है। इतना खूबसूरत सा गाना, इतना प्यारा टाइम और ऐसी शानदार मॉर्निंग में आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग शो का आरजे अदनान। सो चलिए, आपने ट्यून किया हुआ है फ्रीक्वेंसी से, अपनी कार में सुन रहे हैं इस वक्त आप ड्राइव करते हुए, और साथ ही साथ आप अपने खेतों में काम करते हुए लगा रखा है आपने अपना ट्रांजिस्टर, या फिर आप मौजूद हैं ऑफ कोर्स रेडियो गार्डन से, भारत के अलग अलग कोनों से, और साथ ही साथ पूरी दुनिया से सुन रहे हैं आप रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सीधे जुड़ करके। तो चलिए, आप सभी का वेलकम करने के साथ ही साथ चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या मैसेजेस आ गए हैं चैट बॉक्स पर आपकी जानिब से। स्टे ट्यून्ड।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

तो भाई सबसे पहले जो आया है मैसेज वहाँ से शुरुआत करते हैं। सविता दुबे जी हरखापुर गोंडा से लिखती हैं, सुप्रभात, हम आए थे लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से सामने नहीं आ पाए थे बाहर गज़ल में जी। एंड अनुष्का जी हैं श्रावस्ती से, लिखा है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू, हाउ आर यू, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, आप कैसी हैं। एंड प्रीति जी बहराइच से मौजूद हैं, आपने लिखा है सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, वेलकम करते हैं आपका मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आशु मिश्र जी लखनऊ से आ गई हैं चैट बॉक्स पर, और आपने भी लिखा है सुप्रभात सर जी, सुप्रभात आपको भी। वैसे हम बता दें कि ये जो मैसेजेस हम पढ़ते हैं ये रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के एप्लीकेशन से सुनने वाले श्रोताओं का, जो वो चैट बॉक्स में लिखते हैं वो लाइव हम गोंडा FM के RJs तक पहुंचता है। सो अगर आप भी अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, सवालों का जवाब देना चाहते हैं और डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आ जाइए भाई 89.6 FM की एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, जो कि एंड्रॉयड यूज़र्स को मिल जाती है प्ले स्टोर पर और आईफोन यूज़र्स को ऐप स्टोर पर मिल जाती है। इसी पर हम आपसे रابطہ करते हैं चैट बॉक्स में आ करके। इसी चैट बॉक्स में फ़िलहाल हमने जो आज का थॉट ऑफ द डे आपको बताया था उसका रिस्पॉन्स आया है, आप लोगों ने लिखा है उसके बारे में, क्या लिखा है आइए बताते हैं। सबसे पहले जो लिखा है वो सविता दुबे जी ने लिखा है, और क्या कलम से लिखा है, वाइट कलर से लिखा है, और लिखा है कि आज का सुविचार आप सा प्यारा जैसा लग रहा है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। वैसे हम आज वाइट शर्ट में आए हैं तो मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट ब्राइट सा हो रखा है माहौल पूरा। एंड इसके बाद अगला जो मैसेज है वो है अनुष्का जी का फ्रॉम श्रावस्ती, वेरी नाइस थॉट ऑफ द डे सर, थैंक यू सो मच कि आपको भी आज का थॉट पसंद आया और कुछ नया अलग ज़रूर लगा होगा, जैसे हर रोज़ का थॉट कुछ नया दिन बनाता है हमारा। ऑसम थॉट लिखा है बहराइच से प्रीति जी ने, और लिखा है सर्वोपरि होता है वही शख्स जो सभी से प्रेम करता है लेकिन देते नहीं सब उसको प्रेम, इसलिए प्रेम करते रहना और दरिया में डालना। ओहो क्या बात कह दी आपने, प्रेम करते रहना और दरिया में, वैसे आसपास गोंडा के दरिया भी नहीं है, बहुत दूर पड़ जाएगा सो प्रेम बस करते रहिए, और कहीं ना कहीं ये बात सही है कि आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते लेकिन ये बात भी सच है कि जब आप प्रेम देते हैं तो सबसे ना सही लेकिन आपको बहुत ऐसे जगह से है जहाँ से प्रेम ज़रूर मिल जाता है। एंड आशु जी ने लिखा है वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच कि आपको भी थॉट पसंद आया, और आपने भी 100 करके बता दिया कि कितना अच्छा लगा आज का थॉट ऑफ द डे। एंड गुड मॉर्निंग का आया एक और मैसेज, गुड मॉर्निंग टू यू। सो आप सभी लोगों के वेलकम करने के साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी होंगे आज आपसे पूछे जाने के लिए, इसलिए ज़रूर बताइएगा। फिलहाल पूछना ये था कि भाई अभी जैसे कि गर्मी स्टार्ट हो गई है, देखते देखते आज 9 मई हो गई है, और मौसम की बात करें तो अभी भी मौसम जैसे लगता है कंफ्यूज्ड है कि ठंड लाना है या गर्मी प्रॉपर ले आना है, लू चलाना है या ठंडी हवाएं बर्फीली हवाएं चलाना है, अभी मौसम खुद कंफ्यूज्ड है। सो आप क्या कंफ्यूज्ड हैं कि नहीं है, आपने रेगुलर नहाना शुरू किया कि नहीं, या अभी तक आप सोच रहे हैं कि प्रॉपर वाली जब तक गर्मी नहीं पड़ेगी सीरियल वाइज तब तक हम पर डे नहाना अभी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं अगर आपके मन में भी ऐसा थॉट है तो आप भी बता सकते हैं। फिलहाल मौसम के साथ आपकी कंफ्यूजन तो नहीं बनी हुई है, बस हम इतना ही जानना चाहते हैं। आपने ट्यून कर लिया गोंडा FM 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको

वाटा सवाल ये था क्या भाई साहब? वैसे ये सच में ऐसा सवाल आता है कि नहीं आता मन में? जैसे ही ज़रा सा मौसम बदलता है ऐसा लगता है यार नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए। हालांकि ऐसी बात नहीं है, हम नहा के आए हैं, कल भी आए थे और ये शपथ लिया है कि फ़िलहाल अब मई स्टार्ट हो गया, अब तो गैप नहीं होना है अनटिल एंड अनलेस उस वक्त नहाने से भी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम ना कर रहे हो कि भैया कोई ऑफ़र दे दे, चलो घूम टहल के आते, तो पहले वहीं जाएंगे। हाँ सच में मजाक नहीं।

हाँ जी, अब इस गाने को जरा सुनिए और इस गाने को सुनने के बाद क्या ख्याल आता है, शायद आपको समझ में तो ना आए इसके लिरिक्स, लेकिन न जाने क्यों इस गाने में सिंगर की आवाज से आप बहुत सारे इमोशंस जरूर ले पाएंगे और आपको कुछ अलग सा लगेगा। तो फिलहाल ये गाना यंगस्टर से लेकर के हर कोई काफी ज्यादा पसंद कर रहा है, जिसका नाम ही है बैरन। चलिए इस गाने को सुनिए, उसके बाद आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए। आने के बाद हमारे पास बहुत कुछ है संडे स्पेशल से पहले सैटरडे में आपके लिए।

0: अभी फिलहाल इधर नीट का एग्जाम हुआ था, जिसके बारे में आपको पता जरूर चला होगा। इवन गोंडा में भी एग्जाम चुकी हुआ था और काफी ज्यादा भीड़ भी नजर आई थी। लेकिन इन्हीं सबके बीच में एक ऐसी स्टोरी चल रही थी नीट में ही, जो अभी तक आप तक नहीं पहुंची होगी। और वो स्टोरी कोई आम स्टोरी नहीं थी, काफ़ी हटकर थी। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्टोरी थी जो आप तक खबर भी नहीं गई और वो नीट में ही चल रही थी। चलिए आपको हम बताते हैं कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

हाँ जी। सो भाई 70 साल की उम्र में नीट का एग्ज़ाम दे करके अशोक बहार ने ये तो साबित कर दिया कि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। कहीं और नहीं, पास में ही 120 किलोमीटर दूर लखनऊ की हम बात कर रहे हैं। सो लखनऊ के रहने वाले अशोक बहार ने कभी एक खाद कंपनी ने मार्केटिंग हेड के रूप में ये रह चुके हैं और इन्होंने साल 2000 में ही अपनी ही स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन इनके मन में एक सपना हमेशा अधूरा रह गया डॉक्टर बनने का। सो उनका ये सपना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, इनका पूरा परिवार मेडिकल फील्ड से जुड़ा है। इनकी वाइफ डॉक्टर मंजुल बहार एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं और अमेरिका में काम कर रही हैं और परिवार में कई और भी डॉक्टर्स हैं। अशोक जो है पिछले कई साल से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी माँ चाहती थी कि वो डॉक्टर बने क्योंकि उनके फादर यानी पिता डॉक्टर रामलाल बाहर भी लखनऊ के एक वरिष्ठ चिकित्सक थे। सो इन्हें दवाओं की अच्छी समझ है लेकिन बिना डिग्री के ये लोगों का इलाज नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने तय किया कि उम्र चाहे जो भी हो डॉक्टर बनने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो नीट जैसे एग्ज़ाम्स जिसमें लाखों यंगस्टर्स बैठते हैं उसमें 57 साल की उम्र में शामिल होना सिर्फ एक हिम्मत नहीं बल्कि एक साफ इरादा भी दिखाता है। सो ये साबित करता है कि सीखना और कुछ नया करना कभी बंद नहीं होना चाहिए। इनका एम जो है सिर्फ करियर बनाना नहीं बल्कि लोगों की हेल्प करना है और अशोक बहार जी ने हमको ये सिखाया कि कोई सपना सच में आपका है तो वो कभी पुराना नहीं होता। जो आप दिल से चाहते हैं उसके लिए सही वक्त का इंतज़ार बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है तो शुरुआत करने की। सो भाई ये रहे हमारे अशोक बहार जी जिनके बारे में हमने आपको बताया। लखनऊ के ही रहने वाले हैं और इस एज में भी उन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की कि किस तरह से वो 70 साल की एज में भी वो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। जब जिस एज में तो इंसान सोच भी नहीं सकता, कहता है घूमने जाना भी बेकार है, वहाँ एग्ज़ाम देना, और कैसा एग्ज़ाम, इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम्स में से एक माना जाने वाला नीट का एग्ज़ाम। सुफात ये नहीं है, बात ये है कि जो सपना देखा था उसके लिए आज भी कर रहे हैं। हालांकि हो सकता हो कि आपके मन में किसी कोने में हो कि अरे इनसे होगा भी नहीं, बेशक ना हो, लेकिन उस चीज़ को जीना, उसके लिए कोशिश करना, क्या ये ज़िंदगी नहीं है? हम हमेशा पाने की बात करते हैं कि हमको कुछ मिल जाए, मुझे लगता है मिलने से कहीं ज़्यादा उसको पाने की जो कोशिश होती है उसमें जो वक्त जाता है, उसमें जो हमारी एफर्ट्स लगते हैं, हमारी जो कोशिशें होती हैं वो लाइफ बनाती हैं, वो लाइफ का एक्सपीरियंस देती है, एक ऐसा शानदार एक्सपीरियंस कि हमने कोशिशों में अपना वक्त गुजारा ना कि छोड़ दिया था। जी हाँ। सो ये बात जान करके आपको कैसा लगा? अशोक बहार जी के बारे में हमें कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। और फिलहाल मुझे लगता है कि ऐसे शख्स, ऐसी शख्सियत जो हम जैसे ऐसे कई सारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। एंड अभी आपकी जो भी एज हो, आप टीनेजर हो, आप हो एकदम यंग, आप हो अधेड़ या आप भी हो गए हो 60-70 के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ऐसा सपना जो पहले देखा था जो अभी भी है उसके लिए सोचना बंद करके करना शुरू करना चाहिए। कोशिशों में वक्त गुजरे इससे खूबसूरत और क्या नज़ारा हो सकता है ना? जी हाँ बेशक। और आपकी कोशिशों के लिए अभी से ही मेरी तरफ से ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट टू यू। ज़रूर होगा, कोशिश करिए, शुरुआत करिए, और एज इज़ जस्ट अ नंबर।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
9: Mixing in the house.

0: एक शख्स थे जिन्होंने लिखा है और कुछ यूं लिखा कि कल मेट्रो में एक आदमी दिखा और उसके फोन स्क्रीन ने सब बता दिया। जी हाँ, ये एक शख्स ने लिख करके दुनिया को बताया। आखिर क्या लिखा है उसने, आइए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो कल एक शख्स ने बताया सोशल मीडिया पर कि उनको एक आदमी दिखा मेट्रो में और उसके फोन स्क्रीन ने सब बता दिया। वो शख्स सीट पर बैठा था, थका हुआ, चुपचाप, फोन हाथ में था और व्हाट्सएप खुला हुआ था। ऊपर कॉन्टेक्ट का जो नाम था उस पर लिखा था PAPA, पापा। मैसेज टाइप्ड था, लिखा हुआ, पैसे थोड़े ही लेट भेज पाऊंगा इस बार। फिर उसने रुक करके पूरा मैसेज जो टाइप किया हुआ था उसे डिलीट कर दिया। कुछ सेकंड बाद नया मैसेज लिखा जिसमें लिखा था, सब ठीक है, टेंशन मत लेना, और वो मैसेज सेंड कर दिया। फोन पॉकेट में रखा और बाहर देखने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तब बात समझ में आई कि कुछ लोग सच नहीं बताते, वो बस घर को बचाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स खुद रखते हैं ताकि घर वाले कम से कम चैन से सो सके। और हाँ, हर सच जो है सब ठीक है नहीं होता, यानी अगर कोई कहता है सब ठीक है तो इसका ये मायने बिल्कुल भी नहीं कि सब सच में ठीक है। कभी कभी वो जिम्मेदारी होती है जो हर बात पर नहीं समझी जा सकती। कुछ लोग बोलते कम हैं और कदम ज़्यादा उठाते हैं। सो आज घर मैसेज कर लेना, सब ठीक है, पूछने के लिए नहीं, सुनने के लिए। फिलहाल ये छोटी सी जो बात थी जो कि हमने कहीं पढ़ी, बड़ी खूबसूरत लगी। कई लोग सच में अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ही चलते हैं, चुपचाप ना स्ट्रगल करते हैं, मतलब वो इतनी खामोशी से होता है कि उसको आप समझ नहीं सकते। जैसा कि इस शख्स के बारे में उस शख्स ने लिखा कि किस तरह से फादर से बात करते हैं व्हाट्सएप पे, घर वाले प्रॉब्लम में होते हैं और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम में ये होते हैं लेकिन ये ज़ाहिर नहीं होने देते। और ये कहानी उस शख्स की नहीं है, ये कहानी आपकी भी है, क्योंकि ऐसा आपने भी कई बार मैसेज किया है, कॉल पर बोलते बोलते कुछ आप रुक गए हैं और आपने फिर उसके बाद कुछ और सोच करके कुछ और बोला ताकि लोग इत्मीनान में रहें, ताकि वो चैन से सो सके, कर सके जो कुछ उन्हें करना है, क्योंकि ये कहानी आपकी है। वैसे कहानी कैसी लगी आपको? क्या ये सच में ऐसा होता है? और क्या ऐसे ही हमारे आसपास चलते फिरते हमारे ऑटो में, हमारे ई रिक्शॉज में, हमारी गाड़ियों में, बसेस में, ट्रेन्स में, क्या सच में हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो चुपचाप मैसेजेस के ज़रिए अपनी स्ट्रगल्स को चुपचाप लड़ रहे होते हैं और कहीं ना कहीं अपना फ़र्ज निभाने की कोशिश कर रहे होते हैं? अगर ऐसा है तो सोचिएगा, उसके बाद बताइएगा कि हाँ, सच में ऐसे लोग होते हैं क्या? सच में ऐसे कुछ दिखता है क्या आंखों के सामने, जो वैसे तो नज़र नहीं आता लेकिन गौर करने पे कुछ कुछ समझ आने लग जाता है?

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: बेटा राजू, क्या तुम्हें पता है कि एलोवेरा क्या होता है?
2: हाँ मैडम जी, जब एक पंजाबी विस्की का पैग अपने बड़े भाई को देता है तो कहता है एलोवेरा चीयर्स।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: Yo, boys, I am single.

0: बिना फ्यूल वाली गाड़ी और बिना दुकानदार वाले दुकानें, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना। हालांकि बिना फ्यूल वाली गाड़ी तो अभी नहीं आई है, बैटरी से चलती चलती, लेकिन बिना दुकानदार वाली दुकानें ज़रूर हैं। अब आप सोचेंगे बिना दुकानदार वाले दुकान? जी हाँ, दरअसल ये दुकानें चलती हैं अपनी बैटरी पर नहीं, ईमानदारी पर। सो क्या है इन दुकानों के बारे में, हाँ ये बताते हैं आपको।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो हम आपको बता रहे हैं वो दुकानें जो बिना दुकानदारों के चलती है, पैरों से नहीं ईमानदारी से। कैसे? सो वेलकम है आपका मिजोरम में। जी हाँ, ये दुकानें जो है वो मिजोरम में आपको मिलती हैं, जहाँ ईमानदारी पर चलती हैं दुकानें और जिंदगी। कैसे? यही तो बताना है आपको। सो जूस, राशन, फल, सब्जियां, स्नैक्स, मिजोरम में सड़क किनारे आपको सब कुछ बिकता नजर आएगा। बिल्कुल, बस इन दुकानों पर कोई दुकानदार नजर नहीं आएगा। अब आप सोचेंगे, यार सामान मिल रहा है, दुकानदार नहीं है, कैसे मांगेंगे, कैसे पैसे देंगे, है ना? सो लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें उठाते हैं और यहाँ लगी रेट लिस्ट के हिसाब से कैश बॉक्स में पैसे डालकर चले जाते हैं। ईमानदारी से चलती है ये प्रथा और बाहरी लोगों को असामान्य लग सकता है ये, लेकिन मिज़ोरम के लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्सा है ये। मतलब ऐसा होता ही होता है। सो इस अनोखी परंपरा को यहाँ नघालू डावर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बिना दुकानदारों वाली दुकानें। सो यहाँ ना ही कोई सीसीटीवी मिलता है, ना ही कोई दरवाज़ा होता है, ना ही कोई ताला होता है। इसमें ना ही कोई दाम बताने वाला होता है, ना ही कोई पैसे लेने वाला होता है। फिर भी इन दुकानों पर आज तक कभी चोरी नहीं हुई, क्योंकि ईमानदारी मिजो संस्कृति में गहराई से समाया हुआ उनकी वैल्यू है। जी हाँ, सो विश्वास की ये दुकानें गांव के किसान लगाते हैं। रोज़ सुबह खेतों से ताज़ी सब्जियां, फूल फल और ज़रूरत के दूसरे सामान जुटा करके दुकानों पर रखते हैं, जिससे किसी बिचौलियों की ज़रूरत नहीं होती। फिर उन्हें अपनी उपज का सही दाम भी मिल जाता है। सो इस इलाके में किसान परिवार के सभी जो सदस्य हैं खेतों में काम करते हैं। दुकान पर लगातार कोई मौजूद रहे ये संभव तो है नहीं, इसलिए बिना दुकानदारों की ये एक व्यवस्था, एक सिस्टम बन गया है। सो सारी दुकानें यकीन पर चलती है, विश्वास पर चलती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पैसा दिए बिना सामान ले गया हो, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है व्यक्ति की ईमानदारी और अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। सो सोचिए, अगर आपके शहर या गांव या एरिया में ऐसी दुकानें हों तो कैसा होगा? लोगों का एक दूसरे पर यकीन बढ़ेगा, ईमानदारी और एकता का बोलबाला होगा या नहीं, क्या होगा? आप ज़रा सोचिए और आप बताइए, मिजो संस्कृति जो चल रही है हमारे भारत में ही, वो आखिर अगर हमारे इस एरियाज में होगा तो क्या होगा और कैसे होगा? सोचिएगा और फिर बताइएगा।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
5: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
6: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
5: सच में? क्या खास है वहाँ?
6: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
5: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
6: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते।

0: और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
1: और फोटोग्राफी वगैरह?
0: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
1: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
0: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है। और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: भाई हमने कुछ सवाल किए थे बात करते हुए और उसका जवाब भी आपने चैट बॉक्स पर दिया हुआ है, तो चलिए क्या पूछा था और क्या जवाब दिया है ये भी जरा देख लेते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda, with your favorite Aajya Khan.

एक स्टोरी बताई थी 70 साल में नीट एग्जाम देने की, जिसको लेकर के भी आप लोगों ने रिएक्शन किए हैं, और ऑफ कोर्स उससे पहले कुछ मैसेजेस भी आ गए हैं। दीपांशी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग लिखा है, गुड मॉर्निंग टू यू। आशु जी लिखती हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी ना कभी मेहनत को सफलता मिलती है। प्रीति जी लिखती हैं, जहाँ चाह वहाँ राह अवश्य मिलती है, देर चाहे भले ही हो, उम्र का क्या है, उम्र तो आना जाना है। नीट क्रैक करने वाले शख्स को सैल्यूट, थैंक यू। सविता जी कहती, सर मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, खाली शैतानी में मन लगता। तो आप खाली शैतानी करिए, लेकिन शैतानी भी खाली ना हो, भरी हुई हो, राइट। एंड धर्मेंद्र मोहन फ्रॉम आवास विकास लिखते हैं, अदनान जी पहले सुबह को आपका प्यार भरा नमस्कार, आपको भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्ते। इसके बाद आशु जी लिखती है, सर जी मैं भी बहुत कुछ खोकर बहुत कुछ पाया है, जितना भी पाया उतने में बहुत संतुष्ट हूँ, थैंक यू सो मच। आर के श्रीवास्तव जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग गुंडा, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड इसके बाद जो है आपने बताया है, कलाम हो या मैसेज बॉक्स, अपने सुंदर भाव विचार देने का प्रयास करते हैं, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने सर जी, मेरी बातों में आंखों में आंसू आ गए, मेरे पापा का फ़ोन रोज़ आता है, बेटा सब कुछ ठीक है, मैं ये कहती हूँ पापा सब कुछ ठीक है। ऑफ कोर्स होता है, मुझे पता है कि भाई ऐसे कई सारे स्ट्रगल्स है या कई सारी बातें हैं जो हम मैनेज कर रहे होते हैं, इसलिए ताकि हमारे घर वाले आराम से रहे। तीरथ प्रसाद सोनी जी मौजूद हैं, सुप्रभात आपको भी। और इसके बाद कायनात है, गुड मॉर्निंग। एंड यस, हमारे यहाँ दीपांशी लिखती हैं कि ऐसे लोग हैं जिससे कि चोरी हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा मसला है अगर ऐसी दुकानें खुलती है। ओके सुबह, देखिए ईमानदारी से मिज़ोरम में तो चीज़ें चल रही है, और ये बात सही है कि शायद हम अपनी चीज़ों को लेकर के हंसते हैं क्योंकि हमको पता है कि यहाँ क्या हो सकता है। लेकिन एक बार को सोचिए कि अगर इतना यकीन सच में हर तरफ हो जाए तो क्या लगता है, जो समाज हम सिर्फ ख्वाबों में देख सकते हैं वो रियल में हमारे भारत में ही एक जगह ऐसी है मिज़ोरम, जहाँ पे ये सच है, हो रहा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हो रहा, आज भी हो रहा होगा। लोग इस वक्त हो सकता है उन दुकानों से सामान खरीद रहे होंगे और पैसे डाल रहे होंगे, बट सोचिए अगर सच में ये ऐसा हो जाए वो समाज कितना खूबसूरत होगा जहाँ इतने यकीन पर इतनी चीज़ें चलेंगी।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून किया है रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो चलिए भाई, अब बताते हैं आपको कि पेरेंट्स अक्सर बच्चों की कई चीज़ों को लेकर के परेशान रहते हैं और उनको लेकर कंसर्न रहता है काफ़ी। भाई कोई भी पेरेंट होता है अपने बच्चों को सिखाने को लेकर के और चाहता है कि वो चीज़ें बेहतर तरीके से सीखे करे, ये सारी ख्वाहिश तो हर पेरेंट्स की होती है। तो इसी कड़ी में आइए एक पेरेंटिंग की एक बात बताते हैं और साथ ही भेजे गए आपके कंटेंट्स को बताते हैं, क्योंकि कंटेंट आ गया है और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। फिलहाल हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग से जुड़ी, यानी एक ऐसी खास और ज़रूरी बात जो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

0: आज तुमने क्या नया सीखा?
1: बच्चों से सवाल पूछते रहने से उन्हें बेहतर तरीके से सीखने और अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने में मदद मिलती है। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा रिसर्च का कहना है। सो जब पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो अक्सर वो बुनियादी जो स्किल्स हैं या अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके बारे में कोशिश और बच्चों के हेल्थ पर ध्यान देते हैं, लेकिन स्कूल में उस बच्चे की जो सफलता है उसको अफेक्ट करने वाला एक और भी बहुत बड़ा रीज़न होता है, कारण होता है, जिसे आप मेटाकॉग्निशन यानी कहीं ना कहीं परासंज्ञानात्मक क्षमता कहा जाता है। इसका मतलब है कि अपनी सोच और सीखने का जो प्रोसेस है उसको समझना और उसको बैलेंस करना। सो ये स्किल बच्चों को बेहतर तरीके से सीखने और गलतियों को पहचानने और उनमें सुधार करने में मदद करती है। इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों की क्षमता को विकसित करने के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। सो अपने जो भी थॉट्स हैं वो खुलकर एक्सप्रेस करें। पेरेंट्स अपने जो भी थॉट हैं, फैसला लेने के तरीके, बच्चों के सामने खुलकर बात करें। जैसे कि अगर आप किसी काम की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे से कह सकते हैं, पहले मैं आसान काम पूरा करूंगा, फिर मुश्किल काम करूंगा, ताकि वक्त अच्छे से मैनेज हो सके। इससे बच्चा सीखता है कि किसी भी काम को करने से पहले प्लान बनाना ज़रूरी है। अपनी गलतियों को बहुत ही सामान्य मानना होगा। जी हाँ, बच्चों को ये भी समझाना होगा कि गलती कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये सीखने का एक प्रोसेस है, एक हिस्सा है। जब हम कोई गलती करते हैं तो इससे हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। इसलिए गलती पर परेशान होने की बजाय उसे सुधारने के लिए अलग अलग और बेहतर तरीका अपनाना चाहिए। इससे बच्चा धीरे धीरे समझदार बनता है और अगली बार वही गलती दोहराने से बचता भी है। फिर दूसरी बात क्या आती है? बैलेंस ऑफ कोर्स किसका? दिनचर्या का, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का। तो ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, बच्चे इसे आज़ादी और ज़िम्मेदारी की भावना से विकसित करने में मदद मिलती है। जब बच्चा रोज़ अपना स्कूल बैग खुद पैक करता है या होमवर्क का प्लान बनाता है तो अपने आप को कहीं ना कहीं मैनेज करना और पहले से तैयारी करना सीख रहा होता है। इससे उसे समझने में मदद मिलती है कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है, क्या करना बाकी है और किसी बदलाव की सिचुएशन में कैसे खुद को उसके हिसाब से ढालना है। धीरे धीरे ये आदत जो है बच्चों के लिए ज़्यादा आत्मनिर्भर और ज़िम्मेदारी वाली बन जाती है। इसके अलावा बच्चों को अपने सीखने और एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचने के लिए आपको प्रमोट करना है कि उसकी समझ और प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन करने की क्षमता बढ़ाता है। स्कूल से आने के बाद अगर आप उससे पूछते हैं कि आज तुमने क्या नया सीखा, कौन सी चीज़ समझने में प्रॉब्लम हुई, तो बच्चा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और ख़ुद का जो है इवैल्यूएशन करना सीखता है। और इस तरह से अगर वो स्कूल के लिए कोई ज़रूरी चीज़ भूल जाए तो डांटने के बजाय उससे पूछे कि अगली बार ऐसा ना हो, इसके लिए वो क्या अलग कर सकता है। इससे बच्चा अपनी गलतियों से सीखता है और उस पर कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं पड़ता है और अपने पेरेंट्स को लेकर के ना कोई गुस्सा ना कोई अग्रेशन, ऐसी चीज़ नहीं होती, क्योंकि डांटने से बच्चा कहीं ना कहीं बिदक जाते हैं और हम लोग खुद ऐसा करते थे, हम लोग को समझ में नहीं आता था। तो ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश कर सकते हैं और ये जो बातें हमने बताई ये बहुत अच्छी है, अपने बच्चों के साथ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। चलते हैं आज की कॉन्टेंट की तरफ। प्रीति जी ने बहराइच से भेजा है, मंजिल अपनी अपनी। समयानुसार चाह से नहीं मिला करती सभी को अपनी अपनी मंजिल, लेकिन परिश्रमी व्यक्ति अथक प्रयास से बना लेता है अनेक कठिनाइयों में भी अपनी मनपसंद मंजिल। लोगों का क्या, उनका तो काम ही है बेवजह सभी पे उलूल जुलूल छींटा करना, क्योंकि कुछ बकने में ना लगता है कोई टैक्स, मंजिल पाने वाला सदा रहते अपने धुन में जो मगन मस्त। लोग चाहे जो भी सके उन्हें ना पड़ता कोई फर्क, और भोगते रहते हैं अक्सर हाथ ही चला जाता है अपनी धुन में मस्त मगन। क्या बात है। सो बहुत अच्छा लिखा है, बहुत खूब लिखा है एंड अप्रिशिएबल है। थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा लिखा और हम तक पहुंचाया। इसके अलावा राकेश कुमार जी मौजूद हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। एंड जिन्होंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है अपना गोंडा FM, आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है RJ अदनान की तरफ से आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। फिलहाल वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन आप बने रहिए अपने गोंडा FM 89.6 FM पर, और आज का शो कैसा लगा ये भी हमको बता सकते हैं। फिलहाल जाते जाते ये एक सॉन्ग आपके लिए नजरे इनायत कर रहे हैं, आई होप कि आपको ये पसंद आने वाला है। सो ज़रूर एंजॉय करिए, बने रहिए अपने गोंडा FM के साथ, और मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जिंदगी हर रोज़ नहीं है, उसे नया ही बने रहने दीजिए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: अरे सुना?
8: क्या?
7: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
8: वाओ!
7: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता। हर बार की तरह गांव की गूंज का एक नया एपिसोड हम सब मिलकर ला रहे हैं, जिसमें मधुर मधुर गीतों की जो माला है वो पिरोई गई है श्रीमती किरण पांडे की आवाज में। और आप सभी जानते हैं कि जब हम बहराइच चल रहे हैं और अवधि ना बोले तो भाई ये नहीं हो सकता है।
1: का बताई बहनी, बहुत दिन हुई गवा। गवा जब जावा करो ना, तब लस्तगा लाग रहा था यार बार जाए के। अब घर में बैठ जाओ, तब बुताई जाओ।
0: तो सुना आप सभी ने, आइए हम सब मिलकर चलते हैं आज बहराइच। अरे बाप रे, ये देखो श्वेता, कितनी जोर की बारिश होने वाली है।
2: अरे जरा बादल तो देखो, कितने काले काले से घिराए हैं। बारिश तो अब होके ही रहेगी।
1: क्या बात है, क्यों तुम लोग शोर मचाई पड़ी हो? तब से सुन रही हूँ। चलो चलो, गांव भी चलना है। चलो सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। और जिम्मी कहाँ है?
3: हाँ किरण दी, मैं तो नहा धोकर तैयार हो गई हूँ, बस चाय ही पीनी है।
0: जिम्मी कितना पाउडर लगा ली हो तुम, इतनी गोरी हो तुम तब भी इतना पाउडर लगा ली हो।

0: किरण दी, हम लोग कहाँ चलेंगे? कौन से गांव? और ड्राइवर भैया बाहर आ गए हैं गाड़ी लेके, खड़े हैं और हॉर्न जोर जोर से बजा रहे हैं।
1: चलो सब लोग निकलो। जिम्मी, चाय हम लोग वहीं प्रयागपुर चलकर ही पियेंगे। और श्वेता, हम लोग चल रहे हैं प्रयागपुर दीनू काका के गांव।
2: तब तो किरण दीदी गाना बनता है कोई, उठान गीत ही सुनवा दीजिए ना।
1: अच्छा अच्छा ठीक है भाई।

0: अरे रुको रुको, यही घर है दीनू काका का, और वो देखो जमुना काकी।
1: काका राम राम, काकी राम राम।
2: कैसी हो जमुना काकी? दीनू काका मजे में हैं?
3: हाँ हाँ, मजे महन, सभे मजे महन। आओ आओ बहनी, तोहरे सब मजे महाओ। आज यहाँ कैसे बिटिया लोग?
0: काकी आयन है तुसे ओ काका से भेटाए।
3: अरे तुहार काका हमार कोनो बात नहीं सुनत हैं, यक्को कहा नहीं मानत हैं। हम कहें कि हमका एक ठो जेवर बनवाए दो, तब कहें कि जेवर का करी हो।

0: काकी गुस्सा ना हुआ करो काका से, काका आपसे बहुत प्यार करते हैं।
1: अरे बहनी हमार करम वही फूट है दादा, का करी।
2: हे काकी कुछ ना करो, तहारी दशा देख के हमें तो एक गाना याद आवत है, करम हमार फूटा सुनो मोरी अम्मा।

0: पकौड़े भी लाए हैं।
1: लगता है भाभी बना रही है। अरे आओ अंदर तो आओ, देखो गांव में कितनी साफ सफाई है, मक्खी मच्छर कुछ दिखाई नहीं दे रहे।
2: बारिश के मौसम में साफ सफाई बहुत ही जरूरी है। अरे साफ सफाई तो हमेशा रखनी चाहिए, पर बारिश में कुछ ज्यादा ही सफाई करनी चाहिए। इसी मौसम में फंगस वगैरह ज्यादा पड़ती है और इन्फेक्शन तो तुरंत होता है।
1: अरे काका तो काकी को मनाने में ही लगे हैं, वो देखो।
3: गढ़ाई देव दुई झुलनी, गढ़ाई देव दुई झुलनी, हो धना काहे हो धना।

0: देखो साफ सफाई तो सभी को रखना चाहिए अपने आसपास। लोग क्या करते हैं, खुद का घर तो साफ कर लेते हैं और सारा कूड़ा निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। ये बात ठीक नहीं है।
1: सही कहा, कूड़े की गाड़ी आती है, कूड़ा उसमें ही डालो, सफाई रखो। देखो इस समय डॉक्टर के यहाँ भीड़ लगी रहती है, कोई पेट से परेशान, उल्टी, दस्त, टाइफाइड, बुखार, मच्छर भी गंदगी में ही पैदा होते हैं, तो सफाई जरूरी है भैया।
2: दीनू काका जाइए, काकी को कहीं घुमा लाइए, सिनेमा दिखा लाइए, तो काकी खुश हो जाएगी, है ना जिम्मी?
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
3: अरे मोरे पीछे वरवा सिनेमा लगल बा, अरे मोरे पीछे वरवा सिनेमा लगल बा। ए राजा, अरे

0: चलो सब लोग बहराइच, शांति चाची के यहाँ भी तो चलना है, नहीं तो शाम हो जाएगी, लौटना भी तो है।
1: शांति चाची के पोता हुआ है, अरे कोई कुछ लाया है देने के लिए?
2: हाँ हाँ, एक ड्रेस मैंने ले लिया था रास्ते में ही, 0 साइज का।
0: चलो थोड़ी मिठाई खरीद लेते हैं।
3: फाइनली पहुँच गए शांति चाची के घर। अरे ये क्या, वहाँ कुछ नाच गाना हो रहा है।

0: गांव में अक्सर लोग किसी फंक्शन में नाच बंधाते हैं। आओ अंदर आओ, नाच देखा जाए।
1: आज बच्चे की छठी है तो सब लोग आए हैं और बच्चे की बुआ मीरा दीदी काजल लगा रही हैं।
2: ओके।
3: अरे हाय, देख

0: मजा आ गया गांव घूमने में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि गांव से हमेशा जुड़ाव रखना चाहिए और यहाँ आकर लोगों से मिलना जुलना चाहिए।
1: सही कहा किरण दी आपने, हम शहर को निकल जाते हैं और गांव में बड़े बूढ़ों को तो भूल ही जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
2: अरे बहनी, सभे आई हो तो कुछ गा देती हो, हमरे नाती का आज छठी है।
3: हे चाची, मैं किरण बहनी आई है, वनहीं से कहती हूँ नाई सभी मिलके गाय दिए।

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई वक्त हो चुका है 12, यानी आपके अपने शो स्वास्थ्य संगनी। जी हाँ, स्वास्थ्य संगनी, क्योंकि आज है दिन शनिवार और शनिवार के दिन आती हूँ मैं आपकी आरजे आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी, जिसमें हम हेल्थ से रिलेटेड काफी सारी चीजों को समझते हैं। अब देखिये, स्वास्थ्य संगनी में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में तो बहुत बार बात हुई है, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम जो कि बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती है, उस पर तो किसी ने कभी बात ही नहीं की। और भाई, चल रही है गर्मियाँ। अब भाई एक सेकेंड, मैं आपको याद दिलाती हूँ सूर्य देवता की। जी हाँ, जब हम उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी कि हमारी सर्दी, वही सर्दी जो भी कुछ महीने पहले हमसे थोड़ी सी दूर चली गई और कुछ महीने बाद वापस से आ जाएगी। देखिए, सर्दियों में हम हमेशा सोचते हैं कि जल्दी से सूर्य देवता आ जाएं, उनके दर्शन हो जाएं, थोड़ा सा दिल को सुकून मिले और हमारी बॉडी को थोड़ी सी राहत। लेकिन वही सूर्य देवता जब सर्दियों की जगह गर्मियों में नज़र आते हैं, ओ माय गॉड, मैं तो आपको मतलब ऐसे ही एक्सप्लेन करूँ कि कितनी ज़्यादा इरिटेशन होती है। अब देखिए, सूर्य देवता सर्दी में सबको पसंद होते हैं, एक बच्चे से लेकर के एक बूढ़ा तक यही सोचता है कि जल्दी से सूर्य देवता के दर्शन हो जाए। लेकिन गर्मी में ओफो, ये सूरज निकल क्यों आता है? और कभी ना कभी किसी न किसी ने हनुमान जी से ज़रूर प्रार्थना की होगी कि हनुमान जी प्लीज़ आओ और इन सूर्य देवता को फिर से आके खा लो। भाई, हनुमान जी को आप सभी जानते हैं कि उन्होंने फल समझ के सूर्य देवता को खा लिया था, और यही कहीं ना कहीं हमारी फिर से अरदास होती है इस गर्मी को देख के। अब देखिए, गर्मियां बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी। अब गर्मियों में डिहाइड्रेशन और गट हेल्थ सब के बारे में हमने बहुत सारी बात की है, लेकिन जो आपको खुद को होती है, बच्चों को होती है, बूढ़ों को, यानी कि सभी को होती है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, उस पर तो हमने कभी बात की ही नहीं। अब देखिए, प्रॉब्लम तो वो भी बड़ी है। अब आप इमेजिन करिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपके आसपास कई सारे लोग हैं, और आपको हो रखी है आपकी पीठ में बहुत जोर की घमौरियाँ। अब सोचिए, उसमें हो रही है खुजली। अब आप पब्लिक प्लेस पे उस पर उसको खुजला भी नहीं सकते, अब आप पब्लिक प्लेस पे रहा भी नहीं जा रहा है, अब सोचिए कि भाई मूड आपका कितना खराब हो रहा होगा। ये सिचुएशन भाई सभी समझ सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी आप सबने इस सिचुएशन को ज़रूर फेस किया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही बड़ी स्किन प्रॉब्लम जो कि स्पेशली समर में बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें से पहला हम बात करेंगे पिकली हीट यानी घमौरियों की, दूसरा हम बात करेंगे एक और बड़ी प्रॉब्लम सन बर्न की, जो कि अधिकतर हर दूसरे इंसान को हो ही जाता है, और साथ ही घमौरी। अब देखिए, घमौरी के लिए मार्केट में काफ़ी सारे लोशंस अवेलेबल हैं, पाउडर्स आते हैं, लिक्विड आते हैं, और कुछ ना कुछ चीज़ें हम खुद से करते हैं, लेकिन एक करेक्ट वे होता है इन घमौरियों से डील करने का, वो शायद हमें नहीं पता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं इन दोनों को ट्रीट करने की, कैसे आप इससे बच सकते हैं, और इस गर्मी और आगे आने वाली सभी गर्मी के सीजन पे हम कैसे इन घमौरी और सनबर्न को चकमा दे सकते हैं, भाई चकमा दे के अपनी ज़िंदगी को सुखद बना सकते हैं। तो भाई, आज का शो इसी पे डेडिकेटेड है। आशा करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आएगा, और बने रहिए हमारे आज के स्वास्थ्य संगनी शो में, जिसमें हम आज बात करेंगे गर्मियों से रिलेटेड प्रॉब्लम की। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे बातें जारी रखेंगे।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

वेलकम बैक एवरीवन, आ चुकी हूँ मैं आपकी आरजे आयुषी लेके स्वास्थ्य संगिनी, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले घमौरियों की। गर्मी का सीजन शुरू होते ही एक प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं पिकली हीट। आपने नोटिस किया होगा कि बॉडी पर छोटे छोटे रेड रैशेस, इचिंग और जलन और एक अजीब सी चुभन आपको महसूस होती है। हिंदी में हम इसे घमौरियां कहते हैं। अब सवाल ये बनता है कि आखिर ये पिकली हीट होता ही क्यों है। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी नेचुरली स्वेट यानी कि पसीना निकालती है ताकि बॉडी कूल रहे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हीट और ह्यूमिडिटी हो जाती है तो स्किन के स्वेट ग्लैंड ब्लॉक हो जाते हैं, पसीना बाहर नहीं निकल पाता है और स्किन के अंदर ही ट्रैप हो जाता है। इसी वजह से टाइनी बम्प्स बन जाते हैं, इचिंग होती है और इरिटेशन भी स्टार्ट हो जाती है, और इसी कंडीशन को कहते हैं हम पिकली हीट यानी कि घमौरी। ये ज़्यादातर आपकी नेक, बैक, चेस्ट, अंडर आर्म्स और वेस्ट एरिया में दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ स्वेटिंग ज़्यादा होती है। बेबीज में भी, अरे वही हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे, उनमें भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि उनके स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और दोस्तों, नाम पिकली इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये स्किन पर लिटरली चुभन जैसी फील कराता है, यानी कि टाइनी निडल्स जैसे आपको चुभाए जा रहे हैं, आपको टच हो रहा है वो। तो जब चुभाए जा रहे हैं तो भाई चुभन तो महसूस होगी ही, तो इसीलिए इसका नाम पिकली रखा गया है। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कहूँ तो जब पसीना आपकी बॉडी से बाहर निकलने के बजाय स्किन के अंदर ही फंस के रह जाता है तो बॉडी घमौरियों के थ्रू प्रोटेस्ट करती है। जी हाँ, वही प्रोटेस्ट जो बाकी पूरे देश में नजर आता है जब लोग आंदोलन करते हैं। तो इस आंदोलन की हमें ज़रूर सुननी चाहिए और अपने स्किन का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। समर वेकेशंस, आउटडोर वर्क, टाइट क्लॉथ और ह्यूमिडिटी, ये सब इस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। अब देखिए दोस्तों, फैशन तो सभी करते हैं और हम इंडियंस तो भैया एकदम चटाक कलर वाले कपड़े पहनेंगे। बिल्कुल फैशन में हम बिल्कुल करीना कपूर और शाहरुख खान को पीछे छोड़ सकते, इतना हमारे अंदर क्षमता है। लेकिन भाई अगर हम बात गर्मी की कर रहे हैं तो इस गर्मी में थोड़ा सा फैशन हमें कम करना होगा। लेकिन एक सेकेंड, मुझे याद आया कि हम फैशन लूज फिट कपड़े में भी कर सकते हैं। अब देखिए, लूज फिट कपड़ों का चलन तो बहुत सालों से है और आगे भी चल रहा है। ये चलन शुरू हुआ था कोविड के बाद से। तो आप इस गर्मी अगर आप फैशन करना भी चाहते हैं तो भी आप लूज फिट के कपड़े पहने और कोशिश करें हल्के रंग के कपड़े जरूर पहने। तो दोस्तों, ये कोई डेंजरस डिजीज नहीं है, लेकिन अनकंफर्टेबल बहुत होता है और अगर केयर ना की जाए तो इन्फेक्शन में भी ये बदल सकता है। दोस्तों, पिकली हीट देखने में छोटी सी प्रॉब्लम लग सकती है, लेकिन इसका इफेक्ट डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी होता है। तो सबसे पहले तो इचिंग की बात करते हैं। देखिए, इतनी इचिंग होती है कि आदमी बार बार स्क्रैच करता रहता है अपनी बॉडी पर, और जितना स्क्रैच करोगे उतनी ही स्किन रेड हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो सकती है और इन्फेक्शन होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। दूसरा इफेक्ट होता है बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन जैसा लगना। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्किन जल रही हो, स्पेशली जब आप सनलाइट में जा रहे हो या स्वेटिंग ज़्यादा हो रही हो, तो ये भी एक लक्षण है घमौरियों का। कई लोगों को ये टाइनी ब्लिस्टर भी हो जाते हैं अगर हाइजीन मेंटेन ना की जाए तो, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और दोस्तों, इमेजिन करिए कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, सभी की नज़र आप ही पे, लेकिन भाई आपके पीठ पे बहुत ज़्यादा घमौरी हो रखी है। आप इमेजिन कर लिए तो देखिए ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा ऑकवर्ड होगी और कितनी ज़्यादा इरिटेटिंग होगी। तो ऐसे सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो भाई आपको आज का शो अच्छे से सुनना होगा और साथ ही साथ बताई गई टिप को अच्छे से फॉलो करना होगा और इस गर्मी घमौरियों को मात देनी होगी। देखिए, चिल्ड्रन और बेबीज में ये सिचुएशन और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि वो प्रॉपरली एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते और रोते रहते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते रहते हैं। पिकली हीट का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। अब देखिए, बीमारी है तो बीमारी का कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो ज़रूर होता है। वैसे ही पिकली सुनने में बड़ी छोटी सी चीज़ है कि भाई घमौरियाँ ही तो हैं, लेकिन इसके जो असर होता है वो हमारे साइकोलॉजिकल तरीके से भी बनता है। इंसान को गर्मी और स्वेटिंग का फियर होने लगता है, आउटडोर एक्टिविटीज अवॉइड करने लगते हैं, स्लीप भी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज इचिंग रात में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है,
और इंडिया जैसे ह्यूमिड क्लाइमेट वाले कंट्री में, स्पेशली मई और जून में, जी हाँ वही मई जिसमें हम ये शो सुन रहे हैं, ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको? हाँ इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि कभी कभी लोग इसे एलर्जी समझ लेते हैं, लेकिन भाई एलर्जी और नॉर्मल घमौरियों में बहुत अंतर होता है जो आप नहीं समझ पाते, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले इस बात को समझ लेते हैं कि देखिए कभी कभी लोग इसे एलर्जी समझ लेते हैं, लेकिन हर रैश एलर्जी नहीं होता। हीट रैश और पिकली हीट का कनेक्शन मोस्टली स्वेट ग्लैंड से ही होता है। तो दोस्तों छोटी प्रॉब्लम लगने वाली घमौरियाँ कभी कभी डेली लाइफ को भी आपके पूरा अफेक्ट करके रख देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं, और आपके जो गर्मी के सीज़न है जब आप इसको बिताते हैं तो ऐसा लगता है कि हे भगवान ये गर्मी चली ही क्यों नहीं जाती। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, यानी कि ये जो हमारी पिकली हीट होती है इसे बचा कैसे जाए। अब देखिए इसके लक्षण तो हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी पे रेड रैशेज होने लगते हैं, खुजाने लगता है, इचिंग होने लगती है, ऐसा लग रहा है कि कोई पिंच चुभ हो रहा है, साथ ही साथ आपको ये सुकून से बैठने भी नहीं देती। तो इसे तो हम सब वाकिफ हैं कि ये आखिर होती कैसे, लेकिन इससे अपने आप को बचाएं कैसे ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आखिर पिकली हीट से बचा कैसे जाए? देखिए सबसे पहला रूल है स्टे कूल। जी हाँ वही कूल। और कूल बनने के लिए हमें कूल वाले गाने नहीं सुनने, हमें एक्चुअल में कूल रहना है। जितना हो सके डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करिए, स्पेशली आफ्टरनून, यानी कि 12 से लेकर के 4 के बीच, 12 से 4 बजे के बीच गर्मी को और सनलाइट को थोड़ा सा अवॉइड करिए। दूसरा, लूज कॉटन क्लॉथ पहनिए। अब देखिए इस पर अभी हमने बात की और ये सबसे मेन मुद्दा है। देखिए सिंथेटिक और टाइट कपड़े स्वेटिंग को ट्रैप कर लेते हैं, यानी उसको अपने पे ही रोक लेते हैं, जिसकी वजह से स्किन ब्रीद नहीं कर पाती और ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और दोस्तों स्वेटिंग कम करने के लिए बॉडी का हाइड्रेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हो सके आप पानी पिए, नींबू पानी पिए, कोकोनट वाटर पिए, ये सब बॉडी को आपके कूल रखता है। और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तब तो रेगुलर बाथिंग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब देखिए रेगुलर बाथिंग में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 4-4 बार नहा लेते हैं, और काफ़ी लोग होते हैं कि भाई एक ही बार नहाने में उनकी हालत ख़राब हो जाती है। देखिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर डालती है आपकी स्किन हेल्थ में। तो देखिए आपको नहाना है लेकिन इतना नहीं कि वो आपकी स्किन को अफेक्ट करे। लेकिन गर्मियों में अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है तो आपको दिन में 2 से 3 बार आप नहा सकते हैं। को साथ ही साथ आपको माइल्ड सोप यूज़ करना है। मार्केट में ऐसे सोप अवेलेबल हैं जो हर्बल होते हैं, जो पिकली हीट को कम करते हैं और आपकी बॉडी पे कोई इन्फेक्शन होने से आपको बचाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, हैवी ऑयल क्रीम्स को अवॉइड करिए। देखिए ये हमें हमेशा समझना होगा कि हर किसी की स्किन अलग अलग टाइप की होती है। कोई नॉर्मल स्किन वाला होता है, कोई ऑयली स्किन वाला होता है, कोई कॉम्बिनेशन स्किन, कोई बिल्कुल ड्राई स्किन वाला होता है। लेकिन भाई गर्मियों में पसीने तो सबके ही होते हैं ना, चाहे वो किसी भी टाइप की स्किन वाला हो। तो कोशिश करें कि गर्मियों में हैवी ऑयली क्रीम को आप अवॉइड करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ऑयली क्रीम होती कैसे है। देखिए ऑयली क्रीम्स जो होती हैं वो जब आप अप्लाई करेंगे अपनी बॉडी पे या फेस पे तो वो थोड़ी ही देर में चिपचिपी होने लग जाएगी, वो जल्दी आपकी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं करेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी, आपका जो फेस है, आपकी स्किन है, वो बहुत ज़्यादा हैवी है। तो ये जो ऑयली क्रीम्स होती है ना दोस्तों, ये आपके पोर्स को और भी ज़्यादा ब्लॉक कर देती हैं। मार्केट में कूलिंग पाउडर और कैलामाइन लोशन मिलते हैं जो इचिंग और इरिटेशन को रिलीफ देते हैं, और रिलीफ ही नहीं बल्कि काफ़ी हद तक इनको ठीक भी करते हैं। लेकिन अगर रैशेज आपके सीवियर हो जाते हैं या इन्फेक्शन होने लगता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए इस सिचुएशन में डॉक्टर थोड़ा सा अवॉइड करते हैं आपको इंजेक्शन लगाने के लिए। तो भाई जो इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं तो उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो आप खुशी खुशी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको दवाई अप्लाई करने के लिए देंगे, ना कि खाने के लिए और इंजेक्शन के थ्रू देंगे। तो आप आराम से पाउडर और क्रीम अपने बॉडी पे लगा सकते हैं और इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। बेबीज़ के केस में ये एक्स्ट्रा ज़रूरी है कि उन्हें ओवरड्रेस ना कराया जाए और रूम में वेंटिलेशन अच्छा रखना चाहिए।

एक्टिविटी से करके आते हैं या जॉब जाते हैं या बाहर से घर आते हैं नॉर्मली, तो वो अपने कपड़े को चेंज नहीं करते, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सपोर्ट करता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई आपको बहुत जल्दी स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि भाई इंडिया में ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा कॉमन है। अब देखिए, हम नॉर्थ के लोग तो जानते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा होती है यहाँ गर्मियाँ, लेकिन बाकी स्टेट्स का क्या, वहाँ पे क्या हालचाल है, उसको भी देखते हैं भाई। देखिए दोस्तों, इंडिया में पिकली हीट या घमौरी इतनी कॉमन है कि ऑलमोस्ट हर घर में किसी ना किसी को ये कभी ना कभी ज़रूर हुआ है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हर एक एक इंसान को होता है। हमारी कंट्री का जो क्लाइमेट है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया का और कोस्टल रीजन का, वो काफ़ी ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड होता है। मई और जून के महीने में टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है और ह्यूमिडिटी स्वेटिंग को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। इसी वजह से पिकली हीट इंडिया में समर सीजन की सबसे कॉमन स्किन प्रॉब्लम में से एक मानी जाती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर, डिलीवरी बॉय, फैक्ट्री वर्कर, ट्रैफिक पुलिस, जो लोग बाहर काम करते हैं, इन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। रूरल एरिया में जहाँ कूलिंग फैसिलिटीज़ कम होती है, वहाँ घमौरियाँ और कॉमन हो जाती है, और अर्बन सिटीज़ में पॉल्यूशन और ह्यूमिडिटी की वजह से ये प्रॉब्लम भी कई ज़्यादा गुना बढ़ जाती है। यानी आप चाहे गांव के निवासी हैं चाहे शहर के, ये आप दोनों में भेदभाव बिल्कुल नहीं करती, ये लोगों को बराबर ही ट्रीट करती है, चाहे गाँव के हों चाहे शहर के। आपको घमौरियाँ ज़रूर हो सकती हैं अगर आपने अपने स्किन का और अपना ध्यान नहीं रखा। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडिया में घमौरियों के लिए ट्रेडिशनल रेमेडीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे नीम के पानी से नहाना, चंदन का पाउडर इस्तेमाल करना, मुल्तानी मिट्टी लगाना, लेकिन अवेयरनेस तो भाई अब बढ़ रही है कि ये सारी चीज़ें देसी नुस्खे तो काम आते ही हैं, लेकिन हाइड्रेशन, हाइजीन मेंटेन करना और स्किन केयर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने से ये प्रॉब्लम कम हो सकती है। तो दोस्तों, पिकली हीट एक कॉमन समर प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करके रख देती है। तो आशा करती हूँ कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपनाएंगे और इस पिकली हीट को दूर भगा देंगे। देखिए, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें हाइजीन की अपनाते हैं, जैसे स्पेशली आप अपने नाखून को कट करके रखें, जो आपके नेल्स हैं उसको जो है एक छोटे लेवल पे रखें, ज़्यादा नहीं, कि अगर आप बाई चांस अपनी स्किन को स्क्रैच भी करते हैं तो स्किन आपकी कट ना जाए, वो थोड़ा सा आप सहला सकते हैं। बिल्कुल खुजलाने को आपको ना तो डॉक्टर कहते हैं और ना ही मैं कहूँगी। साथ ही साथ आप ले सकते हैं नीम के पानी का बाथ, यानी नीम के पानी से नहा सकते हैं, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस और भी ज़्यादा कम हो सकते हैं। अगर किसी को पिकली हीट है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, नहीं तो वो बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर आप घर पर कोई नुस्खा अपनाना चाहते हैं, अगर वो थोड़ा सा कम है, तो आप मुल्तानी मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मुल्तानी मिट्टी का काम होता है आपकी स्किन को ठंडा रखना, और मुल्तानी मिट्टी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी भी मानी जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगोना है, फिर उसका लेप अपनी बॉडी में लगा लेना है और तब तक लगाए रखना है जब तक वो सूख ना जाए। अब कोशिश करें कि जब ये आप लगाएं तो आप ऐसे माहौल में लगाएं जो ठंडी हो, जो ज़्यादा स्वेटी ना हो, नहीं तो पसीना आने के कारण आपकी मुल्तानी मिट्टी कभी नहीं सूखेगी। आप जब ये लगाएंगे तो आपके जो रैशेस होते हैं, जो घमौरियाँ होती हैं, इनको आराम मिलता है और ये जल्दी ठीक हो जाते हैं। स्किन पे ज़्यादातर आप अगर कोई क्रीम या फिर आप लोशन की मैं बात करूँ तो आप कैलामाइन लोशन यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किन को ठंडा रखता है और पिकली हीट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये थी दोस्तों पिकली हीट पे बात। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सनबर्न। जी हाँ, सनबर्न। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सभी पे बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए, ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है। आप और मैं दोनों को एक काम करना है, वो काम ये है, पानी पीना है। अब देखिए, पानी पीना एक रिमाइंडर आपके लिए हम ही लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप हमारी बात बहुत ज़्यादा गौर से सुनते हैं। तो अगर गौर से सुनते हैं तो सुनिए भाई, पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो जल्दी से जाइए, फ्रिज खोलिए, अरे फ्रिज नहीं है तो कोई मटका या फिर कोई नल से पानी लीजिए और पानी को तुरंत पीजिए। जी हाँ, हाइड्रेटेड रहना गर्मियों को प्रॉब्लम्स को दूर भगाने का सबसे पहला जो है उपाय है और सबसे अच्छा तरीका है। ना आपको इससे डिहाइड्रेशन होगा, ना गट प्रॉब्लम होगी, ना स्किन प्रॉब्लम होगी। तो जल्दी से जाइए, पानी पीजिए, स्टे हाई।

0: हाइड्रेटेड एंड हेल्दी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे आपसे सनबर्न के बारे में। शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगरी, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं गर्मी से जुड़ी हुई दो बहुत ही बड़ी स्किन प्रॉब्लम की, जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है, आपका मूड खराब करता है और आपका दिन पूरा ही पूरा बेकार कर देता है। अभी हमने बात की पिकली हीट यानी कि घमौरियों की, और अब हम बात करने वाले हैं सनबर्न की। अब दोस्तों जानते हैं कि सनबर्न क्या होता है, कैसा होता है, कैसे इफेक्ट करता है और कैसे हम इसको अपने आप से बचा सकते हैं। गर्मी का सीजन और धूप का स्ट्रांग होना एक कॉमन प्रॉब्लम को लेकर आता है, वो होता है सनबर्न। कभी आपने नोटिस किया है बाहर धूप में ज्यादा देर तक रहने के बाद स्किन रेड हो जाती है, जलन होने लगती है और टच करने पर दर्द होता है। बस दोस्तों इसी कंडीशन को तो सनबर्न कहते हैं। देखिए सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो सनबर्न तब होता है जब हमारी स्किन बहुत ज्यादा टाइम तक सनलाइट में, स्पेशली हार्मफुल यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज में रहती है। ये यूवी रेज स्किन के ऊपर ये यूवी रेज स्किन के अपर लेयर को डैमेज कर देती है। बॉडी फिर से उस डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश करती है और इसी वजह से रेडनेस, स्वेलिंग, बर्न सेंसेशन और दर्द होना भी शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया यूजुअली आपका फेस होता है, नेक होता है, आर्म्स होते हैं, शोल्डर और बैक होती है, क्योंकि ये बॉडी पार्ट्स डायरेक्टली सनलाइट को फेस करते हैं। और दोस्तों एक मिथ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सनबर्न सिर्फ बीच या फिर फॉरेन कंट्री में ही नहीं होता, बल्कि इंडिया की तेज गर्मी और हार्श सनलाइट भी स्किन को डैमेज कर सकती है और आपको सनबर्न का शिकार करा सकती है। कई बार लोग सोचते हैं कि थोड़ी टैनिंग नॉर्मल होती है, लेकिन एक्सेसिव सन एक्सपोजर डेंजरस भी हो सकता है। सीवियर सनबर्न में स्किन पील हो सकती है, ब्लिस्टर्स आ सकते हैं और कुछ लोगों को हेडेक, डिहाइड्रेशन, फीवर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर इजी वर्ड्स में मैं आपको कहूँ तो सनबर्न बेसिकली स्किन का एक SOS सिग्नल है कि धूप हद से ज्यादा हो गई है। तो दोस्तों सनलाइट जरूरी है विटामिन डी के लिए, तो दोस्तों सनलाइट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी के लिए आपको सनलाइट में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन भाई इसका एक बैलेंस होता है जो आपको बना के ही रखना चाहिए। देखिए दोस्तों सनबर्न सिर्फ टेम्परेरी रेडनेस ही नहीं होता, बल्कि इसका इफेक्ट हमारी स्किन और हेल्थ दोनों पर पड़ता है। सबसे पहला इफेक्ट होता है बर्निंग सेंसेशन। देखिए ऐसा लगता है कि आपकी स्किन लिटरली जल रही हो, किसी ने आपको जलते कोयले पर रख दिया हो। कभी कभी हल्का टच करने पे बहुत ज़्यादा पेनफुल भी वो लग सकता है। उसके बाद आती है रेडनेस और स्वेलिंग की प्रॉब्लम। देखिए बॉडी डैमेज को रिपेयर करने के लिए ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, इसी वजह से स्किन रेड और वार्म फील करती है। कई लोगों को इचिंग भी होती है और जब स्किन हील होने लगती है तो पीलिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब डेड स्किन स्लोली निकलने लगती है। अगर सनबर्न सीवियर हो जाए तो ब्लिस्टर भी डेवलप हो सकते हैं और ये साइन होता है कि स्किन डीप लेवल से डैमेज हो चुकी है। जी हाँ, वो डैमेज जिसे रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी बार आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। और दोस्तों सिर्फ स्किन ही नहीं बल्कि बॉडी भी सनबर्न से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। एक्सेसिव हीट एक्सपोजर, डिहाइड्रेशन, डिजीनेस और हेडेक भी हो सकता है। चिल्ड्रंस और एल्डरली पीपल में रिस्क और भी ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, रिपीटेड सनबर्न फ्यूचर में परमानेंट एजिंग का भी रीज़न बन सकते हैं। रिंकल्स, डार्क स्पॉट और अनइवन स्किन टोन भी डेवलप हो सकती है। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे घर में जो लोग बाहर काम करते हैं या जो लोग खेती बाड़ी करते हैं वो लोग, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा बाइक से ट्रेवल करते हैं, आपने देखा होगा कि उनके स्किन पे उनकी आधा हाथ बिल्कुल सांवला या फिर काले में होता है और आधा हाथ बिल्कुल गोरा चिट्टा होता है। ये कैसे होता है? जी हाँ, यही रिजल्ट होता है ज़्यादा सनबर्न का। देखिए सनबर्न अगर बार बार हो रहा है तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, और ये कैसी प्रॉब्लम है जो जाती नहीं है, चाहे आप कितनी भी ज़्यादा जो है ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ले लें, कितनी भी ज़्यादा आप फेस पैक लगा लें या फिर आप कुछ भी कर लें, कोई भी देसी नुस्खा लगा लें, ये नहीं ठीक होती। इवन अगर आप डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे तो वो उनको ये ठीक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को सालों लग जाते हैं तब भी ठीक नहीं होती है और बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है। देखिए डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म यूवी एक्सपोजर स्किन कैंसर का रिस्क भी बढ़ा सकता है। इमेजिन करिए कि एक फन पिकनिक या क्रिकेट मैच के बाद आपकी स्किन इतनी बर्न हो जाए कि प्रॉपरली सोना भी डिफिकल्ट हो जाए, अब क्या होगा? अब भाई मूड भी खराब, कंफर्ट भी खराब, और दोनों ही आपका मूड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रख देते हैं। अब ना तो आपको रात भर नींद आएगी और ना ही आपको सुकून मिलेगा। इसीलिए दोस्तों सनबर्न को सिर्फ हल्का सा टैनिंग इशू समझकर इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की। आखिर सनबर्न से बचा तो जाए कैसे? देखिए सनबर्न से बचने का सबसे पहला रूल है अवॉइड हार्श सनलाइट। जो हमारे दुश्मन है उसके कांटेक्ट में आइए ही नहीं, स्पेशली आफ्टरनून में। जैसे आप 11 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में यूवी रेस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो आप अवॉइड करिए इस दौरान कहीं भी बाहर निकलने में या फिर डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आने से। अगर बाहर जाना ज़रूरी है तो अम्ब्रेला ले लें, कैप ले लें, या फिर सनग्लास का भी आप यूज कर सकते हैं। एक सिंपल सी चीज काफी ज्यादा आपको प्रोटेक्शन दे सकती है। साथ ही साथ जब आप बाहर निकले तो दोस्तों सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। सनस्क्रीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको सनबर्न, घमौरी से तो बचाएगी ही बचाएगी, बल्कि आपको स्किन कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से भी बचा सकती है। और एक फायदे की बात बताऊं, अरे हाँ वही बोनस की बात ये है कि भाई अगर आप सनस्क्रीन लगाते ना तो आपकी स्किन जल्दी एज भी नहीं होगी, यानी आप जल्दी बूढ़े नहीं लगेंगे, जल्दी रिंकल नहीं आएंगे और स्किन आपकी वही चमकदार बनी रहेगी। उसके बाद बात करते हैं हम, देखिए आजकल डॉक्टर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं कि कम से कम आप SPF 30 का यूज जरूर करें। अगर देखिए 30 के नीचे तो आपको बिल्कुल नहीं आना है, 30 या फिर 30 के ऊपर की ही सनस्क्रीन आप यूज करें। अब कई लोग सोचेंगे सनस्क्रीन ये तो बहुत महंगा आएगा, हमारे बजट में तो नहीं आएगा। देखिए सनस्क्रीन हर बजट में हमारे मार्केट में अवेलेबल है, बस आप यूज करने वाले तो बनिए, आपको सनस्क्रीन भी मिल जाएगी। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक लोग कर देते हैं, देखिए लोग सनस्क्रीन जो है सिर्फ अपने फेस पर लगाते हैं, आर्म्स और नेक और ईयर को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। आप इमेजिन करिए कि आप अपनी उम्र के 50 या 55 वाले स्टेज पे हैं, अब आपकी स्किन तो जवां दिख रही है, बिल्कुल यंग, लेकिन आपके नेक, ईयर्स और हाथ वो तो बिल्कुल 45 नहीं वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप 70 से 80 साल के बूढ़े इंसान हो। तो ये थोड़ा ऑकवर्ड तो लगेगा कि भाई शक्ल से ही जवान है, बाकी बॉडी से बूढ़ा हो चुका है। ये अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं ना तो आप सनस्क्रीन अपने कान, अपने नेक, अपने आर्म्स या जो एरिया सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आता है वहां पे आपको ये जरूर लगानी चाहिए। लूज और फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट से आपको बचाता है, आपकी बॉडी को ब्रीद करने के लिए जगह मिलती है और ये आपको कूल रखने में भी मदद करता है। साथ ही साथ हाइड्रेशन इसमें इक्वली इम्पॉर्टेंट है, पानी पीना, कोई जूस आप पी सकते हैं, कोकोनट वाटर, बॉडी को कूल रखने के लिए और हाइड्रेटेड रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हल्का सा सनबर्न हो जाए तो आपको कोल्ड कंप्रेस और एलोवेरा जेल काफ़ी सूदिंग फील करा सकते हैं और ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, देखिए सनबर्न्ड स्किन जो होती है वो एग्रेसिवली रब या स्क्रैच बिल्कुल ना करिए, क्योंकि अगर आप इसे खुजलाते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रैच करते हैं तो देखिए वो स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और अगर आपने स्क्रैच कर दिया तो भाई और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। चिल्ड्रंस के लिए एक्स्ट्रा केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनकी स्किन अडल्ट के कंपेरिजन बहुत जल्दी बर्न हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में स्टाइल के साथ प्रोटेक्शन भी जरूरी है, वरना धूप स्किन को पनिशमेंट दे सकती है और इस पनिशमेंट से बचना है तो अपना जरूर ध्यान रखना है। दोस्तों इंडिया में सनबर्न काफी ज्यादा कॉमन होता जा रहा है, स्पेशली समर सीजन में। हमारे कंट्री में ट्रॉपिकल क्लाइमेट और कई सिटीज में टेम्परेचर 40 डिग्री के भी ऊपर चला जाता है। स्ट्रॉन्ग सनलाइट और यूवी एक्सपोजर डायरेक्टली स्किन को अफेक्ट करते हैं और बीच एरिया जैसे कि गोवा हो गया, कोस्टल रीजन में कोस्टल रीजन में टूरिस्ट और आउटडोर वर्कर्स में सनबर्न ज्यादा देखा जाता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया की एक्सट्रीम हीट भी किसी से कम नहीं है। वो आपको सनबर्न तो देगी ही देगी, साथ ही साथ उसके साथ सोने पे सुहागा घमोरिया भी हो जाएंगे। अब ये जो डबल डबल प्रॉब्लम है ना, ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है, जिससे आपको बचाने की जिम्मेदारी आपकी खुद है। देखिए, आप जब तक अवेयर नहीं होंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो भाई आपका ख्याल और रखेगा ही कौन? फार्मर्स, ट्रैफिक पुलिस, डिलीवरी वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये जो लोग लॉन्ग आवर्स तक आउटडोर काम करते हैं, उनमें सनबर्न का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। आजकल यंगस्टर में भी ये इशू कॉमन होता जा रहा है, बिकॉज आउटडोर स्पोर्ट, ट्रैवलिंग और लॉन्ग बाइक राइड का ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है। हर इंसान चाह रहा है कि भाई जल्दी से बाइक उठाएं, बाइक में पेट्रोल आ जाए, बस पूरे शहर की गेड़ियां तो हम ही मारेंगे। लेकिन अगर ये आप गर्मी में सोच रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आप सीधा सीधा न्योता दे रहे हैं स्किन प्रॉब्लम को। इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहले इंडिया में लोग सनबर्न को सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ रही है और डर्मैट्स रेगुलरली यूवी प्रोटेक्शन और सनस्क्रीन के इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बता रहे हैं। अब बताना सिर्फ ऐसे ही थोड़ा ना कि आपको उसे बताए जा रहे हैं, आप सुन के चले आ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको इस्तेमाल करना है सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन इज अ मस्ट। जैसे ही पानी आपके लिए जरूरी है ना, वैसे ही सनस्क्रीन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, पॉल्यूशन भी इन प्रॉब्लम को बहुत ही ज्यादा गंदी स्टेज पे लेके आ सकता है। गंदी स्टेज का मेरा मतलब ये है कि आपको सनबर्न तो होगा ही होगा, अगर आपने स्क्रैच किया तो आपको इरिटेशन होगी और इन्फेक्शन बढ़ सकता है, और कहीं आपको घमोरियां भी हो गई, और साथ ही साथ आपने सनस्क्रीन भी नहीं लगा रखी है, तब भाई आपकी स्किन तो अब राम भरोसे हो गई, अब इसे डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते। तो इतनी गंदी स्टेज पर जाने से अच्छा है कि आप अपनी स्किन का ध्यान रखें। पानी और सनस्क्रीन, ये दो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस गर्मी में। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि देखिए, हमारे भारत में एक चीज बहुत ज्यादा कही जाती है कि जो गोरे लोग होते हैं ना, अरे जिनकी स्किन बहुत ज्यादा फेयर होती है, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो गोरे लोग होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा लॉस में होते हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा लॉस में। और हम इंडियंस का जो ज्यादातर स्किन टोन होता है, जो गेहूं या फिर सांवला रंग का होता है, वो लोग प्रॉफिट में रहते हैं। वो प्रॉफिट ये होता है कि देखिए, गोरे लोगों के अंदर एक केमिकल होता है। तो देखिए, गोरे लोगों की जो स्किन होती है वो बहुत जल्दी यूवी रेस को अट्रैक्ट करती है, सनबर्न होता है, घमौरिया होती है, खुजली होती है, और गोरे लोगों में इसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू डार्कर स्किन टोन, चाहे वो गेहुआ रंग का हो या फिर सांवले रंग का हो। तो बधाई हो भाई, अगर आप गेहुए रंग के हैं या सांवले रंग के हैं, और अगर आपको कोई कहे ना कि भैया तुम तो सांवले हो, तुम क्या ही कर लोगे, तो भैया हमें भगवान ने सबसे ज़्यादा अच्छी स्टेज पर रखा है, कि हमें सूरज से होने वाली प्रॉब्लम से बचा रखा है, उनका रिस्क हमारे अंदर कम होता है। तो आप अपने लिए स्टैंड लेना बिल्कुल ना भूलें, जब कोई आपको आपकी स्किन के जरिए आपको कम आके। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट चीज की तरफ। अब देखिए भैया, हम भी यूपी के, आप भी यूपी के, अब यूपी में आए हैं तो यूपी की स्पेशल, अब यूपी में हैं और यूपी के स्पेशल चीज के बारे में ना बात करें, वो कैसे हो सकता है? अब स्पेशल चीज़ हमारी बहुत सारी, किन किन चीज़ों के बारे में बात करें? अब देखिए भाई, समर स्पेशल हम चीज़ों की बात करते हैं। देखिए, गर्मियों में सनस्क्रीन तो लगाना ही चाहिए, पानी भी पीना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है। नहीं पता? मैं बताती हूँ, हमारा ब्रह्मास्त्र है गमछा। अब ये गमछा क्या होता है और गमछा का रोल क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने ही रहना है हमारे साथ, क्योंकि अब बात होने वाली है हमारे उत्तर प्रदेश की। अब भाई देखिए, हम उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी खासियत है, उस पर बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे गमछा पे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना है हमारे साथ, और इतनी लंबी बातचीत के बाद पानी पीना जरूर है, ठीक है? लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं और आपसे बात करते हैं इस विषय पे।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आज हम बात कर रहे थे गट हेल्थ की, यानी कि आपके आंतों की जुड़े स्वास्थ्य के बारे में, जिस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और इसी की वजह से भारत में कई लोगों का पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ दिखाई पड़ता है। हम आपको बता दें कि अगर आपका गट हेल्थ खराब रहता है तो इसकी वजह से आपका वेट गेन भी होता है, यानी कि आपका वजन भी बढ़ता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि गट हेल्थ इश्यू आपको परेशान कर रहा है, बार बार गैस बन रहा है, तो पहले सबसे पहले अपनी डाइट को देखें कि आप अपनी डाइट में क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या आप पानी पी रहे हैं या ढंग से नहीं पी रहे हैं। अगर नहीं तो अपनी आदतों को बदलें। प्लस अगर ये सब करने के बाद भी आपको ये इशू कंटिन्यू रहता है तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर को जाके ज़रूर चेक कराएं। डॉक्टर को कब दिखाएं? जब पेट दर्द या गैस लगातार बनी रहे, वजन बिना वजह से कम हो रहा हो या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, मल में अगर आपके वॉशरूम जा रहे हैं और आपको ब्लड नज़र आ रहा है या बार बार एसिडिटी और उल्टी की समस्या हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर अपना गट हेल्थ चेकअप ज़रूर से कराएं। फिलहाल के लिए घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का। आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली, आपके अपने गोरा शहर की धड़कन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
1: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात उठाने वाले हैं, किशोरों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। 10 से 19 साल की उम्र में न सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी कई सवाल उठते हैं। ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करेंगे सेहतिया भैया, स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद आकांक्षा जी।
2: जी
3: देखिए, जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह ना मिले तो बच्चा उलझ सकता है। इसलिए इस उम्र में सही बातें जानना और समझना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भैया। वैसे किशोर अवस्था के दौरान शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं?
3: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड शुरू हो जाती है। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर पड़ेगा ही। कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा, ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
2: भैया जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए।
3: देखिए आकांक्षा जी,
2: जी
3: कई बातें हैं जिनके बारे में खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती ही होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर ना लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की, यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझे कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसलिए बचाव के तरीके जैसे गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी ही चाहिए।
2: बिल्कुल।
3: और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझ कर होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का अधिकार भी है, ये समझना ही असली समझदारी है।
2: क्या बात है। अगर किसी किशोरी को डर लगे, शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो उसे क्या करना चाहिए भैया?
3: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में संकोच नहीं करना चाहिए। अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेने चाहिए।
2: जी और सेहतिया भैया, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात करते हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बनती हैं, जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी करने का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन का बोझ रहता है, ऐसे ऐसी बातें। ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधा कितनी जरूरी है।
3: बिल्कुल आरजी आकांक्षा जी, चाहे गांव हो या शहर, ऐसे सोच वाले व्यक्ति हर जगह मिलते हैं। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई। लड़कों से कहा जाता है कि अब घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है।
2: बिल्कुल भैया,
3: जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे। इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना है, उनकी बातें सुननी है और उनका साथ भी देना है।
2: जी भैया, और हम देख रहे हैं कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ऐसा करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है, और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो ये खतरनाक हो सकता है क्या?
3: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में वो गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे की जान जाने का भी खतरा हो सकता है। फिर लड़की की पढ़ाई, कैरियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं, जिंदगी बस घर गृहस्थी तक ही सिमट जाती है।
2: अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो कई बार वो डर की वजह से चोरी छुपे गर्भपात करवा लेती है, ये कितना खतरनाक होता है भैया।
3: जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती तो वो चुपचाप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भपात करवा लेती है। ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बहना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए सही जानकारी बहुत जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है।
2: बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने। अब एक दूसरी समस्या पर आते हैं, किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा क्यों बढ़ रहा है?
3: किशोरावस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं, वे बहुत सी नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है, कंडोम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वे कभी कभी ऐसे काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होते। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए तो वे अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
2: जी भैया, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बातें की, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कतें क्यों बढ़ रही हैं?
3: देखिए आकांक्षा जी, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है और ऊपर से समाज की उम्मीद कि तू लड़का है, रो नहीं सकता, तू लड़की है, समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती है।
2: बेशक
3: कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन उसे बोलने की इजाजत नहीं है तो क्या होगा? सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा, धीरे धीरे ये चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती हैं। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरे रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रह, ऐसी बातें मत कर। इसलिए किशोर को सुनने और समझने की जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले तो बहुत कुछ सुधर सकता है।
2: किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वे अपने फैसले समझदारी से ले सकें?
3: सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसे समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लेने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़की को सिखाया जाए कि अगर कोई ना कहे तो उसे मानना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
2: बिल्कुल सही भैया, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या गर्भ से बचने के लिए उपाय गर्भ निरोधक की जानकारी भी दी जानी चाहिए?
3: एकदम दी जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगते हैं, तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्टिव इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं है और वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो जाए, तो उसकी पढ़ाई, कैरियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है। उस लड़की की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कंडोम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैसे काम करती हैं, या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होगा।
2: लेकिन भैया, कुछ लोग कहते हैं कि अगर किशोरों को ये सब सिखाया बताया तो वे कहीं गलत रास्ते पर न चले जाएं। इस पे क्या कहना है आपका?
3: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना है। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया, तो वे कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो, तो वे खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
2: सेहत या भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी पहल हुई है?
3: बिल्कुल आकांक्षा जी, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
2: आखिर इस योजना में क्या क्या सुविधा मिलती है? यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प है, ये भी बता दीजिए।
3: हाँ, अब जैसे मेरे गांव की सीमा है
2: जी,
3: वो कक्षा 10 में पढ़ती है। RKSK बहुत ही काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। पहला है किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक। ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं, जहां किशोर अपनी समस्या खुलकर डॉक्टरों या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूरण कार्यक्रम। इसके तहत लड़के लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है, ताकि उनमें खून की कमी ना हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना। इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों से सेहत की बातें कर सके।
2: अच्छा भैया, ऐसा है क्या?
3: हाँ, अब जैसे मेरे गाँव की सीमा जो कक्षा 10 में पढ़ती है, RKSK से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है, जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है, ताकि गाँव की लड़कियाँ साफ सफाई से पीरियड संभाल सके। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थी, जिससे इन्फेक्शन हो जाता था। अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKSK सिर्फ आम किशोरों के लिए ही नहीं, बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। डॉक्टर, ANM, काउंसलर सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वे सभी की मदद बिना भेदभाव के करें।
2: जी भैया, अगर RKSK जैसे प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंचाए जाएं, तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त नहीं होंगे, बल्कि कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे।
3: बिल्कुल आकांक्षा जी, एक और बढ़िया योजना है
2: जी,
3: ARSH। इसका मतलब है एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड्स और यौन प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं, इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
2: या तो बहुत बढ़िया है भैया।
3: हाँ, अब सरता की आप बीती आपको सुनाता हूँ।
2: जी।
3: 14 साल की सरता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरता और उसकी सहेलियाँ नजरें चुरा लेती थी, शर्मा जाती थी। फिर एक दिन गांव में RKSK योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन ANM दीदी भी आई। उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी चाहिए, कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। उस दिन की बातें सरता के दिल और दिमाग में घर कर गईं। अब सरता खुलकर बोलती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
2: बिल्कुल भैया, जब कोई इतनी गंभीर बात हो, खासकर सेहत को लेकर, तो बिल्कुल खुलकर ही बात करनी चाहिए। इसमें डर और शर्म करने से अपना ही नुकसान होता है, दूसरों का भी नुकसान होता है।
3: सरता की सहेली गीता कई दिनों से थकी थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन ही नहीं करता, चक्कर आते रहते। फिर वह आंगनवाड़ी केंद्र गई तो वहाँ मौजूद ANM रेखा दीदी ने गीता से बात की, फिर उसकी जांच करवाई। पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता ना चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
2: मतलब ये सारी योजनाएं सच में जमीनी तौर पर असर कर रही हैं।
3: और सुनिए
2: जी,
3: सबसे प्रेरणादायक बात तो ये रही पास के गांव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी, 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लेकर आई थी। लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने शादी की बात शुरू कर दी। बोली, अब ज्यादा पढ़ाई लिखाई का क्या ही फायदा, लड़की तो घर ही संभालेगी ना। रीता ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल से पहले शादी करना न सिर्फ कानूनन गलत है, बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने यह भी बताया कि अब सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग देती है। धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है।
2: वाह भैया वाह, मतलब जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिले तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं।
3: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और ना ही वे पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वे बीच का सफर तय कर रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना जरूरी है।
2: बिल्कुल सही भैया। तो दोस्तों, ये ठान लें कि हम किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि जब जानकारी सही होगी, सोच खुली होगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले हम लेंगे अपनी शपथ।
0: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे
4: शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई।
4: सेहत सही तो लाभ कई।

0: आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा वाला शो सुन सहेली। और चलिए फटाफट से चलते हैं राशिफल की तरफ। और अब बारी है कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों के लिए आज का राशिफल जो कि है कि आप आज के दिन आप अपने पार्टनर के साथ अपने दिल की बातें जो है वो खुलकर साझा करेंगे, जिससे आपकी बीच की दूरियां कम होंगी। साथी के साथ बाहर डिनर डेट पे जाने का प्लान भी बन सकता है। और साथी में अगर आप सिंगल हैं तो आपको आपके क्रश के साथ टाइम बिताने का मौका भी मिल सकता है। अब आते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए आज जो कि लव राशिफल है वो ये है कि पार्टनर प्यार और रोमांस में आपका दिन खास बीतेगा। यानी कि आपके पार्टनर के साथ आप रोमांटिक कोई भी
1: डेट पे जा सकते हैं।
0: डेट पे जा सकते हैं, बिल्कुल।
1: मेरा राशिफल पढ़ो जल्दी से।
0: क्या? यस मैम। तो अब आते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए है कि साथी आपको स्पेशल फील कराएगा और साथ में पूरी कोशिश करेगा कि आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो दूर हो जाए। और आप दोनों के रिलेशनशिप में एक उम्मीद की किरण जो है वो बस कुछ पल में जागने वाली है और आपका रिलेशनशिप बेहतर होने वाला है। तो ये थी बारी कन्या राशि वालों की। अब चलते हैं हम सॉन्ग की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट सॉन्ग
1: अनुष्का से। मैंने बोला कि मदर स्पेशल चल रहा है, लेकिन अनुष्का जी ने मदर स्पेशल पे नहीं लिखा है, उन्होंने एक गाना अलग सा लिखा है। और मैंने उनको कहा भी, लेकिन शायद वो नहीं समझ पाई मेरी बात। तो चलिए ठीक है, मैं उनके गाने को प्ले तो कर दे रही हूँ, लेकिन आप सभी लिसनर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मदर्स डे स्पेशल पे ही सॉन्ग भेजें, ताकि हम अभी आज मदर्स डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये तो गाना मैंने चला दिया है, बट हम जब अभी आपको वर्ड देंगे ना, तो वर्ड आप माँ से संबंधित ही आप कोई भी गाना भेज सकते हैं।

नागेश्वर जी, आपके सॉन्ग को प्ले किया गया है एंड सभी जितने लिसनर्स हैं सभी पार्टिसिपेट करें एंड अब हम पढ़ेंगे तीन राशिफल और उसके बाद में फिर से आएंगे गेम की ओर।

0: बैक दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों। चलिए अब पढ़ते हैं राशि फल और उसके बाद आएंगे फिर से गेम पर। तो अगला वर्ड दिया है खुशियाँ।
1: और नेक्स्ट राशि जिनके बारे में हम बताने वाले हैं वो है तुला राशि। तो तुला राशि वालों के लिए है कि रिश्तों में नयापन आएगा और नयापन लाने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता बेहतर हो तो उसके लिए अपने साथी के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताने की कोशिश करें। आपके रिश्ते में जो समय की कमी हो रही है उसे पूरा करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए है कि साथी की मीठी बातें आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगी। ओके, आज का दिन आपके प्यार के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ में आपके दिल में कोई मीठी सी याद भी आज रह जाने वाली है आपके रिश्तों को लेकर। अब आते हैं धनराशि वालों के लिए। तो धनराशि वालों के लिए है कि शादीशुदा लोग एक दूसरे के प्यार में खोए रहेंगे। ओके, और साथ ही साथ में जिनकी जो कि सिंगल हैं वो आज अपने क्रश की ओर कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्शन को महसूस करेंगे। तो काफी अच्छा है। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारे ये नेक्स्ट जो कि हमारा सॉन्ग है वो क्या है।
0: वो सॉन्ग मुझे मिल गया है, पता है किसने भेजा है?
1: किसने भेजा?
0: मोबाइल फ्रॉम गोंडा ने भेजा है। और पहले हम मैं सुनूंगी कि ये गाना क्या माँ पे, हाँ जी माँ पे रिलेटेड है। तो आइए सुन लेते हैं इस प्यारे से गाने को और उसके बाद आते हैं बाकी बची तीन राशियों को आपको बताने के लिए।

0: चलिए भाई, बाकी बची राशियों के बारे में बता देते हैं और उसके बाद में जिनके भी सॉन्ग्स नहीं हुए हैं ना, वो अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब आते हैं मकर राशि वालों के लिए। और मकर राशि वालों के लिए आज का जो लव राशिफल है वो ये है कि आज आपके रिश्ते में आप एक नई ताजगी को महसूस करेंगे और साथ ही साथ में आपके रिश्ते में बहुत समय से जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो आज सॉल्व हो जाएंगी और आप अपने रिश्ते को लेकर एक पॉजिटिव नज़रिए की तरफ जाएंगे और सोचेंगे कि आपका रिश्ता पहले से बेहतर हो सकता है। अब आते हैं कुंभ राशि वालों की तरफ। कुंभ राशि वालों के लिए है कि आपके रिश्ते के प्रति आप बहुत ही संवेदनशील रहेंगे, लेकिन कुछ लोगों से सावधान ही बरतने की ज़रूरत है। प्रेम और स्नेह के मामलों में धैर्य से काम लें और अपने बहुत ही करीबी दोस्तों के साथ तालमेल बनाए रखें
0: जी,
1: और उनसे बात करने के दौरान थोड़े से सहज रहें ताकि गलतफहमियां ना हो।
0: गुड।
1: और मीन राशि वालों के लिए है कि प्रेम यानी कि प्यार आपके रिश्ते में रहेगा, स्नेह भी बना रहेगा और साथ ही साथ में आपके जो भी मतलब आपके रिश्ते में आपके पार्टनर के साथ आप एक खुशी को महसूस करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा आज का लव राशिफल। आई होप कि सभी को अपनी राशियों के अकॉर्डिंग जो भी राशिफल निकला है वो पसंद आया हो।
0: बिल्कुल, और उसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोग आज इंजॉय करिएगा आज के दिन को भी। तो चलिए गेम को करते हैं कंटिन्यू। अब जिसके भी गाने नहीं हुए हैं वो जल्दी जल्दी से लिख के भेजें। एंड सबलू जी ने सॉन्ग लिखा है, मैंने उनके सॉन्ग को प्ले कर दिया है। बाकी बची हैं दीपांशी जी, प्रबल जी एंड नेहा। तो अभी जिनके भी नहीं हुए ना वो फटाफट, लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं वर्ड आपको देने जा रही हूँ आज के दिन का प्यार। तो भाई लास्ट वर्ड है लेकिन अपने आप में बहुत ज़्यादा भरपूर वर्ड है। तो प्यार वर्ड से गाने लिखिए, जिनके नहीं हुए हैं उनके फटाफट लिखिए ताकि जाते जाते एक

0: दरक्षा जी, प्रबल जी ने भी वही सॉन्ग भेजा था और हमारे क्या मतलब हर एक एफएम की एक खासियत होती है, एक कुछ रूल्स होते हैं कि एक सॉन्ग को दोबारा नहीं प्ले किया जा सकता है और वो ऑलरेडी दो बार प्ले हो गया आज। प्रबल जी ने भी वही लिखा था, तो दरक्षा जी एक बार सॉन्ग एक ही बार प्ले होगा ना, और मुझे दिखा था ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि कोई और सॉन्ग हम लिख करके भेजें तो आप अभी सॉन्ग लिख करके भेज दें, हम लोग आपका सॉन्ग सुन सहेली में जरूर प्ले करेंगे, लेकिन मंडे को।
1: बिल्कुल, कि अभी के लिए हमारा टाइम हो गया है।
0: बिल्कुल, और अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में आप अपनी फरमाइश को जरूर पूरा कर सकते हैं, मतलब मेरे ही बिहाफ पे आप पूरा कर लीजिएगा और कॉल करके आप सॉन्ग सुन सकते हैं। बट अभी के लिए तो ये कि एक सॉन्ग को हम लोगों ने ऑलरेडी दो बार बजा दिया था, इस वजह से वो सॉन्ग नहीं लिया गया। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय
1: बाय बाय दोस्तों।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
7: जी, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम यानी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम कॉलेज इन गोंडा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। और यह दिन है कौन सा? सैटरडे। सैटरडे, हाँ जी, करते रहते हैं हम भी आप भी, क्योंकि भाई वीकेंड की अगर बात करते हैं तो फिर हमारा जो मन है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वीकेंड की बात से इसलिए खुश होता है भाई, एक दिन की छुट्टी भी तो आती है और उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। हफ्ते भर का काम काज करके फिर आती है इस दिन की बारी, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो जाता है। जब आप बात करते हैं कॉलेज इन गोंडा की, तो वहां पे क्या होता है, आज का दिन होता है आपका कॉल इन शो का। और जब कॉल इन शो की बात होती है तो आप लगातार कॉल्स भी करते हैं, जैसे आप बखूबी करते जा रहे हैं। मैं देखती जा रही हूं फोन पे कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल्स आ रही है। लेकिन लेकिन लेकिन थोड़ा थमने की बारी है, क्योंकि आज जो हम पहला सॉन्ग बजाएंगे वो होगा हमारी पसंद का, और उसके बाद हम आप सभी की पसंद लेना शुरू करेंगे। तो अगर आप भी, आप में से जो हमें सुन रहे हैं और उनको लग रहा हो कि हम भी अपनी आवाज जरा एक बार सुन लेते रेडियो पे और अपनी डिमांड कर देते किसी खास को डेडिकेट करते हो, तो नंबर मिला लीजिएगा 6393316429। वैसे तो बहुत सारी कॉल्स आ रही है, लेकिन सबसे पहली डिमांड आप सुनिए हमारी पसंद की, फिर आते हैं हम कॉलर के पास और देखते हैं हमारा आज का लकी कॉलर आखिर में है कौन। उससे पहले इस प्यारे से मौसम यानी कि धूप वाले मौसम में एक प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग हो जाए, ताकि आपका मन थोड़ा सा खुश हो जाए। एंजॉय द ट्रैक, बने रहिए 3 से 4 के सफर में।

0: से भाई कॉलर्स की कॉल पे कॉल आ रही है और देखते हैं आज का लकी कॉलर हमारा कौन बना हुआ है। सबसे पहले कॉल किसकी उठी है? हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
0: हाँ जी, गुड इवनिंग और आफ्टरनून दोनों साथ में मिला के यू ना आफ्टरनून कर लेते हैं हम। अपना शुभ नाम बताएं प्लीज।
1: मैम कमल लाल बोल रहे हैं
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है, क्या सुनना चाहेंगे कमल जी?
1: तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो।
0: हाँ हाँ, वैसे किसको डेडिकेट करना चाहते हैं? हम पक्का है कि ना किसी के लिए बजवाया है आपने?
1: आकांक्षा मैम के लिए।
0: थैंक यू। अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहेंगे, एंजॉय करिए इस ट्रैक को, बजाते हैं आपका गाना।

सोचना तो हमारा भी था और सोच रहे हमारे द ग्रेट सेन साहब, और सोचते सोचते उन्होंने लिख दिया है, भूलना चाहो तो भी याद हमारी आएगी, दिल की गहराई में हमारी तस्वीर बस जाएगी, ढूंढने चले हो हमसे बेहतर दोस्त, तलाश हमसे शुरू होकर हमें पे खत्म हो जाएगी। आहा क्या बात है, बहुत सही चेपे है, चाहे जिसको भी चेपे है, लाइन बड़ी परफेक्ट लगी मुझे। फिलहाल वक्त हो गया भाई हमारे कमल नैन जी की डिमांड का, और इन्होंने कहा है कि ये सॉन्ग हमने डेडिकेट किया है आकांक्षा यानी हमको, देखते हैं। वैसे तो हम कहेंगे इस दुनिया की सभी नारियों के नाम, सभी बहुरियों के नाम, सभी प्यारी प्यारी अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस एंजॉय कर लीजिए, उन महिलाओं के नाम जिन्होंने अपने और अपने अपनों की जिंदगी को इसी प्रकार रोशन किया है जिस प्रकार सूरज और चांद और तारे जब आते हैं आकाश में और उसके बाद में सभी की जिंदगी में क्या आता है, बेहतरी। हाँ जी, जब सुबह नहीं होगी तो आप चमकेंगे कैसे, मतलब सुबह का एहसास कैसे करेंगे, रात में अगर चांद नहीं निकले, थोड़े से ठंडक नहीं दिया उन्होंने, तो आप उसको कैसे महसूस करेंगे, और तारों की तो बात ही मत कहिए। टिम टिम टिम टिम टिम टिम टिम, फिलहाल एक गाना।

0: हाँ जी श्रोताओं, तो अभी हमने अजय जी की डिमांड पे ये वाला सॉन्ग एंजॉय किया, आपकी अपनी आरजी आकांक्षा की पसंद का, और अभी हम चलेंगे अनुष्का जी की डिमांड की ओर। लेकिन उससे पहले देखेंगे हमारे साथ में कौन से नए कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो,
1: गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून, प्लीज अपना शुभ नाम बताएं।
1: अमित कुमार
0: जी। अमित जी, क्या सुनना चाहेंगे?
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
0: हाँ हाँ हाँ, क्या बात है भाई। मोनाली ठाकुर को बड़े ही दिनों बाद हमारे कानों तक पहुंचाएंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए।
1: थैंक यू।
0: चलिए भाई दोस्तों, आपने ट्यून करके रखो 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन पर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम क्या कॉलर ट्यून गोंडा। अनुष्का जी की डिमांड का ये सॉन्ग एंजॉय करिए, फिर आते हैं हम अपने अमित जी की डिमांड के साथ।

0: भाई अनुष्का जी ने हमसे कहा प्यार करके देख लीजिए, हमने ट्रायल किया, ट्रायल किया जानते हैं फिर क्या हुआ, बीच में एक छोटा सा हादसा हो गया और इसके समझदार है हमारे, इसलिए हम इनको बीरबल जी कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं, इनको समझ हो गई कि कहीं ना कहीं से एंटीना उखड़ गया यानी कि नेटवर्क चला गया, नेटवर्क इशू हुआ और इस वजह से कुछ क्लिचिंग आई और बीच में, तो उसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलूंगी नेटवर्क भाई साहब की ओर से अपने। और इनका कहना है कि भैया ये अभी हमारे नागेश्वर जी गए थे छत पे अपने नेटवर्क के लिए एंटीना घुमा के आए हैं तब जाके नेटवर्क मिल पाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अजय जी हमारे साथ में बने हुए, रफ्तार जी भी आ गए अपने रफ्तार के साथ में। फिलहाल बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर एक हमारे साथ में मौजूद है, देखते हैं कौन है। हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज।
1: सबलू सावंत बोल रहा है।
0: इतना मतलब आज पहली दफा ऐसा लग रहा है कि हमको पहचानना पड़ रहा है कि हमारे सबलू जी हैं यानी हमारे सावरी बलम जी हमसे बात कर रहे हैं। कहिए क्या डिमांड है आज आपकी?
1: सॉन्ग है चाहूंगा मैं तुझे हरदम तू मेरी जिंदगी।
0: चाहूंगा मैं तुझे हरदम तू मेरी जिंदगी। ओके थैंक यू, बने रहिए फिलहाल के लिए, थैंक यू सो मच। और हम चलते हैं अपने अमित कुमार जी के सॉन्ग की ओर।

एंजॉय करिए इस ट्रैक को, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। और मूवी का नाम जानते हैं कोई? जो जानते हैं बताइए, हम जानना चाहेंगे आपको कितनी समझ है सॉन्ग्स के साथ साथ उनके मूवीज के नाम के। फिलहाल ये नगमा।

0: सवार लूं। जी हाँ, सवारते सवारते हम चलेंगे अपने सबलू सावन जी की डिमांड की ओर, लेकिन उससे पहले देखते हैं नेक्स्ट कॉल हमारे साथ में कौन है। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज।
1: राधे राधे मैम जी।
0: राधे राधे, यानी कि हमारे प्रबल मिश्रा जी। कहिए क्या डिमांड है सर आज आपकी?
1: आज डिमांड वही है जो सबका दिमाग खराब करता है।
0: अरे ऐसा कौन सा डिमांड है भाई साहब?
1: मैंने पायल है खनकाई।
0: ओहो, अब तो आजा तू हट जाए, क्या बात है भाई, अब हम क्या ही बताएं। आज हमारे लिसनर्स को क्या हुआ है, कोई मोनाली ठाकुर की याद दिला रहा है तो कोई हमें हमारे फाल्गुनी पाठक जी की याद दिला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी प्यारी सी डिमांड है जी। जी जी शुक्रिया। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं हम अपने अमित जी की डिमांड के बाद में अपने सबलू जी की डिमांड की ओर, और उसके बाद लेके आएंगे नेक्स्ट वाली डिमांड जो होने वाली है हमारे प्रबल मिश्रा जी और पंडित जी की। आइए एंजॉय करते इस ट्रैक को।

हाँ जी श्रोताओं, तो अगर वक्त की बात करें तो 22 स्टूडियो क्लॉक हो चुके हैं 3:28 और आप सभी की कॉल्स भी आ रही है, लेकिन असली मजा तो तभी आता है ना जब सॉन्ग का एंड हो और उसके बाद आपकी कॉल उठे, वरना फिर कॉल इन शो का कोई मतलब नहीं होता। फिलहाल ये गाना बड़ा ही खूबसूरत है, एंजॉय करिएगा, उसके बाद वाली तो फरमाइश का क्या ही कहना।

0: ओके थैंक यू सो मच भाई. सीजन चल रहा है शादियों का, हमें लग रहा है हमारे सारे भाई हमें चाह रहे हैं कि हम अपने घर से विदा ले ही लें. क्या आपका यही मानना है संजय जी? हम कह रहे हैं कुछ नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच, बस इतना ही कहेंगे. थैंक्स अ लॉट. हम कह रहे हैं आप सभी जितने भी हमारे भाई साहब लोग हैं, मतलब जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हैं, सभी यही चाह रहे हैं कि हम यहाँ से, मतलब अपने घर से, मायके से चले जाएं ससुराल. जब मैं क्या ही बोलूं, मैं ही जानती हूं कि मैं किस दुख में हूं. फिलहाल थैंक यू सो मच, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दुआओं से हमें नवाजने के लिए. जी चलिए एक और कॉल ले लेते हैं. इन जनाब की भी कॉल बहुत देर से आ रही है. हेलो
1: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून.
0: जी गुड आफ्टरनून देवी प्रसाद जी. देवी जी क्या सुनेंगे आज आप?
1: जमाने में हर खुशी मिल गई है, तुम्ही तो मिले जिंदगी मिल गई है.
0: तुम्ही तो मिले जिंदगी मिल गई है.
1: ओके
0: थैंक यू सो मच. फिलहाल अब श्रोताओं बढ़ेंगे अपने प्रबल जी की डिमांड की ओर. भाई डिमांड बहुत ही प्यारी है और सुनने की अब आपकी और हमारी बारी है.

क्या बात है भाई, मजा ही आ गया। फाल्गुनी पाठक जी कहीं ना कहीं इतनी मिठास से गाती हैं कि मन प्रफुल्लित हो जाता है। और अभी हम बढ़ेंगे अपने संजय जी यानी कि पटना वाले संजय जी की डिमांड की ओर, और इन्होंने ये सॉन्ग आपकी अपनी आर्जा आकांक्षा को डेडिकेट किया। भैया हमारे सारे भाई साहब चाहते हैं कि हम हाल ही अपने मायके से अपने ससुराल की ओर रवाना हो जाए, फिर उस पर एक कंडीशन भी लागू करते हैं कि भाई गोंडा में ही ससुराल भी ढूंढ लीजिएगा। मतलब सड़क इस पार आपका मायका, सड़क उस पार आपका ससुराल, इस पार उस पार। फिलहाल करते हैं आर पार, मतलब वक्त का ध्यान दे दो, 3:35 हो गया है और ये गाना आपके पेशे खिदमत करती है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। थैंक यू सो मच प्रबल जी एंड संजय जी और सभी को शुक्रिया।

0: प्रकाश वो वक्त है और मैं यही गाना गाऊंगी और बताऊंगी सबको कि हमारे भाइयों ने हमें ये गाना डेडिकेट किया था और आज वो दिन आया है कि मैं आप सभी को ये गाना सुना पा रही हूँ। फिलहाल थैंक्स अ लॉट एक बार फिर से आप सभी का, और देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन जुड़े हुए हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं। काफी देर से आप सभी कॉल्स कर रहे हैं तो हमने कहा अब उठाने की बेला आ गई है। कहिए अपना नाम बताइए।
1: जी मेरा नाम महताब है, मुंबई से बोल रहा हूँ।
0: जी महताब जी क्या सुनना चाहेंगे?
1: जी मुझे सॉन्ग सुनना है प्यार गजब की चीज है जिसे हो जाए बस हो जाए।
0: हैं ऐसा भी होता है?
1: जी
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए, आपके गाने को हम आप तक पहुंचाते हैं कुछ ही क्षणों में।
1: ओके थैंक यू मैम।
0: थैंक यू।

0: जी हाँ दोस्तों, आप एंजॉय करें इस सॉन्ग को हमारे देव प्रसाद जी की डिमांड पे। उसके बाद होंगे हमारे मेहताब जी और उसके बाद हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट लिसनर कौन है। हेलो
1: हेलो, रिजू बोल रहे हैं।
0: जी हाँ रिजू जी, क्या डिमांड है आपकी, कहिए
1: जी। डिमांड तो पहले कुछ और था, बट आपके सॉन्ग के हिसाब से मैंने डिमांड अपनी चेंज कर दी है।
0: ओह माय गॉड, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है।
1: हाँ, मूड के हिसाब से हमने चेंज कर दिया।
0: ओके थैंक यू सो मच।
1: मुझे सॉन्ग सुनना है प्यार का अंजाम किसने सोचा हम तो किए जा रहे।
0: ओह
1: बेवफा मूवी का सॉन्ग।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए, टेक केयर,
1: ओके
0: बाय बाय।

जी श्रोताओं, तो देवी जी के सॉन्ग के बाद अब मेहताब जी के सॉन्ग की बारी, उसके बाद आते हैं रीजू जी के सॉन्ग के साथ में, और फिर देखेंगे कि हमारे पास में लगातार आप सभी की कॉल्स आ रही है, नेक्स्ट कॉलर कौन होंगे।

0: आज ही हम देखना चाहेंगे नेक्स्ट हमारे साथ में कौन जुड़ा हुआ है। हेलो हेलो,
1: गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून डियर, अपना नाम बताएं प्लीज।
1: सृष्टि।
0: क्या सुनना चाहेंगे सृष्टि जी?
1: आज हंस ले बेटा, कल तू रोएगा, अब शादी होने वाली है।
0: हैं? ये किसके लिए है हंसे? किसी के लिए है?
1: क्या बोला?
0: किसी के लिए, किसी को डेडिकेट करना चाहेंगी?
1: आज ऐसे तो जैसे आपको डेडिकेट हुआ तो मैंने कहा थोड़ा इधर से उधर डेडिकेट करना है।
0: अच्छा, ऐसा भी है। ओके, थैंक यू।

0: हो जाए प्यार गजब की चीज है।
1: क्या बात है भाई, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है और इसको हमने दूसरी दफा सुना है और मैं इसको आज से ही अपने प्लेलिस्ट में ऐड करने वाली हूँ। फिलहाल देखते हैं हमारे साथ में नेक्स्ट कॉलर कौन जुड़ा हुआ है। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ Hello? जी अपना नाम बताएं। हेलो हेलो, आपका नाम क्या है? जी बहुत दूर से बोल रही, थोड़ा सा करीब आए फोन के। क्या अक्षय त्रिपाठी जी? अक्षय जी हेलो। हाँ जी क्या सुनना चाहेंगे? त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी क्या सुनना चाहेंगे बोलिए। हाँ
2: जंगल बुक शिकारी, संजय दोषी सॉन्ग।
1: ओके, जंगल बुक से शिकारी सॉन्ग, बच्चों वाला
2: जंगल के शिकारी संजय
1: यदुवंशी सॉन्ग। ओके, जंगल के शिकारी संजय यदुवंशी सॉन्ग, थैंक यू भाई। जंगल के शिकारी भी हम तक पहुंच गए हैं। चलिए फिलहाल रिजु जी की डिमांड को एंजॉय करिए।

0: बात है भाई, हमारी प्लेलिस्ट से एक और सॉन्ग।
1: उनके शरम बस उनका नाम लिए जा रहे हैं।
0: चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। काफी देर से महोदय महोदय हमको कॉल करिए। ओके, सेल्फ डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, एंजॉय करते इसी ट्रैक को। और भाई जो भी हैं जनाब, हमको प्लीज़ व्हाट्सएप कॉल मत करिए, आप ऑडियो कॉल करिए ताकि हम आपकी कॉल को ले सकें। फिलहाल एक और कॉल फिर से ही आ गई है, देखते हैं। हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ जी, अपना नाम जल्दी से बता दो और आपकी फरमाइश क्या है।
2: मेरी फरमाइश है तानदार मूवी का गाना है तम्मा तम्मा लोगे।
0: ओके, आप अपना शुभ नाम बताएं प्लीज़।
2: राजेश मीणा, बात कर रहा हूँ बेंगलोर।
0: ओके, थैंक यू सो मच।

0: क्या बात है अपनी प्लेलिस्ट के अगर आपके पसंदीदा सॉन्ग सुनाते तो और ज्यादा आप उससे रिलेट कर पाते। फिलहाल कौन कॉलर देखते हैं। हेलो प्लीज आप अपने फोन को, हम कहेंगे रेडियो को बंद करके तभी आप कॉल मिलाएं, जो भी जनाब हैं। फिलहाल अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर जी आगे देखते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो
1: जी, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी।
0: जी सुरेंद्र यादव जी, हमें गौरा चौकी से सुनते हैं, प्लीज अपनी लिंक को हम तक पहुंचा दे, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड थी हमारी प्यारी प्यारी प्यारी किसकी, आपको बता देते हैं सृष्टि जी की। चलिए सुनते हैं क्या सुनाना चाहती हमको ये।

0: देखिए श्रोताओं, एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, और इसीलिए सुश्री जी ने हमको ऐसे वाले सॉन्ग को सुनाने की कोशिश की। हेलो
1: हेलो,
0: अच्छी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अपना नाम बताएं जल्दी से।
1: दीपांशु
0: जी, दीपांशु जी क्या सुनना चाहेंगे प्लीज बताएं।
1: जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए।
0: ओके, थैंक यू सो मच।

0: हाँ जी, तो दोस्तों सृष्टि जी ने हमें बता दिया कि कल क्या होने वाला है हमारे साथ में। फिलहाल देखते हैं हमारे साथ में आज क्या हो रहा है। हमारे साथ कौन कॉलर जुड़े हुए हैं? हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं।
1: जी प्रीतम जी।
0: जी प्रीतम जी, आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं?
1: जी गोंडा से।
0: जी क्या सुनना चाहेंगे प्रीतम जी?
1: जी खुदगर्ज मूवी का सॉन्ग।
0: कौन सा सॉन्ग है सर?
1: जिंदगी का नाम दोस्ती।
0: ओके थैंक यू सो मच। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, अक्षय जी की डिमांड की ओर, जो हमें सुनते हैं गायत्रीपुरम से।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैडम
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: रीतलाल यादव
0: जी। रीतलाल जी क्या सुनना चाहेंगे?
1: आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के।
0: ओके, तो हम आपको आपका गाना जरूर सुनाएंगे। और थैंक यू सो मच प्रीतम जी, आपने जो सॉन्ग बोला था वो हमको मिल नहीं रहा, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो हम इसी में आपको याद ऐड कर लेंगे अपने रीतलाल जी के सॉन्ग में, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। फिलहाल ये गाना सुन लेते हैं अक्षय जी की डिमांड का।

जी, और अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, क्योंकि मैंने घड़ी देख लिया, 3:52 हो चुके हैं, समय बहुत ही कम है और अब हम लेंगे तम्मा तम्मा। हाँ जी, राजेश जी की डिमांड पे जो हमें सुनते हैं बैंगलोर से।

जी अश्रोताओं, वक्त की कमी के कारण राजेश मीना जी, मैं आपके सॉन्ग को यहीं पे रोकना चाहूंगी। आई एम सो सॉरी। और मैं नेक्स्ट सॉन्ग लूंगी अपनी दीपांशी तिवारी जी को, और उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट वाली डिमांड लेकर के, जो कि होगी हमारे सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से। और फिर आज की लास्ट डिमांड हम लेंगे रीत लाल जी की, और उसी में ऐड करेंगे हम प्रीतम जी को, क्योंकि उनका सॉन्ग हमें मिल नहीं पा रहा था।

नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ में बनी हुई है पूजा जी गोंडा से। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और नागेश्वर जी, अगर खामियाजा हुआ था तो हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, वक्त वक्त होता है और जीवन भी ऐसे ही वक्त से ही बना हुआ होता है, उसमें भी उतार चढ़ाव आता है ना, फिर उसका खामियाजा कौन भरता है? हम ही तो भरते हैं, आप भी भरते हैं, अपनी अपनी लाइफ में सभी भरते हैं, तो बस यही कहेंगे। और हाँ जी, इन्होंने हमें याद दिलाया, मतलब हमारे बीरबल जी ने याद दिलाया कि आज महाराणा प्रताप जी का जी की जयंती है, तो उनको शस्त्र नमन है हमारी ओर से, यानी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा की ओर से और आप सभी की ओर से। और ऐसे वीर महापुरुष जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की और आज भी हम उनके वीर और शौर्य को याद करते हैं।

0: जिंदगी।
1: जी हाँ बेशक, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग अभी आपने एंजॉय किया दीपांशी जी की डिमांड पे। और अभी हम बढ़ेंगे अपने सुरेंद्र यादव जी की डिमांड पे, जो हमें सुनते हैं गौरा चौकी से। गौरा चौकी से सुनने वाले सभी लिसनर्स को हमारा राम राम।

की प्लेलिस्ट तो क्या ही बोलूं, मजा ही आ गया। आप सभी की डिमांड एक से बढ़कर एक थी और आप सभी ने काफी मेहनत किया कॉल मिलाने में, ये भी मुझे अच्छे से पता है। और बहुत बहुत शुक्रिया जो जहां से भी हमें सुन रहे थे उन सभी का, और इतना प्यार बरसाने के लिए भी बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूं। और यही कहूंगी कि बने रहिए, अभी भी आखिरी नगमा है बहुत खास वाला, और उससे पहले ये गाना खत्म होने देंगे।

क्या बात है भाई, बहुत ही प्यारी सी प्लेलिस्ट बनवा दी आज की आप लोगों ने। शो को सुपर हिट कराने में आप ही का हाथ है, तो इस हाथ को ऐसे ही बरकरार रखिएगा। बड़े ही नेक हाथ हैं आप सभी के, क्योंकि गाने बड़े प्यारे प्यारे चुन के लाते हैं। तो चलते हैं आज की लास्ट डिमांड की ओर, और इसी के साथ मैं लूंगी आप सभी से अलविदा। प्रीतम जी और रीतलाल जी की डिमांड है, एक लोग हमें सुनते हैं गोंडा से और एक लोग सुनते हैं हमें इलाहाबाद से। और अब मुझे इजाजत दीजिए, और अपना अपने अपनों का ख्याल रखिए, और खाते पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए वही अपना पसंदीदा चैनल यानी कि रेडियो गाना 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और ये लास्ट डिमांड, मिलते हैं मंडे या फिर कल, देखते हैं कब मिलते हैं। मिलेंगे तो है ही भाई, हैं अभी हम कहीं जा नहीं रहे हैं।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: अरे सुना?
3: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
4: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
9: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
10: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
11: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
12: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: कृष्णकांत जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा।
1: हरिश्चंद्र जी, जिस दिन सारे बेटों के बाप आप जैसे हो जाएंगे, उस दिन बेटियां किसी बाप के लिए बोझ नहीं कहलाएंगी।

0: टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में, और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
0: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: डिलीशियस
6: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
5: और क्या क्या है खास?
6: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
5: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45। अरे सुना
7: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
7: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
8: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है, और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
9: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी, और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
8: सच में? क्या खास है वहाँ?
9: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है, जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
8: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
9: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
8: और फोटोग्राफी वगैरह?
9: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
8: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
9: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
8: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
10: आप सुन रहे रेडियो 11.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके रेडियो 11.6 वाले स्टूडियो में। तो आज भी हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक सिंह सर, जो मन मित्र मनोचिकित्सा केंद्र के संचालक हैं, साथ ही साथ वो एक बढ़िया से कवि भी है। जी हाँ, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और आज हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले सर, आपका हम वेलकम करते हैं।
11: आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ नाचीज को अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के लिए आमंत्रित किया। मैं चाहूँगा कि मेरे माध्यम से आपको थोड़ा सा प्रचार प्रसार में मदद मिले।
10: थैंक यू सो मच सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कल जैसा कि माहौल है, बहुत ज़्यादा लोगों में अग्रेशन है, डिप्रेशन है, वो सारे मुद्दों पे आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर अशोक सिंह साहब बैठे हुए हैं। तो सर, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में।
11: जी, मैं यही गोंडा का रहने वाला हूँ। गोंडा में एक तहसील पड़ती है तरफगंज
10: जी,
11: जिसमें एक नदी के किनारे बाढ़ग्रस्त इलाका है बनगांव
10: जी,
11: वहीं हमारी जन्मभूमि है। प्राथमिक शिक्षा दीक्षा वहीं गांव के ही स्कूल से हुई है। उसके बाद मैं बहराइच चला गया, इंटरमीडिएट की शिक्षा बहराइच में हुई। उसके बाद फिर लखनऊ में तैयारी के लिए गया, फिर MBBS में सिलेक्शन हुआ, फिर मैं BRD मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया और फिर अपनी MD की पढ़ाई मैंने BHU से की है।
7: BRD मेडिकल कॉलेज मतलब गोरखपुर
11: जी।
10: तो सर, ये मैं आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, मनोचिकित्सक ही क्यों?
11: मनोचिकित्सक इसलिए मैं बना क्योंकि बाकी डॉक्टर किसी मरीज की पीड़ा को कम कर सकते हैं
10: जी,
11: और मनोचिकित्सक मरीज की पीड़ा के साथ उसके माँ बाप, उसकी पत्नी, उसका भाई बहन, इवन कि उसके मोहल्ले तक का जो है इलाज कर सकता है इस माध्यम से। क्योंकि जो मानसिक रोगी होता है वो खुद तो परेशान रहता ही है, साथ में उसके घर वाले और कुछ ज़्यादा ही परेशान हुआ तो उसके अगल बगल के लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि एक लोगों का इलाज करके मैं हो सकता है कुछ 10-5 लोगों का इलाज कर सकूं।
10: तो इसके पीछे कोई घटना घटी थी सर, जहां से आपने ये इंस्पिरेशन ली?
11: नहीं, इसके पीछे घटना कुछ नहीं घटी थी। एक्चुअली मैं शुरुआत से ही थोड़ा सा साहित्य में मेरा इंटरेस्ट था, तो मुझे ऐसा लगा कि मनोविज्ञान और साहित्य शायद एक नदी के दो धारे हैं
10: जी जी,
11: और अगर दोनों पे अपनी पकड़ रहती है तो शायद कुछ और अच्छा हो।
10: सर, बोला अक्सर ये जाता है कि एक साथ दो नाव पे सवार होना नहीं चाहिए, तो ये दूसरा नाव माने या दूसरा आपके ये लाइफस्टाइल का एक मतलब एक तरीका है आपको अपने को बूस्ट करने का?
11: अगर फ्रेंकली कहें तो ये है कि मैं 99% तो मैं कवि हूँ।
10: अरे क्या
11: कभी क्या, मैं राइटर हूँ और बाई चांस बाई मिस्टेक मैं डॉक्टर हूँ।
10: तो सर, चूंकि सीजन चल रहा है सर्दियों का
11: जी,
10: तो कोई कविता इस सीजन को लेके?
11: कविताएं तो मैंने हर तरह से लिखी हैं। मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में कोई रंग नहीं बचा होगा जिस पे मेरी कोई पंक्तियां ना हो।
10: क्या बात है।
11: लेकिन बस ये है कि मैं बहुत नामचीन नहीं, मैं कुछ बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं हूँ, और एक कमी जो मेरे अंदर है कि मुझे अपनी ही लिखी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ये अतिशयोक्ति ही होगी कि अगर ये मैं कह दूँ कि मैंने बहुत सारा लिख डाला है, लेकिन ये सच है कि मुझे खुद ही भूल जाता है कि मैंने क्या क्या लिखा है।
10: तो सर, आप उन लोग को एडवाइस क्या देते हैं जो मरीज आके बताते होंगे कि उनकी मेमोरी की दिक्कत है?
11: हाँ, तो उसमें जो है अच्छी एडवाइस ये है
10: जी
11: कि जो फॉरगेटफुलनेस होती है, भूलने की बातें होती हैं
10: जी,
11: अगर आप एज के साथ भूल रहे हैं तो दैट मे बी डिमेंशिया, लेकिन अगर आप एक उम्र से पहले ही भूल रहे हैं दैट मे बी एंजाइटी। आप बहुत सारे कामों में, बहुत सारे परेशानियों में उलझे हुए हैं तो आपको भूल जाने की आदत है, तो वो मेरे साथ भी हो सकता है क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ ना, तो मैं भी भूल जाता हूँ।
7: हाँ डॉक्टर साहब, ये बात सही कही, और आपने भी बताया कि आप 99% कवि हैं और 1% में आप बाई मिस्टेक डॉक्टर हो गए। डॉक्टर साहब, हमने आपकी एक कविता अमर उजाला में पढ़ी हुई थी
11: जी।
7: और अभी हमारे RJ अदनान ने बोला कि सर्दियाँ बहुत चरम सीमा पे हैं, तो सर्दी पे अगर कोई कविता अगर आपके पास इस समय उपलब्ध हो तो जैसा सुनाए
11: जी।
7: जी सुनाए।
11: सर्दी पे मैंने अभी तत्काल में ही कविता लिखी थी
10: जी,
11: तो जिसमें मेरे मतलब कहानियों के जो पात्र होते हैं
10: जी,
11: कहानियों के जो पात्र होते हैं वो शायद मेरे इर्द गिर्द के ही होते हैं
10: जी,
11: तो मैं उन्हीं के माध्यम से अगर अपने अवधि की भाषा में जो है बात करनी होती है तो मैं उनके माध्यम से कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। तो इस कविता में मैंने सर्दी और अपने क्लिनिक के बारे में मिक्स करके लिखा है कि बंद कर ये दवाई दुर्मुट का टंट और घंट। टंट और घंट गोंडा की एकदम पेकुलियर भाषा है
10: जी,
11: तो अवधि को अगर हम नहीं प्रमोट करेंगे तो फिर कौन करेगा?
10: बिल्कुल बिल्कुल।
11: तो इसलिए मैंने इस तरह की शब्दों को जो है ढूंढा है, और मैं अपनी कविताओं में उसका जो नाम मैंने दिया है वो झोला छाप शायरी है।
10: झोला छाप शायरी,
11: झोला छाप शायरी
10: ये टाइटल है आपके? हाँ, ओके।
11: तो और मेरे बारे में ये है कि मुझे बहुत अच्छे लोग तो नहीं जानते हैं लेकिन जानते सब हैं।
10: वाह,
11: मैं झोला छाप शायरी का मैं पहला और आखिरी कवि हूँ।
10: क्या बात
7: नहीं,
10: है
7: इस पे
11: भी, मैं इस पे भी आपको भी एक कविता सुनाता हूँ फिलहाल सर्दियों पे, कि बंद कर ये दवाई दुर्मुट का टंट और घंट, चल रहे घंटुआ फोरा जाए टका पे घंट।
10: वाह,
11: हेर कचैला बार दे बिकट जहाजी कौरा तापे जहाँ सब गांव जवार के लंठ चल रे घंटुआ फोरा जाए टका पे घंट सीखा जाए धुप्पड़ बाजी तेल मसाज घरे बुलावा जाए नेता और महानव संत चल रे घंटुआ फोरा जाए टका पे घंट अबसी देसी ठेका के आवेदन कह दे अबसी देसी ठेका के आवेदन कह दे विधायक जी के नाव बजाए के संग चल रे घंटुआ फोरा जाए टका पे घंट अब कोहरा धरती से गगन तक छाया बाप रे बाप आज से बढ़ गए ठंड चल रहे घंटुआ फोरा जाए टका पे घंट
7: जी जी ये बहुत अच्छी बात रही है ठंडक के बारे में और डॉक्टर साहब इसमें कंटिन्यू करिए सर
11: इसमें एक और दूसरी कविता है कि लय लेने दे उनको राज पसार चल रहे घंटुआ कौरा बार लय लेने दे उनको राज पसार चल रहे घंटुआ कौरा बार आज भने बने फिर भवरी भरता ठठरवा से लेके पिसान उधार चल रहे घंटुआ कौरा बार खुआवा राबड़ी के चक्कर छोड़ कौरा में चल आलू भाटा जार चल रे घंटुआ कौरा बार हीटर ब्लोअर है शौक अमीरी तू लाव कुल्हारा चैला फार चल रे घंटुआ कौरा बार
12: क्या बात है
11: कालिया यहाँ मछरी न भूजो यठिर खाए पूरा गांव जवार चल रे घंटुआ कौरा बार सुलगत है बस धधकत नहीं लाए के डार कुछ खर पतवार चल रे घंटुआ कौरा बार हे मंगरू ज्यादा खौर भौर करो ना सेको हाथ गोड़ चुपाई मार चल रे घंटुआ कौरा बार
7: अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए आपने ये अवधी भाषा में लिखा और आपने बताया कि आप तरबगंज के रहने वाले हैं तो बट नेचुरल है कि वहाँ पर तो ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं हम लोग के यहाँ भी बोली जाती हैं घर पे तो आपने MBBS किया साइकेट्रिक डॉक्टर बने वहाँ का जो मेथड पढ़ाई का होता है वो सब इंग्लिश हो जाता है तो आप अवधी पे क्यों उतर रहे
11: क्योंकि मेरी पैदाइश अवधी है मैं ये चाहता हूँ कि मेरी भाषा का हमारे जैसे सेवकों के माध्यम से थोड़ा सा प्रचार प्रसार हो
7: जी जी
11: अच्छा लगता है कि लोग समझें
12: ओके
11: एक बार को तो आदमी कह सकता है कि मतलब ये देखो ये पढ़ा लिखा भी है कि नहीं मैंने इस बात पे भी लिखा था कि कई बार लोगों को तो ये शक होता कि मतलब इसने MD की डिग्री ली भी है कि नहीं
12: ओके
11: कई बार ऐसा होता है लेकिन नहीं मैं हर जानर में हर तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ
12: तो सर एक सवाल मेरा ये है अक्सर ये देखा जाता है कि अगर हम कोई अपनी क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमको कम पढ़ा लिखा की क्यों आगा जाता है ये क्या वजह होती है
11: तो बस इसी मान्यता को इसी चीज को खत्म करने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है झोला छाप शायरी
12: क्या बात है ये तो बड़ा बखूबी अच्छा काम कर रहे हैं आपकी क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि अपनी भाषा से जुड़े और अगर हम खुद ही लोगों को जज करने लग जाते हैं उनकी भाषा के अकॉर्डिंगली तो शायद वो बेहतर नहीं
11: ये गलत बात
12: ये गलत बात है
7: अन्ना जी मुझे याद आ रहा है एक बार मैंने पढ़ा था कि निज भाषा उन्नति आहें सब उन्नति को मूल और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल यदि अपनी निजी भाषा हम नहीं जानेंगे तो हमारी पीड़ा मिट नहीं सकती
12: नहीं मिट सकती
11: ये भारतेंद्र जी ने कहा था
7: जी भारतेंद्र हर्ष उनकी डॉक्टर वो है जी डॉक्टर साहब कोई और कविता जो हम लोग अयोध्या के बगल के रहने वाले हैं तो रामचंद्र जी पर आपने कुछ बनाया हो या अयोध्या पर बनाया हो या कोई व्यंग इस तरह का हो
11: एक समय ऐसा आया था जब मंदिर का निर्माण हो रहा था मतलब उसकी प्रस्तावना ही चल रही थी निर्माण हो नहीं रहा था उस टाइम मैंने एक उपन्यास लिखने की कल्पना की थी जिसके 6-7 जो है भाग मैंने लिखे थे लेकिन फिर कई सारे लोगों के फ़ोन आए कि नहीं बहुत ज़्यादा मामला वो है गंभीर है तो इस पे अभी आप मत लिखिए तो फिर मैंने नहीं लिखा 6-7 उसके बाद तो एक कविता है मेरी कि सबके मन में हो राम बसे जिंदगी साधारण हो सबके मन में हो राम बसे जिंदगी साधारण हो गोंडा अयोध्या सी एका हो मध्य में सरयू पारायण हो
12: क्या बात है
11: भाई हो कुंभकर्ण जैसा हो भरत सपस्तावा भाई हो कुंभकर्ण जैसा हो भरत सपस्तावा भक्ति हो भीलन सी प्रभु श्री राम सा अपनावा भक्ति हो भीलन सी प्रभु राम सापनावा नल नील सी हो चतुराई अंगत सी अटलता हो पत्थर भी तैरे पानी में इतनी सी सरलता हो
12: क्या बात है
11: ये कविता उस पे थी
7: जी जी जी ये तो बहुत अच्छी चीज बताई आपने कि जो आपने बताया कि गोंडा और अयोध्या एक ही है बस बीच में सरयू जी का ये नदी का एक वो हो जाता है
11: जी जी
7: अच्छा डॉक्टर साहब जैसे आप सामायिक चीजें लिखते हैं तो क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप बिल्कुल सामायिक चीजें लिख रहे हैं तो यहाँ की राजनीतिक जो है उस पर कटाक्ष हो जाता हो तो यहाँ के सिटिंग MP MLA बुरा मान जाते हूँ
11: लिखता तो मैं हूँ और शायद इसीलिए मैं बिका नहीं मेरे पास आते जरूर हैं ऑफर इस तरह के मैंने बहुत बड़े बड़े मंच छोड़ दिए। बड़े बड़े का मतलब बहुत बड़े बड़े मंच छोड़ दिए, क्योंकि कलम मेरी बिक नहीं सकती है, मैं किसी के फेवर में नहीं लिख सकता, मैं चारण नहीं हूँ, तो लिखता हूँ, जिसको बुरा लगता हो लगता हो
7: जी,
11: क्या
7: जी,
11: कर सकते हैं
7: जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मनोचिकित्सक हैं और आपने कविताएं लिखना शुरू की
11: जी,
7: तो इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बैठाते हैं, सामंजस्य कैसे बैठाते हैं?
11: सामंजस्य क्या है, कविता तो कहिए कि चुटकियों का काम है, मन में आया तुरंत लिख दिया, अगर नहीं लिखा।
7: आप इससे चूंकि इसके अंदर घुसे हुए हैं
11: जी जी,
7: मतलब आपने कविता को आत्मसात कर लिया है, इसलिए आपको लगता है कि ये चुटकियों का काम है,
11: तो ये ऊपर वाले की कृपा होगी
7: जी। क्योंकि एक बात बताएं
11: जी,
7: कि डॉक्टर साहब आपको व्हाट्सएप का जमाना चल गया
11: जी
7: है
11: जी,
7: लेकिन मैं थोड़ा सा पहले की बात बता रहा हूँ, व्हाट्सएप के थोड़ा सा पहले की बात बता रहा हूँ, कि जब प्रेमी और प्रेमिकाएं होते थे
11: जी जी,
7: तो वो लोग लव लेटर लिखते थे
11: जी जी,
7: तो अक्सर स्टूडेंट लाइफ में लोग पूछने आते थे कि भैया दो ही लाइन लिख दिए ना, एक आगे वाली बढ़ाओ
11: जी जी,
7: तो वो आदमी बढ़ा ही नहीं सकता है, जबकि प्रेम का मामला है
11: जी जी,
7: और आप तो पूरी पूरी उस चीज को पद्य में उतार रहे हैं, हम तो गद्य की बात कर रहे हैं, आप पद्य में उतार रहे हैं
11: जी जी,
7: तो ये बहुत बड़ी चीज है। आपको लगता है कि ये मेरे लिए उंगलियों में चुटकियों का खेल है?
11: मैं इसके बारे में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये ऊपर वाले की कृपा होगी, कि अगर मेरे दिमाग में कोई एक शब्द आता है और मुझे लगता है कि इसको उकेरना चाहिए, बढ़ाना चाहिए आगे, तो मैं किस बात को साक्षी मान के कहूँ कि कभी मेरी कलम रुकी नहीं, जब तक उसने 8 लाइन 10 लाइन लिख ना ली तब तक कभी रुकी नहीं, वो अपने आप पूरी हो जाती है।
7: अच्छा डॉक्टर साहब, कभी ऐसा भी होता है कि आपके मन में कोई भावनाएं आ गई और आपने कहा मेरी कलम रुकी नहीं
11: जी,
7: और पेशेंट भी सामने बैठा है
11: जी,
7: फिर आप क्या करते हो?
11: तो आजकल ये जमाना है, आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तुरंत सेव हो जाता है, कोई चीज दो अक्षर लिखा और ऐसा लगा कि कोई ऐसी इमरजेंसी है तो तुरंत सेव कर दिया, दिमाग में आया तो फिर से लिख दिया, नहीं आया तो भूल गए।
12: यानी प्रायोरिटी आपकी यही रहती है कि हम पहले लिख लेंगे?
11: हाँ, प्रायोरिटी रहती है कि कोई चीज भूल ना जाए, क्योंकि जो चीजें अचानक से आती हैं ईश्वरीय कृपा से, वो चीजें अपने आप में बहुत प्रेरक होती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि समाज के पास भी वो चीजें पहुंचे
12: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई मरीज आया हो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो आपके पास और आपने कुछ हास्य व्यंग उसको कुछ कविताएं सुना दी हो
11: जी,
12: और उसका मूड ही चेंज हो गया हो
11: जी,
12: ऐसा होता है?
11: नहीं, एक्चुअली में क्या है ना, अगर आप मतलब बीमारियों पाएंगे तो मैं उस पर जाऊंगा
12: जी जी बिल्कुल,
11: क्योंकि जो लोगों की समझ है और जो बीमारियां हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क है।
12: करेक्ट।
11: जैसे आदमी को लगता है कोई दुखी है, कोई थोड़ी देर के लिए उदास है, कोई रो रहा है तो डिप्रेशन में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम समय या परिस्थिति बस किसी कारण बस उदास भी हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, रो भी सकते हैं, एक दो दिन खाना नहीं सो नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेशन में चले गए।
12: करेक्ट।
11: लेकिन हमारे यहाँ का ये मानना है कि बस ये लड़का तो डिप्रेशन में चला गया, ऐसा नहीं होता, उसके लिए क्लियर कट गाइडलाइन होती है कि आप कम से कम 14 दिन के लिए, ज़्यादातर समय आपका मन उदास रहता हो, आपको जो चीज़ें पहले अच्छी लगती रही हों अब ना अच्छी लगती हों, बहुत जल्दी आप थक जाते हो, जरा सा भी काम करने पे आपको थकान लगती हो, तो ये इसके कार्डिनल साइन होते हैं। उसके बाद फिर भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं लग रही है और सारी चीज़ें हैं, ये सब मिलके उसको बनाते हैं। तो 1-2 मिनट में ना तो किसी की तबीयत ख़राब होती है और ना मेरे 1-2 मिनट कहने से किसी का मूड तुरंत चेंज हो सकता है। हाँ, ये है कि मैं अपनी कविताओं का पाठ या उसके माध्यम से मैं किसी मरीज को तो नहीं, लेकिन जो उनके घर वाले रहते हैं उनको अगर समझाना होता है तो मैं प्रसंग बस बातें कहता जरूर हूँ।
12: अरे वाह, तो कोई किस्सा ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे?
11: ऐसे बहुत सारे किस्से रहते हैं,
7: कोई एक शेयर कीजिए।
11: कि जैसे ज़्यादातर लोगों को ये लगता है मरीज को आराम नहीं हो रहा है या फिर ये दवा कब तक चलेगी, कितने दिन तक चलेगी, तो उनको बहुत सारे माध्यमों से ऐसा बताया जाता है कि भाई देखिए मेरा जो पर्चा है उसी पे लिखा हुआ है कि इसमें थोड़ा सा समय लगता है, 1-2 दिन में नहीं सही हो सकता है, मैं इंसान ही हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, अल्लाह मियाँ नहीं हूँ कि मैं आपकी जो है पीड़ा तुरंत हर लूँगा। तो इन सब माध्यमों से समझाने की कोशिश की जाती है।

0: नहीं सकते।
1: ना
0: कई बार तो ये होता है कि हमको पता ही नहीं होता है कि हम हिंदी बोल रहे हैं कि उर्दू बोल रहे हैं। वो इतना आत्मसात कर गई है, घर कर गई है कि दोनों भाषाओं में विभेद मुश्किल ही है।
1: जी जी।
0: तो इस बात पे मैं एक कविता सुनाता हूँ
1: जी जी जी।
0: कि मेरे खत का जवाब अब तो देता नहीं है कोई। ये सुनाने का सिर्फ मकसद यह है कि मैं अवधि भाषा का प्रचार प्रसार चाहता हूँ अपने झोला छाप शायरी, जिसमें झोला छाप शब्द यानी कि जो एकदम प्रचलित हैं उनका इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छा साहित्य लिख नहीं सकता हूँ।
2: नहीं डॉक्टर साहब, वही है ना कि होर हार वीरवान के होर सीखने पर। डॉक्टर साहब बहुत हल्के में कह के बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और ये हम लोग के लिए बहुत फ्रूटफुल है, हम लोग के लिए बहुत लाभदायक है।
0: तो मैं कविताओं के हवाले से मैं दो कविता आपको और सुनाना चाहूंगा, उसके बाद मैं चाहूंगा कि कुछ मनोविज्ञान मनोचिकित्सा के बारे में थोड़ी सी बातें हों।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो उर्दू और हिंदी की बात हुई है उसके लिए मैं बताता हूँ कि मेरे खत का जवाब अब तो देता नहीं है कोई। मेरे खत का जवाब अब तो देता नहीं है कोई, मेरे दर्द का हिसाब अब तो लेता नहीं है कोई।
1: क्या बात है।
0: मैं भटका हुआ मुसाफिर कोई रास्ता नहीं बताता, मैं भटका हुआ मुसाफिर कोई रास्ता नहीं बताता, ये पुण्य ये सवाब अब लेता नहीं है कोई।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: कि वो जो एक दर्द पाके मैं अपना सब दर्द भूल जाऊं, कि वो जो एक दर्द पाके मैं अपना सब दर्द भूल जाऊं, वो बस एक दर्द बेहिसाब कोई देता नहीं है।
1: आए है, क्या बात।
0: वो बस एक दर्द बेहिसाब अब देता नहीं है कोई। और मैं तो गूंथने चला था इंसानियत की माला, मैं तो गूंथने चला था इंसानियत की माला, और फिर हाथों में मेरे हाथ क्यों देता नहीं है कोई।
1: आए है,
0: मेरे दर्द का हिसाब अब देता नहीं है कोई।
1: बहुत बड़ी बात।
0: और एक आखिरी शेर है कि कहते हैं सभी एक है गीता कुरान और बाइबिल, कहते हैं सभी एक है गीता कुरान और बाइबिल, फिर बना के एक किताब क्यों देता नहीं है कोई।
1: आए है, क्या बात, क्या बात है, क्या वाह।
0: और मैं अपनी धड़कनों की सजा किताब से, जिसका मैंने जिक्र किया, उससे एक जो मेरी महबूब कविता थी, गजल थी
1: जी,
0: वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
1: तो अपने श्रोताओं को बता दे कि ये जो गजल प्रस्तुत करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब, वो अपने बुक की ही सबसे ज्यादा फेवरेट महबूब फेवरेट
0: ये शायद मतलब उसी लिए पूरी किताब लिखी गई।
1: क्या बात है, यानी ये गजल ही जिम्मेदार थी उस पूरी किताब।
0: जी जी,
1: बहुत अच्छा।
0: जी
1: जी।
0: तू जूही मेरी तू गुलाब मेरा, तू नींद मेरी तू ख्वाब मेरा, मेरा रोना हंसना तुझसे है, मेरा जीना मरना तुझसे है, तू धरती मेरी तू आकाश मेरा, तू जूही मेरी तू गुलाब मेरा, तू नींद मेरी तू ख्वाब मेरा, तितली की कोमलता तुझसे, कलियों की, शायद मैं भूल गया, कलियों की कोमलता तुझसे, तितली की चंचलता तुझसे, तू सावन फागुन बरखा है, तू बसंत मेरा तू ऋतुराज मेरा, तू जूही मेरी तू गुलाब मेरा, तू नींद मेरी तू ख्वाब मेरा, मेरे झूठ असल सब तुझसे हैं, मेरे गीत गजल सब तुझ, तू सात सुरों का संगम है, तू संगीत मेरा तू साज मेरा, तू जूही मेरी तू गुलाब मेरा, तू नींद मेरी तू ख्वाब मेरा।
1: क्या बात है
0: जी,
1: क्या बात है, क्या बात है। मतलब डॉक्टर साहब, शायद मेरे पास भी शब्दों की कमी है आपको अप्रिशिएट करने की। आप तो कहते हैं कि लोग मतलब पहचान नहीं, मैं तो कहता हूं कि जिससे आप मिलते हैं, आप मिलते नहीं, दिल में उतर जाते हैं, और मेरे दिल में आप उतर चुके हैं
0: जी।
1: और चूंकि आप कह रहे थे कि आपको थोड़ा सा भूलने की दिक्कत है, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे भूलने की फिलहाल अभी इतनी दिक्कत नहीं है। तो एक ब्रेक का वक्त हो चला है और हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि सुनते रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। मिलते हैं छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
0: धन्यवाद।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
2: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
1: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
2: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
1: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबराहट हटाने पर डॉक्टर को दिखाएं।
2: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
1: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: अच्छा ये बताओ।
2: हाँ सर।
1: तुमने अपनी जिंदगी में कभी कोई नेक काम किया है?
2: हाँ बिल्कुल किया ना सर।
1: क्या किया?
2: एक बुजुर्ग धीरे धीरे अपने घर जा रहे थे और मैंने उनके पीछे एक कुत्ता छोड़ दिया और जल्दी से उन्हें उनके घर पहुंचा दिया।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: वेलकम बैक, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और शो चल रहा है मेहमान के साथ बातचीत का, जिसमें मौजूद है डॉक्टर अशोक सिंह साहब, मनमित्र मनोचिकित्सा केंद्र के संचालक, साथ ही हमारे को होस्ट सुपर सीनियर उपवन कमल जी। तो आपका डॉक्टर साहब एक बार फिर से हम वेलकम करते हैं, और अपने श्रोताओं को बता दें कि हमने जाने से पहले ब्रेक पर महबूब गजल का जिक्र डॉक्टर साहब ने किया था, तो ये था साहित्यिक पार्ट हमारे डॉक्टर साहब के जीवन का। और अब हम बात करते हैं, चूंकि आप मनोचिकित्सक हैं तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसका सामना हम लोग आम तौर पर करते ही करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा इस वक्त, स्पेशली अगर हम यंग पीपल की बात करें, आजकल जो यंगस्टर्स हैं उनमें बताते हैं कि इनमें मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो ये अग्रेशन की क्या वजह है? उसके बाद आप इसका भी मुझे आंसर करिएगा कि लोग कहते हैं डिप्रेशन है, एनजाइटी है, तो क्या ये डिप्रेशन, एनजाइटी या कुछ जो वक्ती प्रॉब्लम होती है, ये क्या सब एक ही है या अलग अलग टर्म के लिए इनको यूज़ किया जा सकता या किया जाना चाहिए?
9: जी, एग्रेशन की बात जहाँ तक है नवयुवकों युवतियों में, तो वो तो जनरेशन गैप की बात है। क्योंकि हाँ, पहले जैसी समझ नहीं रही, हर चीज़ को जल्दी पा लेने की, कर लेने की इच्छा रहती है, और चीज़ें तो वैसे ही होंगी जैसे उसका रास्ता है।
8: तो सर, ये आता कहाँ से है मन में? आजकल यंगस्टर्स क्यों इतना जल्दी के पीछे पड़ते हैं?
9: जल्दी, आजकल का ज़माना ही इतना मॉडर्न हो गया है, हर चीज़ फास्ट है, हर चीज़ में मतलब फास्टनेस है, तो फिर किसी सफलता में, किसी काम को पाने में आदमी को जल्दी रहती है।
8: तो कह सकते हैं जो टेक्निकली चेंज आया है,
9: टेक्निकल एडवांसमेंट जो है, इसका कुछ कारण है,
8: इसका ये कारण है जो बिहेवियर पे आ रहा है।
9: जी
8: डॉक्टर साहब, बात जी करिए।
9: और अभी पिछले सेशन में बात हुई थी मनो रोगों के बारे में, तो उसमें डिप्रेशन में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ तुरंत अगर हो किसी को तो उसको हम बीमारी नहीं कहते हैं, एक समय होना चाहिए, समय के साथ कुछ और लक्षण होने चाहिए
8: जी।
9: तो डिप्रेशन पे तो मेरी बात हो चुकी है, अब एक दूसरी बीमारी आती है एंजाइटी
8: जी।
9: तो एंजाइटी किताबों में लिखा तो कुछ दूसरा है, लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करना रहता है, लोगों की समस्याएं सुननी रहती है, उसका निदान करना होता है, तो आपको उस भाषा में जानकारी रखनी होती है और बतानी भी होती है। तो लिखा तो ये हुआ है कि एंजाइटी मीन्स कि फियर फॉर नो रीजन
8: जी,
9: मतलब हम उस बात से डरें या चिंता करें जो वास्तव में हो ही ना। या फिर थोड़ा सा और इसको जनरल किया गया तो कहा गया कि फियर फॉर इनएडिक्वेट रीजन, यानी कि कुछ कारण तो है लेकिन उससे बाकी लोगों को दिक्कत नहीं हो रही, सिर्फ हम ही को हो रही है। तो ये होता है एंजाइटी, बेसिक इसकी जो समझ है वो ये है।
8: Okay.
9: बाकी लक्षण होते हैं कि आपको उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, बार बार निगेटिव थाट मन में आते रहते हैं, हाथ पैर में दर्द रहने लगता है, बार बार आदमी पेशाब जाता है, मुंह सूखता है, गला सूखता है, तो ये एंजाइटी के लक्षण होते हैं
8: जी
9: जी। और इस तरह की परेशानियों को लेकर अक्सर लोग

0: ये डिप्रेशन होता है,
1: ये डिप्रेशन का
0: जी, और डिप्रेशन मतलब तभी होता है सीवियर, जिसको मतलब लोग समझते हैं सुसाइड जब कर लेता है आदमी। तो डिप्रेशन का ज़्यादा नाम इसलिए होता है कि ज़्यादातर लोग, बड़े बड़े लोग, समझदार लोग, फिल्म स्टार्स, इन लोगों में जो सुसाइड होता है वो उसका कारण डिप्रेशन ही रहता है। इसलिए डिप्रेशन पे पब्लिक का भी ज़्यादा जोर रहता है और जो मनोचिकित्सक हैं, जो मनोसंस्थान हैं, उनका भी जोर रहता है कि डिप्रेशन पे ज़्यादा बातें होती हैं।
1: तो डॉक्टर साहब हमको ये बताइए, आपने कहा जैसे, और ये चीज़ सुनने में भी आता है आजकल, तो बहुत सारे ऐसे सुसाइडल केसेस आए जो बॉलीवुड से हैं, तो जब इतना बड़ा इंसान स्टार बन जाता है
0: जी,
1: जो जिंदगी में चाहिए होता है वो मिल जाता है, उसके बाद फिर ऐसा कदम क्यों उठाते हैं?
0: बस यही यही यही मुझे जानकारी मतलब इस समाज को देनी है कि अगर किसी के जाने से, किसी चीज का नुकसान होने से कोई चीज होती है तो डिप्रेशन नहीं है, वो तो रिएक्शन है कि हमारा भाई ये नुकसान हो गया है तो हमको दुख होगा। दुख डिप्रेशन नहीं है, ये इंडोजिनस होता है, सब कुछ है, सब कुछ वैसा ही है लेकिन हमारी सोच बदल गई, ये डिप्रेशन है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं
1: जी,
0: आपके पास बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, आपके पास एरोप्लेन है, सब कुछ है, जैसे दीपिका पादुकोण
1: जी,
0: फिर भी उनको डिप्रेशन हुआ, तो किसी चीज के होने ना होने से नहीं होता, ये हमारी सोच की बात है। अगर हमारी सोच निगेटिव हो गई तो ये डिप्रेशन है। मेरे शब्दों में डिप्रेशन इज ए न्यूरो साइको इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट।
1: ओके,
0: मतलब ये कि जैसे डायबिटीज है, एड्स है, इसमें क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है
1: जी।
0: तो हम छोटी छोटी बीमारियों से नहीं लड़ पाते हैं, को बुखार हो गया तो हम उसी से नहीं निपट पाते, डायरिया हो गया तो उससे नहीं निपट पाते, सांस लेने में दिक्कत हुई तो वो हमको जो है टीबी तक करवा देती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कमजोर है, हम किसी पैथोजन जो बाहर के होते हैं उनको मार नहीं पाते। ऐसे ही डिप्रेशन है कि डिप्रेशन में हमारा जो इम्यून सिस्टम है, सोचने वाला, साइको न्यूरो वाला जो सिस्टम है, वो इतना वीक हो जाता है कि हमको छोटी छोटी बातें उसी से निपटने में हमको दिक्कत होती है कि अब इसके लिए क्या करें, अब इससे क्या फायदा है, अब तो कुछ होगा नहीं, तो हमारी सोच एकदम नकारात्मक हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, रीजन क्या होता है फिर
0: किस चीज का?
1: ये
0: डिप्रेशन का
1: जी।
0: हाँ, डिप्रेशन का रीजन ऐसे तो मतलब किताबों में बहुत सारे लिखे हुए हैं
1: जी।
0: एक तो न्यूरोकेमिकल्स जो होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स
1: जी,
0: उनमें कमी हो जाती है, वो सीरोटोनिन एक केमिकल होता है, लेकिन बात उस लेवल की जाती नहीं, बात होती है सामाजिक ताने बाने की, जो मानसिक बीमारियां यानी मन, और मन किसी केमिकल पर डिपेंड नहीं करता है। मन तो आपके जो अगल बगल घटित होता रहता है, जो आपके घर परिवार में होता रहता है, आपकी सोच वैसे बनती जाती है, और जब आपके सोच के विरुद्ध कोई चीज़ होती है तो हमारी सोच उस तरफ चली जाती है, यानी कि हम सजेस्टेबल जब होते हैं तभी हमको मानसिक बीमारियाँ होती है। एक कम्प्लीट हार्ड पर्सनालिटी वाले को कभी मानसिक बीमारी नहीं होती, जो सजेस्टेबल होते हैं कि इन्होंने ये कहा तो मैंने ऐसा मान लिया, उसने कहा तो ऐसा मान लिया, उनको देखा तो वैसा बनने की कोशिश की, तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनमें होती है।
1: ओके, तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि देखिए, एक तो ये है कि ये इसके लक्षण होते हैं, पहले लक्षण के बारे में बताया, फिर उसके रीजंस के बारे में बताया, अभी क्योर के बारे में थोड़ा बताइए कि अगर किसी को है तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा लक्षण से
0: जी,
1: तो उसका तरीका क्या है?
0: इस बात का तो मैं बहुत मतलब जोर से जोर देकर बताना चाहूँगा कि अगर लोगों को ये लगता है कि टेलीफोन पर या रेडियो पर या व्हाट्सएप पे आप अपना लक्षण बता के या फिर जांच भेज के इसका इलाज चाहते हैं तो बिल्कुल संभव नहीं है।
1: ओके,
0: मनोचिकित्सा में जो जांच होती है उसको कहते हैं मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन।
1: ओके,
0: और इसको छोटे छोटे शब्दों में मैं बता दूँ कि मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन का मतलब होता है आपका हाव भाव क्या है, आपने पहना क्या है, आप उठते कैसे हैं, आप बोलते कैसे हैं, आप जवाब कैसे देते हैं, आप बिहेव कैसे करते हैं, आपका इंटेलिजेंस क्या है, आपका ओरिएंटेशन क्या है, चीज़ों के बारे में आपकी समझ क्या है। ये हम लोग 2 से 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जैसा मरीज होता है ये उसको देख के ही तय कर पाते हैं कि मतलब सच में क्या है। आपके बताने से, जैसे मैंने बताया ना कि सिर्फ दुखी हो जाना डिप्रेशन नहीं है
1: जी,
0: अब तो आप मान लीजिए हमारे मित्र ठहरे, आपने फोन पे कर दिया कि 2 दिन से तो हमारी बिटिया जो है खाई नहीं है या रो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको डिप्रेशन हो गया
1: है,
0: तो इस तरह से तो इलाज संभव ही नहीं है। तो इसके लिए बेहतर तरीका यह है कि आप मनोचिकित्सक मिलिए।
1: अच्छा। ठीक,
0: इसको बोझ मत समझिए, बीमारी को बढ़ाइए नहीं, मनोचिकित्सक से मिलिए। कुछ दवाइयाँ भी होती हैं एंटी डिप्रेशेंट, लेकिन दवाइयाँ जब कुशलता के साथ दी जाती हैं तभी काम करती हैं।
1: दवाइयों की डॉक्टर साहब आपने बात की, दवाइयों को लेकर अक्सर सुना जाता है मेंटल केसेस में कि नींद नहीं आ रही तो भी लोग दवा खाना स्टार्ट कर देते हैं, या शायद मनोचिकित्सक के पास इसलिए भी नहीं जाते हैं कि दवा ना दे दे।
0: हाँ,
1: ये कॉन्सेप्ट बताइए जरा,
0: ये
1: बहुत मिसकॉन्सेप्ट,
0: ये बहुत मिथ है समाज में
1: जी।
0: इसमें ऐसा है कि जो शरीर की बीमारियां होती हैं, अगर पेन ना हो

0: दर्द ना हो तो वो डॉक्टर के पास ना जाए। शरीर की बीमारियों का इंडिकेटर दर्द होता है। अगर आपको दर्द है तभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे। और मानसिक बीमारियों का इंडिकेटर स्लीपलेसनेस होता है। अगर आपको नींद नहीं आई एक दिन दो दिन तीन दिन, तब आपको याद आती है कि नहीं किसी को दिखाना चाहिए। जी
1: तो किस आप ये कैसे मतलब मरीज को देख के तय करते हैं कि ये अब ऐसी स्टेट में है या ऐसे स्टेज में है कि अब इनको दवा ही देना पड़ेगा, इनके बिहेवियर पे काम ना करके पहले दवा देना पड़ेगा इनको निकालने के लिए?
0: जी वो दवा इसलिए देना पड़ता है क्योंकि चीजें जो है तुरंत किसी के समझाने से नहीं समझती हैं।
1: जी
0: वो तुरंत नहीं समझ सकता है कि हमको कैसे क्या करना चाहिए। तो जब हम एक दवाई के माध्यम से एक सपोर्ट करते हैं और उसको अपने लक्षणों में कुछ थोड़ा बहुत राहत होती है, जैसे नींद लगने लगी, भूख लगने लगी, बेचैनी थोड़ा कम हुई, तो फिर वो डॉक्टर पर विश्वास करता है कि नहीं नहीं इसके दवा से हमको थोड़ा आराम हुआ है, तब इसकी बात से भी हमको थोड़ा आराम हो सकता है। तो ऐसे लोगों की हम काउंसलिंग या साइकोथेरेपी उसके साथ ही कर सकते हैं।
1: ओके
0: उसको पहले विश्वास में तो लें, क्योंकि हमारा हर कोई रिश्तेदार तो है नहीं, और अगर है भी तो वो मेरी बात क्यों मानेगा। तो उसको हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पहले उसको आराम हो थोड़ा, फिर उसको जो है बातचीत से ही जो करते हैं, जो बातचीत से करते हैं इसी को एक्लेक्टिक साइकोथेरेपी कहते हैं। इसमें हमको किसी विशेष जतन की, विशेष कमरे की, विशेष विधि की जरूरत नहीं होती है। हम आपकी समस्या बातचीत से ही जानते हैं और बातचीत से ही निदान करने की कोशिश करते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, तो बस मेरा इस चूंकि अभी बातचीत चल रही है कि मनोरोग से रिलेटेड,
0: जी
1: तो इसके से संबंधित हम एक ही चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि कोई एक ऐसा आप थोड़ा सा आइडिया बताइए कि अपने दिनचर्या में इंसान सुबह से लेकर शाम में उसको तो फॉलो करे तो काफ़ी हद तक खुद पे कंट्रोल कर पाएगा, या कह सकते हैं एक हेल्दी माइंड के साथ वो रहेगा।
0: इसमें तो सबसे बड़ी बात होती है संस्कार की।
1: संस्कार की
0: अगर आप अपने घर के बनाए हुए नैतिक मूल्यों पे चलते हैं तो मुझे लगता है कि आप सजेस्टेबल नहीं हो सकते, आप इजिली इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते लोगों से।
1: जी
0: और ये बहुत अच्छा वो हो सकता है, उपाय हो सकता है कि जो आपके घर में होता रहा हो, जैसे होता रहा, आप उसको फॉलो करिए। हमेशा अच्छी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, किसी चीज़ को बहुत अच्छा समझ के उसका पीछा नहीं करना चाहिए, उसके लिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से मानसिक बीमारियों से, क्योंकि उलझनों से, पर जो तनाव है इससे आप बचाव कर सकते हैं।
1: यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर हम फौरन ही किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो वो भी तरीका सही नहीं है।
0: वो बिल्कुल गलत बात है,
1: क्योंकि वो फिर वो स्टेबिलिटी नहीं रह पाती और कहीं ना कहीं हमको खुद पे डाउट होने लग जाता है, और शायद यही वजह होती है बात
0: जी,
1: में
0: जी। ये एंगर्स में बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि फला पर्सनालिटी तो ऐसी है, फला तो ऐसा है, फला तो ऐसा है, तो हम भी ऐसा करें, तो ये गलत बात है।
1: तो बिल्कुल, और हमारे ख्याल से जो भी यंगस्टर्स सुन रहे थे उनको ये नॉलेज हो गई होगी कि उनको फौरन ही किसी के ओपिनियन को लेना नहीं है, सुनना है, समझना है, लेकिन फैसला आपका ही एट द एंड होना है। तो चलने से पहले हम चाहेंगे कि एक कविता के साथ, शानदार कविता के साथ इस सेशन की एंडिंग की जाए, और आज का सेशन डॉक्टर साहब आपने बखूबी अच्छा चलाया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और जाने से पहले एक कविता और आपसे,
0: इससे पहले कि मैं आखिरी धन्यवाद दूं, अलविदा कहूं, मैं आप लोगों से अपनी एक गजल सुनाना चाहता हूं। अक्सर लोग पूछते हैं कि और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है जिंदगी में।
1: अच्छा,
0: किसी से मिलते हैं तो यही पूछता
1: वो खैरियत, क्या खैरियत वाला क्या
0: जी, जी
1: खैरियत है
0: जी, पूछते हैं लोग
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: मैं पूछता मतलब मैं कहता हूं कि आंसुओं से प्यास दिल की बुझती रही, आंसुओं से प्यास दिल की बुझती रही, कुछ इस तरह से जिंदगी चलती रही।
2: क्या बात,
1: क्या बात है।
0: अब और क्या सुनाए दास्ताने जिंदगी, अब और क्या सुनाए दास्ताने जिंदगी, लब तो हंसते रहे, रूह बस जलती रही।
1: ओए क्या बात,
0: कुछ इस तरह से जिंदगी चलती रही। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि आप जैसे अभी एंकर महोदय ने मुझसे पूछा
1: जी
0: कि आप जो है अपने डॉक्टरी और जो है साहित्य में कैसे वो करते
2: हैं, सामंजस्य
1: कैसे बैठते
0: हैं, उसके लिए मैं कहता हूं, और मैंने कहा था कि ये सब चीजें तो ऊपर से आती हैं, तुरंत हो जाती हैं
1: जी।
0: तो मैं कुछ लिखता नहीं, मैं कुछ करता नहीं, ये सब ऊपर वाला है कि वक्त ने की शायरी, वक्त ने लिखी गजल।
1: क्या बात है,
0: वक्त ने की शायरी, वक्त ने लिखी गजल, मेरी कलम तो कागजों पे बस चलती रही, कुछ इस तरह से जिंदगी चलती रही, आंसुओं से प्यास दिल की बुझती रही। एक आखिरी शेर है कि वक्त से बड़ा कारसाज, वक्त से बड़ा खुदा, वक्त से बड़ा भगवान कोई नहीं होता,
1: कोई नहीं होता।
0: ये यही दर्द देता है, यही खुशी देता है, यही सब कुछ करता है। तो वक्त वक्त पे हंसाया रुलाया इस वक्त ने, वक्त वक्त पे हंसाया रुलाया इस वक्त ने, अब वक्त की नाजुक कलाई जख्म सब सिलती रही, कुछ इस तरह से जिंदगी चलती रही।
3: क्या बात है क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने ये वक्त की बात की। एक टूटा हुआ आशिक भी मुझसे मिला था
0: जी।
3: तो उसने भी मुझे एक शेर सुनाया था कि वक्त से वक्त की क्या शिकायत करूं
0: जी,
3: वक्त से वक्त की क्या शिकायत करूं, अब वक्त ही ना रहा ये वक्त की बात है।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
3: वक्त से वक्त की क्या शिकायत करूं, अब वक्त ही ना रहा ये वक्त की बात है। उसने देखा मुझे, उसने चाहा मुझे, उसने ठुकरा, ये वक्त की बात है।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो वक्त की इतनी बात हो रही थी और वक्त से मुझे याद आ गया कि अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। तो बहुत ही उम्दा आज आपसे बातचीत हमारी हुई। आपने बहुत सारी बीमारियों पर खुलकर बात की, साथ ही आपने साहित्यिक जो भी आप जीवन जी रहे हैं उसके बारे में आपने बताया। और मैंने पहले ही आपसे बोल दिया कि आप मिलते ही हमारे दिल में तो उतर आए हैं डॉक्टर साहब।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग रेडियो की दुनिया में एक नया नाम बने, रेडियो को नई पहचान दिलाएं, हमारे गोंडा का नाम रोशन करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस वादे के साथ आपको भेजते हैं कि बहुत ही जल्द कुछ नई साहित्यिक संग्रह के साथ आप वापस आएंगे और हमारे लिसनर समाज जो श्रोतागण हैं, गोंडावासी हैं, वो आपके काव्य संग्रह से फिर से लुत्फानंदोज होंगे। सो थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद।
1: आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
7: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
8: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
7: और जेंट्स के लिए,
8: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
7: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
8: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
9: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
10: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
11: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
12: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
11: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
13: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
14: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
13: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
14: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
13: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
14: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
15: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
16: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज, 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें
17: 2883386।
18: पता है सर्कुलर रोड आवास विकास कॉलोनी गोंडा।
19: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
20: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे
1: पास? आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी। क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे
1: पास? आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी। क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास?
1: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी। क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे
1: पास? आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: ये वही

जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष डॉक्टर लव। कंपाउंडर लोग से थोड़ा सा विश्वास उठने लगा, हमने कहा ऐसा है कि एक दिन हम खुद शो करेंगे, लेकिन सच्चाई की बात यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जहाँ पर मैंने डॉक्टर की डिग्री ली थी वहाँ पर हमारे एक बहुत प्यारे मित्र हैं और उनके बेटे की शादी है, तो हम जा नहीं पाए और हमने अपने दोनों कंपाउंडर को भेज दिया। हमने कहा आज की शाम हम अपने श्रोताओं के नाम खुद करेंगे। जी हाँ, तो मैं उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। कोई भी दुख, तकलीफ, चिंता, परेशानी, कष्ट, मुसीबत, गिला, शिकवा, शिकायत, तमन्ना, इच्छा, ख्वाहिश, झटका, कुछ भी हो तो आपका नंबर है 63-93-31-64-29। जी हाँ, जो हृदय की जितनी भी बीमारियां हैं आपको, वो अगर आप ठीक करना चाहते हैं, गर्मी से रिलेटेड, बरसात से रिलेटेड, ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत अगर आपको है और आप चाहते हैं कि भाई उस समस्या का समाधान कर लिया जाए, तो फिर ये शनिवार की शाम उसी लिए होती है जहाँ पर होते हैं हम अपने कंपाउंडर के साथ। लेकिन आज आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि कंपाउंडर साहिबा की आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगा। आज हमारे और आपके दरमियान कोई नहीं होगा, आज आप होंगे और हम आपके सामने हम होंगे। तो जी हाँ, अब बिना देरी किए हुए आप अपने प्रश्नों को हमारे समक्ष रख सकते हैं और आपके प्रश्न जैसे भी होंगे उन सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। भाई ये बहुत आवश्यक है कि समस्या का समाधान हो जाए। तो भाई मेरे साथ हमको दिखाई पड़ रही हैं दीपांशी तिवारी जी, नेहा जी बहराइच से हैं मेरे साथ, अवधि नाइस भाई बहुत बहुत धन्यवाद, संजय जी पटना से हैं, तेज प्रसाद सोनी जी हैं, शुभ संध्या आपको, शुभ संध्या। और जी हाँ, गीत सुनाएंगे आपको 7:45 से बिल्कुल सुनाएंगे। और फिलहाल अब आपको ले चलते हैं भाई, जब तक आपका फ़ोन नहीं आता है तब तक आपको सुना देते हैं कुछ प्यारा सा गीत, ताकि आपके दिल में अगर किसी भी प्रकार का कोई वहम हो तो वहम दूर हो जाए। और वहम को दूर करने का सबसे अच्छा इलाज शनिवार को होता है। जी हाँ, बिल्कुल यही होता है और यहीं पर आपका इलाज हम करते हैं। फिलहाल ये संगीत सुनिए, गीत सुनिए और उसके पश्चात आपको कोई परेशानी है तो उसके निवारण के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं आप सभी के समक्ष।

शिमारू फिल्मी गाने के सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।

शिमारू के नए वीडियो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास?
1: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे
1: पास? आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
1: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे
1: पास? आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे
1: पास? आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास?
1: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे
1: पास? आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे
1: पास? आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे
1: पास? आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे
1: पास? आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे
1: पास? आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे
1: पास? आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे
1: पास? आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
0: ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्ली के हैं।
2: हेलो जी। हाँ भाई, किसी श्रोता का फ़ोन आया और फ़ोन आते आते आते आते आते फ़ोन कट गया। और चलते हैं भाई इस पैसे गीत की तरफ। जी हाँ, फिलहाल हमारे साथ अंबर जी उपस्थित हैं हमारे साथ। अब देखते हैं कौन है हमारे साथ शो पर बना हुआ है। हेलो, ये फ़ोन स्वतः डिस्कनेक्ट हो गया भाई। आप बिल्कुल अपने नंबर से फ़ोन कीजिए। और अंबर जी के लिए शुभ संध्या, डॉक्टर लव शुभ संध्या आपको भी भाई। और मैं सॉन्ग प्ले कर कुछ तो लोग कहेंगे क्या बात है भाई, कुछ तो लोग कहते ही रहते हैं। और क्या कहते रहते हैं ये समझ में ज़रा कम आता है कि लोगों ने कहा क्या। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। लेकिन ये भी बात है कि भाई वो जो लोग कहेंगे वो कहेंगे क्या। तो अगर ये पता चल जाए कि कुछ तो लोग कहेंगे, तो फिर उनका इलाज भी कह सकता है कि भाई आपने ये कहा और ये कहा तो क्यों कहा। तो क्यों कहा, इसका जवाब इस गीत में ही है। जी हाँ, आप सुन लीजिए और फिर उसके बाद आपसे बात भी करते हैं भाई। फ़ोन दूरभाष क्रमांक वही है 6393-9131-6429। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला विद डॉक्टर लव वाला। तो आपकी समस्याओं का हल करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं और देखते हैं कि भाई किसकी समस्या हमारे समक्ष अब आने वाली है।

0: जी बड़ी दूर से चलकर आपके लिए आए हैं और तोहफा मोहब्बत का लेकर आए हैं। भाई इस दुनिया में अगर प्यार नहीं होगा तो हमको लगता है कुछ नहीं होगा, इसलिए हमने कहा भाई प्यार पर PhD करना बनता है। अब देखते हैं भाई ये कौन है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो,
1: गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग
1: ऑन यू तो नहीं सर?
0: जी। हैं आप ऑन एयर हैं? ये ऑन एयर कहते ही फोन भाई काट दिया। ये ऑन एयर बिल्कुल, ये आप ऑन एयर हैं और आज ऑन एयर का प्रोग्राम चल रहा है। भाई आपको भी तमाम सारी दिक्कतें हो सकती हैं, हो सकता है हाँ, मतलब जवाब कैसे देना है ये सीखना है। हमारी जब शादी हो रही थी तो हमारी कुछ दिन के बाद हमारी पत्नी ने कहा, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी हिम्मत देखो कि तुम्हें देखे बिना तुमसे शादी कर ली। तो मेरी पत्नी ने मेरी ओर देखा और कहा कि हिम्मत हमारी देखिए कि आपको देखने के बाद भी मना नहीं किया। तो हम ये जानते हैं कि मतलब जो नारियां होती हैं वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा सशक्त होती हैं। रही अगर शादी होती है तो करीब 100-150 बाराती लेकर आते हैं दुल्हन को लेने के लिए, और उन 150 के बीच में वो दुल्हन जो है वो अकेली चली जाती है, कहती है मैं लक्ष्मी बाई हूँ, अकेली ही पर्याप्त हूँ। अब अगर आप सोचिए 150 लड़कियाँ किसी लड़के को लेने लेकर आएँ तो मुझे तो लगता है उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, शायद वो सोच भी नहीं पाएगा कि मतलब ये कैसे क्या कुछ किया जाए। लेकिन ये क्षमता तो भाई मानना पड़ेगा कि ये बहुत ही प्यारी क्षमता है, बहुत स्ट्रेंथ की बात है कि 150 लोग लेने आ रहे हैं और हम अकेले यहाँ से जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। तो इस समय शादी विवाह का मौसम भी है भाई, आप लोग जहाँ कहीं भी जा रहे होंगे खाइएगा और पन्नी लेकर जरूर जाइएगा, खाइए और थोड़ा सा अपने लिए पैक भी करा लीजिए, तो इससे ये होगा कि घर वाले भी आपको थोड़ा बहुत खा लिया करेंगे। शादी विवाह की यही अच्छी बात है कि इंसान खाता भी है थोड़ा सा पैक भी कर लेता है, तो जो बढ़िया आइटम होगा उसको पैक कर लाइएगा और कल ओपन माइक में आइएगा, हमको खिलाइएगा। हम तो रहेंगे नहीं लेकिन जो कोई भी रहेगा उनको कह दीजिएगा कि वो डॉक्टर लगवाएंगे शनिवार को, तो उनको दे दिया जाए। तो भाई शादियाँ इंजॉय करते रहिए, हमको लगता है व्यस्त भी बहुत हैं, IPL भी चल रहा है, लेकिन फिलहाल हमारी और आपकी यादी तो बड़ी प्यारी है। तो आइए इस यादी के नाम सुनते हैं ये पैसा गीत और आपसे मिलते हैं फिर इस संगीत में अंतराल के उस पार। लेकिन फिलहाल भाई वक्त तो चला है कि एक मोहब्बत के नाम पर, दोस्ती के नाम पर गीत होना चाहिए। तो अब गीत आपको सुनाते हैं दोस्ती के नाम पर।

0: Shima.
1: सब्सक्राइब करें और YouTube के ऐप पर बेल आइकन को क्लिक कीजिए।

सो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल और क्या है आज की शाम में? बहुत बहुत बहुत खास बात मुझे ज़रूर चैट बॉक्स में बताना, लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोलिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोलिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, महफिल आपकी, जज्बात आपके, गीत आपके और ये आरजे सिंपल हमेशा के लिए आपकी। सो एंजॉय करते हैं ये हमारी आज की पहली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम विजय पाल यादव जी ललहुआ लखीमपुर खीरी से, अनुष्का श्रावस्ती से, श्याम नाम की पगली मीन से सुमित्रा जी, सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, जयप्रकाश मिश्रा द ग्रेट सीन साहब, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, उदालक शर्मा मनकापुर से, सुरेश कुमार जी चौक से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से और निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, राजेश मीना आपका भी स्वागत है। स्टे ट्यून्ड और एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। सो दोस्तों, पहली फरमाइश हमारे पास में है विजय पाल यादव जी की ललहुआ लखीमपुर खीरी से, और इनको सुनना है गाना तेरे जैसा यार कहाँ और कहाँ ऐसा यार आना शायद है ना। सो एंजॉय करते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा याराना मूवी का, सिर्फ और सिर्फ विजय पाल जी की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

सो हमने इंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है, जानते हैं किसकी? अरे बताती हूँ किसकी। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना छम छम छम। सो बागी का ये गाना एंजॉय करते हैं सिर्फ और सिर्फ अनुष्का की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। धर्मेंद्र मोहन आवाज विकास गोंडा से और नागेश्वर धाकर आपका भी स्वागत है। स्टे ट्यून्ड। ओह एकदम बारिश वाली फीलिंग नो। मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है।

तुमने एंजॉय किया है ये गाना अनुष्का की फरमाइश पर जो की है श्रावस्ती से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम आवास विकास गोंडा से रवि और मुस्तफा जी। सो अगली फरमाइश हमारे पास में है सुमित्रा जी की और श्याम नाम की पगली को एंजॉय करना है गाना। पाँव में घुंघरू हाथों में कंगना, आई राधा देखो यशोदा के अंगना। तो राधा रानी का डिवोशनल गाना एंजॉय कर ही लेते हैं ना। स्टे ट्यून्ड, वाओ।

देखो पाँव में घुंघरू हाथों में कंगना, आई राधा देखो ये शोदा के अंगना। हमने एंजॉय किया है ये गाना सुमित्रा जी की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से। उनको सुनना है रंग मूवी का गाना इश्क ना मांगे। सो एंजॉय करते हैं सोनू निगम और जसपिंदर नरूला की आवाज में ये गाना सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र यादव की फरमाइश पर जो की है गौरा चौकी से। स्टे ट्यून्ड।

इश्क न मांगे जीत और इश्क न मांगे हार, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। इश्क को बयां करने वाला, इश्क को दर्द से बयां करने वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर जो की है गौरा चौकी से। चलिए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है जयप्रकाश मिश्रा की। उनको सुनना है गाना तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा जयप्रकाश मिश्रा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी। हमने एंजॉय किया है मेहंदी मूवी का ये गाना। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है द ग्रेट सेन साहब की। द ग्रेट सेन साहब को सुनना है गाना दिल कितना नादान है। तो कुमार सानू की आवाज में एंजॉय करते हैं 90s का सुपर डुपर हिट रोमांटिक सॉन्ग द ग्रेट सेन साहब जी। स्टे ट्यून्ड।

सो हमने एंजॉय किया है द ग्रेट सेन साहब की फरमाइश पर कुमार सानू की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। तो बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है

0: 9696774006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
6: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
7: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
8: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
9: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
8: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गणस्थल 89.6 FM, यह है गुना शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। और आज तो भाई सैटरडे है, शनिवार का दिन है, आज खास दिन होता है, गजलें हमारी, गीत आपके। तो गजलें हम सुनाते हैं और गीत आप सुनाते हैं, तो अब इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न रखते हैं आपकी सभा में। साथ तो मनीष शर्मा जी हैं भाई, उन्होंने कहा है भाई वेलकम है। जी हाँ, आपने भी स्टार्स बहुत दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नागेश्वर जी कहते हैं कि आप तो मैं कभी याद नहीं करते। अरे हम आपको भूलते ही नहीं साहब, याद क्या करेंगे, आप तो रोम रोम में बसे हुए हैं। जी हाँ भाई, रफ्तार जी हैं, गुड इवनिंग जी, क्या बात है, क्या नाम है रफ्तार। और गुड इवनिंग मनु सर, वेलकम। जी हाँ, आपका भी खैर मकदम है। और नेहा जी आदाब, कैसी हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगी, और आपकी आवाज़ में ज़रूर कुछ आज सुनने को मिलेगा, ऐसी

क्या बात है, आज मदर्स डे है और मतलब जो डीपी पर है वो यही है और बहुत अच्छी वही शानदार प्रस्तुति है। तो चलिए पहला प्रश्न आपकी सभा में रखते हैं, कुछ रोमांटिक सा अंदाज वाला।

0: जी हाँ, हमने भाई भी किया भी नहीं, वो फोन भी आ चुका है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो।
1: हाँ सर जी नमस्ते।
0: जी नमस्कार,
1: राकेश वर्मा बोल रहे हैं दुकान मंदिर के बगल से।
0: जी जी राकेश वर्मा जी नमस्कार। तो ये रेशमी जुल्फे आप गीत सुनाने वाले हैं?
1: बहुत दिन बाद आपसे बात हुआ सर जी।
0: जी जी राकेश जी, तो फिलहाल गीत है ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें, क्या आप सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: नहीं नहीं सर जी, आपका गाना बहुत पसंद है, तो हम फोन किया थे आपके पास।
0: जी जी
1: सुन रहे थे आपका प्रोग्राम।
0: जी
1: हाँ,
0: बहुत अच्छी बात है भाई।
1: तो आज तो सर जी सुनाइए, जो गाना आप बोले तो वही सुना दीजिए।
0: तो वही मतलब वो गाना जो है वो आज श्रोताओं को सुनाना रहता है, तो प्रश्न हम रखते हैं और उत्तर उधर से आता है।
1: हाँ सर जी।
0: जी ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें ये गाना आपको गाना हो तो गाइए, आपका स्वागत है।
1: सर जी आप सुना दीजिए, गाना गाएंगे।
0: जी जी, तो फिर भाई किसी दूसरे को मौका देते हैं ताकि वो गा ले।
1: हाँ ठीक है सर जी, नमस्ते सर जी।
0: जी नमस्कार आपको, प्रणाम। ये भाई तो अब देखते हैं कि इस गीत को कौन मुकम्मल करता है, ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। बहुत ही प्यारा सा गीत है ये, और गज़लें हमारी होंगी, गीत आपके होंगे। तो भाई अब गज़लों के साथ तो हम तैयार हैं, क्या आप गीत के साथ तैयार हैं? जी हाँ, देखते हैं कौन हमारे साथ।
2: हेलो।
0: हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार।
0: अरे गोरखपुर से दादा प्रणाम।
2: खुश रहिए सर।
0: कैसे हैं आप?
2: बस बढ़िया है।
0: तो मतलब आज रोमांटिक कुमार आ गए हैं।
2: धन्यवाद।
0: जी जी
2: नहीं, लेकिन आप बना दिए हमें।
0: नहीं नहीं आप हैं।
2: तो जो आपने फरमाइश किया मैं क्या गाना गा दूं क्या?
0: जी जी बिल्कुल।
2: ये रफी साहब का गाना है दो रास्ते का।
0: जी जी, और फिल्माया गया है राजेश खन्ना पर, और शायद
2: जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: और शायद वो ऐसा सीन हमको दिखाई पड़ता है कि पहली फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना दाढ़ी रख कर ये गाना गाते हैं।
2: ये भी आपकी बात नहीं है।
0: हाँ
2: बस हमारे पास दाढ़ी नहीं है।
0: हाँ कोई बात नहीं।
2: ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर

इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, ये रेशमी ज़ुल्फ़ें।

0: ये जो आंखें शर्म से झुक जाएंगी, ये जो आंखें शर्म से झुक जाएंगी, चुप रहना ये अफसाना कोई इनको न बतलाना, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, ये रेशम ज़ुल्फ़े ये शर्बतियाँ के, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। धन्यवाद सर।
1: क्या बात है दादा, एकदम बिल्कुल उसी अंदाज में गाया आपने, एकदम उसी गीत वाले अंदाज में।
0: ये आप लोगों का आशीर्वाद है,
1: प्रयास करता हूं। ये हम लोगों की शुभकामनाएं हैं और ईश्वर की दी हुई विशिष्ट कृपा है आपके ऊपर।
0: अरे आपका है, मेरा
1: जी जी। तो क्या वो भी है?
0: वो भी है, लेकिन वो खाना बना रही है सर।
1: जी जी जी, तो खाने
0: शुरू कीजिए। एक्चुअली मैंने इसलिए एक मंत्र गा के छोड़ दिया
1: जी,
0: बाकी लोग भी एकदम शरीक हो, ज्यादा से ज्यादा लोग।
1: जी जी जी बिल्कुल,
0: ओके थैंक यू
1: दादा, प्रणाम,
0: खुश रहिए।
1: जी हाँ भाई, तो गीत हो चुकी है, चलिए आपको सुना देते हैं एक प्यारी सी गजल, और गजल के बाद फिर आते हैं और आपसे सुनते हैं गीत। तो सुनते रहिए और रेडियो गन स्लेट 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

जी हाँ भाई, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और रफ्ताज ने लिखा है मस्त गाना, बहुत ही जी बेहतरीन शुरुआत हमारे अनिल बनर्जी साहब ने की है। क्या बात है, बहुत सारे दिल, बहुत सारे इमोजीज। और तेरना शुक्ला जी चौरस पर आपको, और शुभ संध्या आपको भी सर, और बेहतरीन शुरुआत अनिल शास्त्री जी, सभी लोगों को थैंक्स। जी हाँ, आनंद आ गया, शानदार गजल। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, और जी ऐ मेरे दिले नादा तू गम से न घबराना। इस गजल को सबसे अच्छी गाने वाली गायिका सविता जी मेरे साथ उपस्थित हैं, आपको चरण स्पर्श है, प्रणाम है। और आइए भाई, अब चलते हैं एक और गीत की तरफ। गजल सुन ली हमने,

जी हाँ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत है और बहुत ही प्यारा गीत है। देखते हैं भाई इस गीत को कौन करता है मुकम्मल। जी हाँ, हमारे साथ कौन है देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, हेलो?

0: अच्छा अच्छा ये कुछ जी प्रॉब्लम तो हो चुकी है भाई। और जी शुभ संध्या जी, कैसे हैं आप? जी हाँ, और भाई फ़ोन आया था और डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार पुनः मिला लें आप, अगर आप मिला रहे हो तो। जी हाँ, तो आनंद आ गया, शानदार गज़ल, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, बहुत ही प्यारी गज़ल ये है भी। और देखते हैं कौन हमारे साथ।
1: हेलो
0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार।
0: अरे दर्द कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है भैया। ये फोन कैसे कट गया था?
0: वो कुछ नेटवर्क का इशू था।
1: अच्छा, वही हमने कहा जब नंबर गया तो कट गया, हमने कहा तो गया मामला।
0: वो नेटवर्क का कोई इशू था, इसलिए बीच हवा हुआ चली है ना, तो कहीं कई जगह टीवी भी ऐसा हो रहा है कि सिग्नल नहीं मिल पा रहा है।
1: अच्छा अच्छा,
0: और कैसे हैं आप?
1: हाँ ठीक है भैया। सभी निश्चर भाइयों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, आशीर्वाद है
0: जी।
1: और सभी स्टाफ को और मनु भाई आपको ढेर सारा प्यार
0: जी। चल स्पर्श आपको, आप आशीर्वाद दीजिए।
1: तो क्वेश्चन है चले जा चले जा
0: जी।
1: चले जा चले जा, जहाँ प्यार मिले जहाँ प्यार मिले, चले जा जहाँ प्यार

इस गम की बांसुरी में कोई तो गीत होगा। चले जा चले जा चले जा, जहाँ प्यार मिले जहाँ प्यार मिले। चलना ही जिन

0: तो तेरी है जिंदगी के राही, किस बात की है तेरी। चल जा चल जा चल जा प्यार मिले जहाँ प्यार मिले। थैंक यू।
1: क्या बात है भाई, बहुत दिन के बाद ये गीत सुनाया आपने और इस प्रश्न को भी रखा, चले जा चले जा जहाँ प्यार मिले। बहुत बहुत ही शानदार गीत है ये।
0: थैंक यू भाई।
1: अच्छा प्रणाम जी। हाँ भाई, तो ये दर्द कुमार जी की दर्द में डूबी हुई आवाज, चले जा चले जा चले जा जहाँ प्यार मिले। अब आपको सुनाते हैं गजल और गजल के बाद फिर होगी प्रश्नों की बौछार, तो तैयार रहिए भाई। आप सभी श्रोता से अनुरोध है कि गीत के लिए तैयार रहिए। और गीत है, गजल सुनेंगे आपसे, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आज अलग जा गले दिल जानी। जी हाँ, देखते हैं कि हमारे साथ कोई और भी जुड़ चुका है और देखते हैं कौन है।
2: दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड।
1: हेलो
3: हेलो
1: हेलो।
3: हाँ नमस्कार सर।
1: जी जी जी प्रणाम।
3: मैं सविता बोल रही हूँ।
1: जी जी चरस परस प्रणाम।
3: खुश रहिए। और कैसे हैं आप?
1: मैं आशीर्वाद आपका।
3: अच्छा,
1: आप कैसी हैं?
3: मैं भी ठीक हूँ। अभी थोड़ा खाना लेने में व्यस्त थी।
1: नहीं नहीं नहीं, वो बहुत जरूरी काम है। मतलब
3: एक गजल तैयार की तो मैं मिस्टर बोलते हैं तुम कहाँ से गा रही हो, इसको तो कभी सुने ही नहीं है।
1: अच्छा ये बात है, मतलब
3: मैं बोले आप सुने कि नहीं। ये एक गजल थी, हजार बातें कहे जमाना।
1: हाँ हजार बातें
3: कहे। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं तैयार करके अलग फिर गाऊंगी, आज दूसरा सुना देती हूँ, ठीक है। एक
1: हजार बातें कहे जमाना।
3: हेलो
1: जी।
3: हाँ ठीक है, ये वाला गाना सुना रही हूँ, आज सनम मधुर
1: चांदनी में हम, क्या बात है।
3: ठीक है, तो शुरू करें?
1: जी जी निसंदेह।
3: आजा सनम मधु चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बाहर, लगेगा आसमान।

मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। आजा सनम मगर कामिनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी जाएगी बहार। छूने लगेगा आसमान, छूने लगेगा आसमान।

जिंदगी है एक सफर, कौन जाने कल किधर। चांद की बहकी नजर दे रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर, कौन जाने कल किधर। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाए ये बहार। लगेगा सिमान कहता है दिल और मचलता है दिल, मुरता जन चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ।

पर ले आऊं मैं, चांद का डोला सजे धूम तारों में नचे, धूम के दुनिया सहे प्यार में दो जन ले। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया सहे प्यार में दो जन ले। खाजा सनम मधु चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में दिया जाए बहार, झूमने लगे।

0: तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। आ जा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। धन्यवाद सर।
1: क्या बात है भाई, झूमने लगेगा आसमान, वास्तव में आसमान झूमने लगा। अब आपसे एक प्रश्न करना है कि हजार बातें कहे जमाना, मेरी वफा पे यकीन रखना, इस गजल की बात आप कर रही थी या किसी और गजल की?
0: नहीं, इसी गजल की बात कर रही थी।
1: फिल्म का नाम मुगले आजम?
0: नहीं, ये है फिल्म, क्या घटना,
1: हाँ जो है मधुबाला ही है शायद इसमें।
0: नहीं, वो ऐसे ही रह रहे हैं जिसे मैं पहचानती ही नहीं हूँ।
1: अच्छा।
0: और मेरे मिस्टर इतना मेरे को चिढ़ा दिए शाम को कि मैं थोड़ा इसमें कॉन्फिडेंस नहीं हो पाई, लेकिन है बहुत अच्छा, बहुत प्यारा गजल।
1: चलिए तो हम आपको ये गजल सुनाते हैं आपको।
0: जी,
1: आप ये गजल भी सुन लीजिए और बता दीजिए कि आपने कितनी अच्छी गजल चुनी है।
0: यहाँ तो मेरी बहुत खिल्ली उड़ाते हैं मेरे हस्बैंड।
1: जी बिल्कुल, हम चलिए सुनाते हैं उनको भी। हजार बातें कहे जमाना, मेरी वफा पे यकीन रखना, आवाज शायद लता मंगेशकर जी की है।
0: आज मैं उसी को मैंने गाने वाली थी।
1: हाँ
0: तो ठीक है, आप सुना दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा।
1: जी एक बार आप सुन लीजिए ताकि बुधवार को आप यही गजल गा सकें।
0: ठीक,
1: अच्छा प्रणाम,
0: खुश रहिए।

0: जी हाँ, ऐ मेरे दिले नादा तू गम से न घबराना। और वास्तव में घबराना भी कैसा, अंग्रेजी कहती है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर पतझड़ आया है तो समझिए कि बसंत आने वाला है। और फिलहाल मेरे पास भाई कोई काल भी आ चुकी है। और नेहा जी भाई ऐसे कहते हैं सर तो शिल्पी जी की बहुत अच्छा गाती हैं जी। और पहले देख लेते हैं कौन है मेरे साथ। हेलो,
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार,
1: मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ सर।
0: अरे दादा प्रणाम,
1: कैसे हैं?
0: जी जी आशीर्वाद।
1: बस मैंने क्या जो आपको बोल रहा था ना कि जो गाना मुझे याद बता रहे थे कुछ वो जो याद आए
0: जी,
1: तो वो तो मैंने ही गाया, दूसरा गा दिया आपको
0: जी।
1: तो मैं वो गाना अगर दो रास्ते की पिक्चर के गाने
0: हैं जी,
1: छुप गए सारे नजारे क्या बात,
0: क्या बात हो गई। जब तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
1: या, या, या, या।
0: जी
1: बहुत बढ़िया, आपने पतला है
0: जी। मैं पूछ रहे तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है?
1: अब अलंकार तो मेरे को नहीं मालूम, तो आप ही बता पाएंगे, आप तो शिक्षक हैं।
0: अरे शिक्षक नहीं, हम तो लर्नर है, सीख रहे हैं अभी। आप लोगों से बहुत कुछ सीखना भी बाकी है जी। हम ऐसा जुड़ गई है, प्रीति जी भी भाई बहुत दिन के बाद जुड़ी है बहराइच से।
1: नहीं आज मेरा पता नहीं क्यों मूड किया, लेकिन एक्चुअली एक डुएट है, फिर भी मैंने कहा चलिए अकेले ही मैं गा देता हूँ।
0: जी जी बिल्कुल, आप अकेले सो के बराबर है।
1: अरे नहीं ऐसा नहीं सर। तो क्या मैं
0: जी, जी हाँ सुनते हैं
1: तो गौर
0: जी।
1: छुप गए सारे नजारे हो क्या बात हो गई, छुप गए सारे नजारे हो क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, छुप गए सारे नजारे हो क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, कल नहीं आना मुझे न बुलाना कि मारेगा ताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना कि मारेगा ताना जमाना, तेरे होठों पे ये रात का बहाना था, और तुझको तो आज नहीं आना था, तू चली आई दुहाई हो क्या बात हो गई, तू चली आई।

0: गई मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई चुप गए सारे नजारे हो क्या बात हो गई चुप गए सारे नजारे हो क्या बात हो गई तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई धन्यवाद सर।
1: क्या बात है दादा, उत्तर जो है वो प्रीति शुक्ला जी ने दे दिया है। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, इसमें अतिशयोक्त अलंकार है।
0: अच्छा अच्छा धन्यवाद।
1: क्या बात है भाई, बहुत बहुत दादा और बहुत और बहुत शानदार गाया आपने।
0: प्रयास किया
1: सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
0: धन्यवाद
1: जी। प्रणाम जी। हमारे साथ भाई धर्मेंद्र मोहन जी भी हैं, बड़े प्यारे श्रोता हमारे, और उन्होंने लिखा, बड़े भैया जी नमस्कार, आप कैसे हैं, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। बिल्कुल आप चले आइए रेडियो यहाँ पर, दुखनाथ मंदिर से कितनी दूरी पर है, आप 4 कदम की दूरी पर है, और आइए आपका स्वागत करते हैं, आपको एक प्याली चाय पिलाते हैं। बिल्कुल हमको भी आपकी याद आ रही है। हमारे साथ प्रबल मिश्रा जी हैं, भाई क्या बात है, गुड इवनिंग सर जी, शुभ संध्या। प्रबल जी कैसे हैं आप, उम्मीद अच्छे होंगे। सब जिंद हैं इस मत खाने के हर प्याले में, क्या बात है भाई, वाह, श्री तेजनाथ जी का ये संदेश। और जी बिल्कुल बिल्कुल अशोक अलंकार है भाई। दीपांशु जी उपस्थित हैं, सर कैसे हो आप, गुड इवनिंग जी। मैं अच्छा हूँ और चाहता हूँ कुछ आप सुना दीजिए तो और भी अच्छे हो जाएँ। तो गज़ल गीत आपने सुन लिया है, तो आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल और मिलते हैं इस गज़ल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: जी हाँ, अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। अन्ना जारविस ने शुरुआत की थी, अमेरिका में सबसे पहली बार मदर्स डे मनाया गया था और ये मदर्स डे हर वर्ष मई माह के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। जी हाँ, तो कल मदर्स डे है, कल भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व की सभी माताओं का दिवस है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप बच्चे हैं और आपके घर में आपकी माता हैं तो छोटा सा एक तोहफा उनको आप दे सकते हैं, उनको स्पेशल फील करा सकते हैं। तो आप सभी को मातृ दिवस की, मदर्स डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और आसमान वाले ने चाहा तो कल आपसे मिलेंगे ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में इसी थीम के साथ। कल मदर्स डे पर करेंगे बातचीत, जी हाँ, और उम्मीद करेंगे कि आपका भी साथ मिलेगा। जी तो अब शुभरात्रि, शब्बा खैर, और आसमान वाले ने चाहा तो कल मिलते हैं आपसे ठीक 1 बजे ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।
1: एक ऐसी ही हवेली की है, एक पुरानी वीरान हवेली जहां 20 साल पहले मोहब्बत को जिंदा जला दिया गया था। कहते हैं आज भी उस हवेली की टूटी खिड़कियों से किसी की सिसकियां सुनाई देती हैं और कभी कभी पायल की आवाज भी छन छन छन छन, जैसे कोई किसी का इंतजार कर रहा है। सूरज एक धार्मिक शहर काशीपुर में रहता था। सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज और शाम को मस्जिद से उठती आजान उस शहर की पहचान थी। सूरज का जीवन बाहर से बिल्कुल सामान्य था, एक साधारण नौकरी, कुछ पुराने दोस्त और बेहद शांत दिनचर्या। मगर उसके अंदर हमेशा एक अजीब सा खालीपन रहता था। उसकी जिंदगी के कई साल ऐसे थे जिसे याद ही नहीं थे। डॉक्टरों ने कहा था 20 साल पहले उसे एक गहरा मानसिक आघात लगा था और उसी सदमे में उसकी याददाश्त के कुछ हिस्से हमेशा के लिए खो गए। सूरज खुद भी नहीं जानता था कि उन खोए सालों में आखिर हुआ क्या था, लेकिन एक चीज कभी नहीं रुकी, उसके सपने। हर रात वही सपना, एक पुरानी हवेली, टूटी दीवारें, जंग लगा दरवाजा और हवा में जले हुए धुंध की गंध। उस धुंध के बीच एक लड़की खड़ी होती, चेहरा जला हुआ, आंखों में दर्द, पैरों में पायल, और वो धीरे से कहती, सूरज। सूरज हर बार पसीने में भीगा हुआ उठ जाता। वो समझ नहीं पाता कि ये लड़की कौन है और ये हवेली कहाँ है, मगर सपना हर रात और साफ होता गया। कभी कभी उस लड़की की आवाज और भी करीब से सुनाई देती, तुम वापस क्यों नहीं आए सूरज, कहाँ हो तुम। सूरज के सीने में एक चुभन होती, जैसे कोई गरम सलाख उसके दिल के पार हो रही हो। वो दर्द असहनीय था, जैसे उसकी रूह का कोई हिस्सा आज भी उस आग में सुलग रहा हो। सालों तक सूरज ने इस सपने को नजरअंदाज किया, मगर एक दिन

यही नाम तो था उसका। सूरज को धीरे धीरे याद आया कि 20 साल पहले उसकी जिंदगी में एक लड़की थी, जोया। वो अलग धर्म से थी। सूरज मंदिर जाने वाला लड़का था और जोया नमाज पढ़ने वाली लड़की, मगर दिल को धर्म की सीमाएं नहीं रोक पाई। दोनों की मुलाकात पहले दोस्ती में बदली और फिर धीरे धीरे वो दोस्ती मोहब्बत बन गई। वे दोनों अक्सर शहर के पुराने पुल पर मिलते, घंटों बातें करते और सपने देखते कि एक दिन वे सबकी परवाह किए बिना साथ रहेंगे। मगर समाज को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। दोनों परिवारों ने सख्त विरोध किया। लोगों ने कहा, यह रिश्ता हमारे धर्म के खिलाफ है। नफरत की दीवारें खड़ी कर दी गई। फिर एक दिन सब कुछ अचानक खत्म हो गया। एक रात जोया को धोखे से नूराबाद के उस हवेली में बुलाया गया और वहां उसे जिंदा जला दिया गया। सूरज को याद आने लगा कि कैसे उसने जोया की चीखें सुनी थी, कैसे उसके हाथ उस बंद दरवाजे को पीटते पीटते लहू लुहान हो गए थे। सूरज, बचाओ मुझे, आग मुझे खा रही है। वो आवाज आज भी उसके कानों में तेजाब की तरह उतर रही थी। जब सूरज को खबर मिली और वो वहां पहुंचा, तब तक आग सब कुछ निकल चुकी थी। चारों ओर धुआं, चीखें और राख थी। उस भयानक दृश्य ने सूरज की याददाश्त छीन ली। वो बेहोश होकर गिर पड़ा और जब होश आया, उसे कुछ भी नहीं याद था। लेकिन अब 20 साल बाद वही हवेली उसे फिर से बुला रही थी। उस रात सूरज नूराबाद पहुंचा। डरिएगा मत, जाइएगा मत, प्यारे श्रोतागण, मेरा इंतजार करिएगा। जल्द ही मिलूंगी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन गोंडा शहर की धड़कन।
1: रात का सन्नाटा, घड़ी की टिक टिक और आपकी तेज होती हुई सांसें। स्वागत है आप सभी का 89.6 FM पर। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं खौफ की दस्तक। आज रात का आसमान बेरहम है दोस्तों, चांद बादलों के पीछे छुप गया है, जैसे कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन है। हवाओं में आज नमी नहीं है, किसी पुरानी रूह की सिसकियां घुली हुई हैं। क्या आप तैयार हैं उस हकीकत का सामना करने के लिए जिसे दुनिया अंधेरा कहती है? चलिए मेरे साथ उस हवेली की ओर जहां मौत की खामोशी आज भी चिल्लाती है, जहां मोहब्बत और मौत एक ही बिस्तर पर सोते हैं। सूरज ने जैसे ही उस पुरानी हवेली का जंग लगा दरवाजा धकेला, एक ऐसी ठंडी लहर उसके बदन को चीरती हुई निगल गई, जैसे हजारों बर्फीली सुइयां एक साथ चुभी हो। चारों ओर मकड़ी के जाले नहीं थे, वो यादों के फंदे थे। धूल से सनी हुई उन तस्वीरों में आंखों से उसे ही देख रही थी। सूरज खुद से बुदबुदाया, ये जगह खाली नहीं है, यहाँ की दीवारें सांस ले रही हैं। तभी पायल की हल्की सी झंकार सुनाई दी, छन छन छन छन। सूरज के पैर जम गए, उसे लगा जैसे फर्श की लकड़ी नहीं बल्कि किसी की सूखी हड्डियां उसके जूते के नीचे चरमरा रही है। सूरज ने बोला, जोया जोया क्या तुम यहीं हो? देखो मैं वापस आ गया, उस वादे को निभाने जो बरसों पहले आग की लपटों में जल रहा था। क्या तुम मुझे सुन सकती हो, या ये मेरा वहम है जो तुम्हारी खुशबू को आज भी इस खंडहर में ढूंढ रहा है? मुझे सजा दो जोया, मुझे वो दर्द दो जो तुमने उस रात सहा था। मैं इस जिंदा लाश की तरह जीते जीते थक चुका हूँ। प्यारे श्रोतागण, डरिएगा मत, जाइएगा मत, मेरा इंतजार करिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
1: सूरज ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई, पर रोशनी उस फटे हुए पर्दे पर जाकर ठिटक गई जो बिना हवा के हिल रहा था। तभी कमरे के कोने से एक ऐसी आवाज आई जो इंसान की नहीं हो सकती थी, ठंडी, फटी हुई और दर्द से लदी हुई। सूरज की टॉर्च की रोशनी में दीवार पे चिपकी हुई काली राख किसी इंसानी साए की तरह हिलने लगी। जोया की रूह ने बोला एक अजीब गूंज के साथ, तुमने मुझे ढूंढ लिया सूरज। 20 साल मैंने इस अंधेरे को पिया है, मेरी खाल जलकर राख हो गई, मेरी आंखें धुंध में खो गई, पर तुम्हारी याद वो आज भी मेरे सीने में दहक रही है। क्या तुम सह पाओगे उस चेहरे को जिसे तुमने आखिरी बार खूबसूरती की मूरत कहा था? देखो देखो, क्या मुझे अब तुम देख सकोगे, या मेरी जली हुई खाल को देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी? सूरज ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, बस दीवारों पर उसका साया बड़ा होता जा रहा था। और तभी उसके कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ, वो हाथ जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, जिसमें जली हुई मांस की गंध आ रही थी। सूरज को महसूस हुआ कि उसकी शर्ट की जगह काली पड़ रही है जहां जोया ने उसे छुआ था। दर्द ऐसा था जैसे कोई जलता हुआ कोयला उसके कंधे पर रख दिया गया हो। जाइएगा मत, थोड़ा सा इंतजार करिएगा, जल्दी मिलेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: जोया की रूह अब उसके ठीक सामने थी। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खून की तरह लाल, पर उनमें आंसू बह रहे थे। सूरज घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा, जोया मुझे मार डालो, मुझे खत्म कर दो। मैं उस रात तुम्हें उस आग से नहीं निकाल पाया, पर मैं अपनी रूह को रोज उसी आग में जलते हुए देखता हूँ। ये जुदाई की मौत से बदतर है जोया। देखो मेरे हाथ, ये आज भी उसी आग की जलन को महसूस कर रहे हैं। मुझे अपने साथ ले चलो इस दुनिया की नफरत से दूर, जहाँ सिर्फ हम और हमारी ये अधूरी कहानी पूरी हो सके। जोया ने चीखते हुए कहा, मोहब्बत? क्या खाक मोहब्बत? जब मैं चिल्ला रही थी, जब आग मेरी हड्डियों को चोट कर रही थी, तब तुम कहाँ थे सूरज? लोग कहते हैं मौत सब मिटा देती है, पर देखो मेरी नफरत ने मौत को भी हरा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें पल पल मारूंगी, ताकि तुम जान सको कि तड़प के मरना क्या होता है। क्या तुम तैयार हो मेरे साथ इस राख की सेज पर सोने के लिए? यहाँ सिर्फ दर्द है सूरज, सिर्फ दर्द, अंतहीन पीड़ा। हवेली का कोना कोना थरथराने लगा, खिड़कियों के कांच टूटने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत सब कुछ तबाह करना चाहती हो। बाहर आसमानी बिजली कड़की और हवेली की छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। जोया ने सूरज का गला अपने कांपते हाथों से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सूरज की खाल में धस रही थी और उंगली के निशान से धुआं निकल रहा था। जोया ने कहा, अगर अब हाथ छोड़ा तो कयामत के दिन भी हम एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाएंगे। बोलो, क्या तुम मेरी इस जली हुई रूह को गले लगाओगे? क्या तुम इस अंतहीन दर्द का हिस्सा बनोगे? सूरज ने बेहद दर्द और प्यार भरी आवाज में कहा, मैं मरने से नहीं डरता जोया, मैं तो बस तुम्हारे बिना जीने से डरता था। लो, मैं आ गया हूँ हमेशा हमेशा के लिए। हमारी मोहब्बत इस आग से बड़ी है। सूरज ने जोया के उस डरावने साए को कस कर गले लगा लिया। हवेली की दरारें खुद ब खुद बंद होने लगी। एक जोरदार धमाका हुआ और सन्नाटा पसर गया। जब सुबह की पहली फीकी किरण उस मलबे पे पड़ी, तो वहाँ कुछ नहीं था, न शोर न रूह, बस धूल में दबी एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें जोया और सूरज एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुरा रहे थे। पर गौर से देखने पे पता चला, तस्वीर में उनके चेहरों पर आज भी ताजा आंसू के निशान थे और तस्वीर के किनारों से आज भी हल्का सा धुआं उठ रहा था। तो दोस्तों, क्या ये लव स्टोरी थी या एक डरावना अंत? शायद दोनों ही। याद रखना, अगर कभी रात के अकेले में आपको जली हुई लकड़ी की गंध आए या पायल की आवाज सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुछ कहानियाँ खत्म होने के लिए नहीं, हमें डराने के लिए लिखी जाती हैं। मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे, जल्द ही फिर मुलाकात होगी। खौफ तब तक है जब तक दरवाजा बंद है और दस्तक बाहर है। शब्बा खैर।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: तेरा नाम लूं तो सुकून आ जाता है, जैसे भीड़ में कोई अपना मिल जाता है। सोचूं जब भी तेरे साथ की बातें, दिल फिर से धड़कना सीख जाता है। तू साथ हो तो मुश्किल भी आसान लगे, तेरे बिना हर खुशी भी सुनसान लगे। ये दिल सिर्फ तुझसे जुड़ना चाहता है, बाकी दुनिया तो सब मेहमान लगे।
2: तेरी यादों का मौसम दिल पे छाया है, हर ख्वाब में बस तेरा ही साया है। कोई पूछे प्यार क्या होता है मुझसे, मैं कहूँ जो तूने मुझ में जगाया है। न जाने कैसा रिश्ता है तुझसे, न जाने कैसा रिश्ता है तुझसे। बात न हो तो दिल नहीं लगता जरा, तू सामने हो तो वक्त रुक जाता है, और दूर हो तो हर पल लगे जैसे सजा।
1: जी हाँ दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत में आज हम लेकर के आए हैं वैलेंटाइन स्पेशल, यानी प्यार के नगमों को एक साथ लेकर के। आपकी आज ये गुमसुम एंड आपकी आज ये ख्वाहिश। तो आज जो सफर शुरू करने जा रही हैं, उसमें कई मुसीबतें, जी हाँ, इसलिए आ रही हैं क्योंकि प्यार एक ऐसी सीढ़ी है, एक ऐसी कड़ी है, जिसमें मुसीबतें ना हो तो प्यार को पाना आसान कहाँ लगता है। सबसे पहले हम उस सिंगर की बात करेंगे जो कि अपने आप में एक कहते हैं ना कि पूर्ण विराम हम नहीं कह सकते हैं, पूर्ण है। क्यों आरजे गुमसुम?
2: बिल्कुल आरजे ख्वाहिश। वो जो अपने में पूरी है, वो जिनकी आवाज जो भी सुनता है वो उनकी आवाज का मुरीद हो जाता है,
1: और आवाज के मुरीद होने के साथ साथ में उनके व्यक्तित्व, उनके चलन, उनकी बोली, उनका व्यवहार, शायद ये प्यार में कम नहीं होता है, ये प्यार को और पूर्ण बनाता है। बहुत सारे नगमों के साथ में जब उन्होंने गीतों को सुना, गाया और उनको जिया, जी हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, प्यार की बेमिसाल मूरत हमारी लता जी। उनके नगमों में से एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, प्यार हुआ इकरार हुआ।
2: इकरार से याद आया, बहुत ही बेहतरीन गाना है प्यार हुआ इकरार हुआ। कहते हैं ना कि प्यार तो यूं ही हो जाता है, लेकिन जब इकरार करना होता है तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होती है। हम सोचते हैं ना, अच्छा चलो कह देते हैं, फिर रुक जाते हैं। सामने वाले को बुरा लग गया तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, फिर रुक जाते हैं। लेकिन ये ऐसा एहसास है कि कहा भी नहीं जाता और रहा भी नहीं जाता।
1: तो भाई ये तो मुझे कुछ इस तरीके से लग रहा है कि अगर हमने कुछ मुंह में खाया हुआ है तो ना निगला जाए ना उगला जाए, कुछ ऐसा ही हो गया। पर मैं बताऊं कि वैलेंटाइन वीक जो ऐसा होता है जिसमें प्यार का इजहार करने से किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, तो आइए इस प्यार के इजहार को हम करते हैं और सुनते इस प्यारे से नगमे को।

0: अगले सिंगर जिनकी आवाज में जादू तो था ही, शायद हम उनको ये भी कह सकते हैं कि उनकी आवाज इतनी वर्सटाइल थी कि हर कोई आवाज पहचान जाता था और हर एक हीरो की आवाज में फिट होने वाले हमारे मोहम्मद रफी जी। दिलीप कुमार का दर्द हो या फिर शम्मी कपूर की मस्ती, देवानंद का रोमांस हो, सब पर उनकी आवाज फिट हो जाती थी। लेकिन कहा जाता है मोहम्मद रफी की आवाज नगमे और उनके गीतों की जो एक प्यारी सी एक मिसाल हुआ करती थी, वो लव सॉन्ग्स पर ज्यादा फिट हुआ करती थी।
1: बिल्कुल, मोहम्मद रफी जिनकी आवाज को कहा ही जाता है कि उनकी आवाज में एक रूहानियत थी। रूहानियत ऐसी कि जो भी उनके नगमे सुनता था वो खो जाया करता था। कोई भी गाना हो, कोई भी शैली हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दर्द हो, खुशी हो या फिर बहारों की खुशबू, हर किसी को, हर किसी एहसास को अपनी आवाज में बहुत ही बेहतरी से कैसे निखारा जाता है, ये मोहम्मद रफी जी बहुत ही अच्छे से जानते थे।
0: बिल्कुल, और मोहम्मद रफी जी ने तो बहुत सारे ऐसे गानों को अपनी एक मिसाल दे दी, जैसे रोमांटिक हो, फिर दर्द भरे हो, कव्वाली हो, भजन हो, देशभक्ति, कॉमेडी सॉन्ग्स, ऐसा कोई भी अंदाज हो, जिन्होंने इन सारे सॉन्ग्स को छोड़ा ही नहीं था। बेहद विनम्र इंसान, उनकी शोहरत के बावजूद बेहद सादगी भरी जिंदगी जीते थे। इंडस्ट्री में जो लोग उन्हें सबसे अच्छे और प्यारे व्यवहार के लिए जानते थे, इंडस्ट्री में लोग उन्हें उनके अच्छे व्यवहार के लिए भी याद करते थे और वो जाने जाते थे। दिल ढल गया, ये दुनिया, ये महफिल, तूने ये क्या कर दिया, सीधे दिल पर उतर जाने वाले सॉन्ग्स थे। लेकिन मैं बात करना चाहूंगी आज गुमसुम से कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत, क्या आपने ये गाना सुना है?
1: जी आरजे ख्वाहिश, बिल्कुल सुना है। और इतना प्यारा गाना, इतना प्यारा गीत, जिसकी कहे है ना कि कोई सार ही नहीं, कोई मिसाल ही नहीं।
0: ओके, तो चलिए अब हम लिसनर्स को सुना देते हैं इस प्यारे से नगमे को, जो कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की

0: अगले जिस सिंगर की हम बात करने वाले हैं, उनकी आवाज में मस्ती है, कुछ नयापन है, पर इस नएपन के साथ साथ अपनी आवाज में सभी गीतों को बड़ी ही खूबसूरती से संवारते हैं वो। और उनका गाना आते जाते खूबसूरत, इन आवारा सड़कों पर, और ऐसे ही बहुत सारे गीत जो कि आपको याद दिलाते हैं मस्ती, याद दिलाते हैं खुशी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार जी। अपनी गानों के लिए तो वो जाने ही जाते हैं, पर साथ ही साथ में जाने जाते हैं अपने व्यक्तित्व के लिए। उनका व्यक्तित्व जो बहुत ही सादा और सौम्य है। कहते हैं कि हम जितने बड़े पद पर होते हैं उतना ही हमारा व्यक्तित्व सौम्य होता है। इसकी बहुत ही बेहतरीन मिसाल है किशोर कुमार जी।
1: मल्टी टैलेंटेड जीनियस, ये भी नाम उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में मिला। किशोर कुमार गायक ही नहीं बल्कि एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। इतनी सारी प्रतिभाएं एक ही इंसान में कब मिलती हैं, जब उनके अंदर प्यार कूट कूट के भरा होता है। दूसरों के प्रति सम्मान, एक प्यार भरा होने के कारण ये सारी खूबियाँ होती हैं। आवाज जो दिल से निकली थी, उनकी आवाज में एक नेचुरल खुशी और शरारत हुआ करती थी। रोमांटिक गाने हो या फिर मस्ती भरे, वो उन गानों को गाते नहीं थे, वो उन गानों को जीते थे। मस्ती के बादशाह, एक चतुर नार, पान खाए सैया हमार, जैसे ये मस्ती वाले गाने जब उन्होंने रिकॉर्ड किए थे, जब उन्होंने गाए थे, तो सारे लोगों ने उनके लिए बस एक ही कहा था, अरे वाह, अब तो बात किशोर कुमार की है। तो आइए उनकी ही आवाज में एक प्यार भरे नगमों के साथ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं, जो कि है हमें तुमसे प्यार।

0: अरे ये कौन सा गीत है और किसके लिए गाया जा रहा है?
1: मैं गा तो नहीं रही थी, मैं गुनगुना रही थी और सिर्फ मैं सोच रही थी आंखें बंद करके कि काश ये गाना भी मैं किसी के लिए गाऊं। और इतना प्यारा गीत है ना, जो कि उनकी आवाज, और आप सभी को पता है कि जिसने इस गीत को गाया है वो हम सबकी प्यारी आशा भोसले जी। बिल्कुल, आशा भोसले के जो गीत होते हैं वो हमेशा से एक ना रोमांटिक सॉन्ग्स को लेकर के क्लासिकल, पॉप, गजल, और वो हर तरह के गानों को जीती हैं, हर गानों को गाती हैं। उनकी आवाज में वो हर मूड भी ढलसा जाता है, चाहे वो ओपी नैयर साहब जी हो, चाहे आजी बर्मन साहब जी के साथ हो। वो हर एक जादू को अपने साथ में इस तरीके से पिरो लेती हैं कि हर युग में उनके गानों को एक यादगार के रूप में ले ही लिया जाता है। मस्ती और अदा की पहचान, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, जिसके लिए मैं अभी कहने जा रही हूँ, पिया अब तो तू आजा। इतने बेहतरीन सारे सॉन्ग, और जो कि रोमांटिक सॉन्ग्स को दिया है वो ही हमारी आशा भोसले जी हैं।
0: बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने गीत सुना दीवाना हुआ बादल, तो देखा प्यार में क्या कुछ नहीं हो सकता। ये कल्पना देखिए प्यार के लिए कि बादल भी दीवाना हो सकता है, यानी वो भी दीवानगी कर सकता है, प्यार में पड़ सकता है। और दूसरा बहुत ही बेहतरीन गाना जो कि है पिया तू अब तो आजा, तो बिल्कुल इन दोनों ही गीतों में प्यार है बेशुमार। तो आज जैसा कि हम प्यार को ही बता रहे हैं, उसी को आपके सामने रख रहे हैं, तो आइए सुनते हैं प्यार भरे ये बहुत ही बेहतरीन गीत।

जिनकी आवाज में एक सच्चाई और टूटन थी। अब आप सोचेंगे टूटन का क्या मतलब होता है? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जब दिल टूटते हैं तो उस टूटन की कोई आवाज नहीं होती है, लेकिन प्यार भरों को जोड़ना, प्यार भरे दिल को जोड़ना जो सीधे दिल तक पहुंचती थी, उनके गाने सुनकर लगता है जैसे कोई अपना पुराना दर्द सुना रहा हो। उन्हें अक्सर राज कपूर की आवाज कहा जाता था, आवारा हूं और मेरा जूता है जापानी, जीना यहां मरना हुआ। ऐसे गानों की कई जोड़ियों को अपनी आवाज दिया और उन गानों को अमर बना दिया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, जिनकी आवाज के लिए हम बात कर रहे हैं वो है हमारे मुकेश दाजी, जिनकी आवाज में दर्द तो था ही, इसी कारण उन्हें आवाज के बेताज बादशाह भी कहा जाता है। और उनके गाने आज भी हम सभी बड़े ही शौक से और बड़े ही दिल से सुनते हैं। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो उनकी ही प्यार भरे गीतों को हम कैसे भुला सकते हैं? चाहे वो आज के जुगल जोड़ी क्यों ना हो, चाहे वो पुरानी ही जोड़ी क्यों ना हो, सभी के दिलों में आज के ये जो गीत हैं, ये पुराने मिक्स करके भी आज हम सभी लोगों को सुनने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं।

0: युगल जोड़ी।
1: महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हसी है, बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग, जो कि मुकेश जी की आवाज में गाया गया। आप देखिए इस गीत में कि कितनी बेहतरी से बताया है कि महबूब मेरे, यानी ये गीत ये बताता है कि तुम हो तो पूरी दुनिया है, सब कुछ है, और तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। प्यार कुछ ऐसा ही होता है, अगर आपके पास आपका हमदर्द, कोई आपका हमराज है, तो दुनिया बेहद खूबसूरत लगती है, और वो नहीं है तो मन करता है कि कुछ भी नहीं। ऐसा ही होता है प्यार, फिर चाहे वो आप उसे किसी भी रिश्ते में ले लीजिए, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो आपका माता पिता से आपका रिश्ता हो, या कोई भी रिश्ता हो, जब कोई हमारे दिल के बहुत करीब होता है तो हमें यही लगता है कि तुम हमेशा हमारे पास रहो, बस कहीं दूर मत जाओ। इसी एहसास को, इन्हीं बातों को, इन्हीं भावनाओं को बहुत बेहतरी से अपनी आवाज के साथ उन्होंने निखारा है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में उन्हीं का ये बेहतरीन गीत, महबूब मेरे तू है।

0: ट्रेनिंग अगर शास्त्रीय संगीत की थी तो उनके गानों की सुरों की गहराई में परफेक्शन साफ झलकती थी। बिल्कुल, जिनकी ट्रेनिंग अगर शास्त्रीय संगीत में की गई है तो उनकी नींव भी उतनी ही मजबूत होती है। बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। जो कि हमारे अगले सिंगर हैं मन्ना डे, जिनकी आवाज को आज भी हम बड़े ही अच्छे वाले मूड में सुनते हैं। मुश्किल धुनों के बादशाह, ऐसे गाने जो दूसरे गायक मुश्किल समझते थे, वो मन्ना डे साहब ने बड़ी ही आसानी से गा लेते थे। जैसे लागा चुनरी में दाग, पूछो न कैसे मैंने, हर मूड में फिट और हर अदा में फिट, उनकी आवाज को बड़े ही शौक से और बड़े ही चाह से हम सुनते हैं। क्लासिकल ही नहीं, उन्होंने मस्ती भरे रोमांटिक और दार्शनिक गाने भी गाए। तो क्या आरजे गुमसुम, आप उनके गानों के बारे में कुछ जानती हैं?
1: बिल्कुल आरजे ख्वाहिश, तो चलिए बताते हैं आपको उनके बहुत ही बेहतरीन गाने, जो कि है मस्ती भरा है समा। जब आप थोड़े दुखी हो, किसी से झगड़ा हुआ हो, किसी ने आपको कुछ कह दिया हो और मन हो कि थोड़ा मस्ती करनी है, तो सुनिए मन्ना डे का ये गाना। क्योंकि मस्ती भरा है समा जब आप सुनेंगे ना, तो आपका मूड यूं बदल जाएगा। और साथ ही साथ इनका दूसरा गीत है तू प्यार का सागर है। बिल्कुल, तू प्यार का सागर है ये गीत। आप जानते हैं कि मन्ना डे ने किसे संबोधित किया है? उनका कहना है कि तू प्यार का सागर है ये उन्होंने डेडिकेट किया है अपनी माँ, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके लिए उनकी माँ ही प्यार का सागर है, जिन्होंने बचपन से लेकर उन्हें हमेशा इतना प्यार दिया, इतना सराहा कि जो वो नहीं सोच रहे थे कि उन्हें नहीं मिल सकता है, वो भी उन्हें मिला। तो इसी तरह जब हम बात कर रहे हैं प्यार की, तो भाई कैसे भूल सकते हैं हम अपनी माँ को, जो हमेशा हमेशा हमें इतना प्यार करती है कि लगता है कि बस अब तो और किसी की जरूरत ही नहीं है, माँ ही अपने आप में संपूर्ण है। तो आइए सुनते हैं उनके यही मस्ती भरे प्यारे से गीत, और खो जाते हैं और करते हैं।

0: मखमली आवाज और आवाज में जादू, जिसमें हल्का सा कंपन, जिसको कहते हैं वाइब्रेटो। वाइब्रेटो उनकी खास पहचान थी। कहते हैं ना कि किसी की आवाज में वाइब्रेशन होता है, जिसमें माइक में बोलने पर एक कंपन सी आती है। तो आप खुद सोचिए कि जब उनकी आवाज में कंपन हुआ करती थी और उनके गानों में वो कंपन साफ साफ झलकता था, तो यानी ऐसे सिंगर्स की आवाज जो होती है ना, वो बड़ी ही मखमली मानी जाती है। उनके गानों में उदासी और नजाकत इतनी खूबसूरती से मिली हुई थी, मानो उसी में वो फिट की गई हो, जो सुनने वाले हमेशा उनकी आवाज को सुनकर खो जाया करते थे। जैसे जाए तो जाए कहां, इतना सा मुझ में तू प्यार बढ़ा। गजल के मामले में अगर बात की जाए तो सिर्फ फिल्मी गायकी नहीं, बल्कि बेहतरीन गायक और गजल गायकी के रूप में भी उनको सभी ने सुना। उनकी गायकी में उर्दू अदब की मिठास झलकती थी। एक्टर भी रह चुके हैं। कम लोग जानते हैं कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में अभिनय भी किया और आज उनकी अभिनेता को भी हम सराहते हैं। सादगी भरा स्वभाव तो हर किसी का होता है, लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी थी कि आवाज की तरह नर्म और प्यारी सी आवाज। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वैलेंटाइन डे वीक में कई ऐसे सिंगर्स की आवाज में चुन चुन के गानों को लेकर के आए हैं, तो आज ये गुमसुम, क्या तलत महमूद जी के लिए कोई ऐसा गीत है आपके पास?
1: बिल्कुल है मेरे पास, जो कि है मेरी दुनिया में बस तुम ही तुम हो। बिल्कुल जैसा कि आपने गीत सुना, मेरी दुनिया में तुम ही तुम हो। तलत महमूद कहते हैं कि हमारे अंदर जब कोई खास चीज होती है, वही खासियत हमारी पहचान बन जाती है। उनकी पहचान बनी उनकी खास आवाज, जिसमें कि जो भी उनकी आवाज सुनता था ना, उनकी आवाज में वो जो एक खास चीज थी, वो थी उनकी आवाज में वो कंपन। जो भी सुनता था वो यही कहता था कि बहुत ही खूबसूरत है। उनकी इस बात को लेकर बहुत लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें ये भी कहा कि अरे इस आवाज के साथ कहाँ आप बड़े बन पाओगे, लेकिन फिर भी सबको पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपनी आत्मविश्वास के साथ, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ गाने गाए और जब वो गाने रिलीज हुए तो इतने हिट हुए कि वो सफलता के शिखर पहुंचते ही चले गए। इसीलिए कहते हैं कि हमारी हर एक कमी कभी कभी हमारी खासियत भी बन सकती है।
0: तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

0: जैसा कि आप सभी को पता है, हेमंत कुमार जो कि वाराणसी में जन्मे और पले, बनारस की मिठास एक पान से, पान खाए सैया हमार, ये इस गाने से बेहद उन्हें उपलब्धि मिली। हेमंत कुमार मुखोपाध्याय था, उनका नाम सबसे पहले मुखोपाध्याय था। वे मुख्य रूप से बंगाली थे और उन्होंने बंगाली तथा हिंदी दोनों भाषाओं में अपार लोकप्रियता पाई। अब आती है गायन शैली की बात, तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बंगाली गीतों से की, लेकिन बाद में ही हिंदी फिल्म संगीत में अपनी अलग पहचान बना ली। उनकी आवाज बेहद मुलायम और गहरी थी। रोमांटिक गीतों की अगर बात करें तो क्या ही कहने, जैसा कि लव सीजन चल रहा है हमारा, वैलेंटाइन डे, तो उनके ऐसे कई गाने हैं जिनको सुनकर के आज भी दिल हमारा आवारा हो जाता है, यानी कि है अपना दिल तो आवारा। पर हम चलते हैं सीधे आरजे ख्वाय आरजे पर हम चलते हैं सीधे आरजे गुमसुम के पास।
1: तो उनका एक बेहद ही प्यारा गीत जो कि है हाल कैसा है जनाब का, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है जो कि आप सुन सकते हैं, और इसे सुनिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि देखिए कितने प्यार से, कितनी नजाकत से पूछा है।
0: मैं चाहती हूँ कि आरजे गुमसुम ने हाल पूछा है जनाब का गाया था कि पूछा था,
1: गा करके पूछा था।
0: ये तो वही वाली बात हो गई ना कि कुछ ऐसे खाने पीने के चीजें आती जिसमें हम लोग कहते हैं ना, इसे खा कर पियो या पी के खाओ।
1: दोनों ही चीजों में स्वाद आपको पता चल ही जाना है।
0: तो ये हेमंत कुमार का जो गाना था हाल कैसा है जनाब का, तो आइए अपना हाल भी बताइए आकर के इस खूबसूरत से नगमे को सुनने के बाद।

0: हिंदी फिल्म और संगीत के इतिहास में ये एक पहला सुपरस्टार माना जाता है। वे न केवल एक अद्भुत आवाज वाले गायक थे बल्कि जबरदस्त अभिनेता भी थे। उनकी आवाज और भावात्मक अभिव्यक्ति ने उस समय के संगीत को एक नई ऊंचाई दी। कहा जाता है कि लगभग 36 फिल्मों में अभिनय किया, उनमें से अधिकांश हिंदी और बंगाली भाषा की थी। उन्होंने लगभग 185 से ज्यादा गीत गाए, जिसमें कई आवाज आज भी बेहद रूप से हम सुनते आ रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है, KL सहगल साहब। उनकी आवाज कलाकारों पर गहरा असर डालती थी। बाद के महान गायक लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफी एंड मुकेश जी ने भी उनकी कला को प्रेरणा का स्रोत बना दिया। और कहा जाता है कि पुराने सिंगर्स, चाहे हम कह देते हैं कि ये भाई पुराने जमाने के सिंगर्स थे, लेकिन उनकी ताजगी, उनकी मिठास, उनकी मासूमियत आज भी हम सभी के जहन में इस तरीके से है मानो अभी कल ही की तो बात हो।
1: बिल्कुल, और वही ताजगी, वही मिठास, वही बातें उनके गीतों में साफ झलकती हैं। इतना ना मुझसे तू प्यार कर,
0: ना ना आज गुमसुम ऐसे नहीं, कुछ ऐसे। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कुछ ऐसे नगमों को हम सुनेंगे रात के सफर में। तो ये था दोस्तों रात का सफर, यानी कि भूले बिसरे गीत में आज गुमसुम मैं आरजे ख्वाहिश की तरफ से। तो हम नए सफर में फिर से मिलेंगे एक नई सीरीज की ओर, यानी कि एक नए सफर की ओर लेके चलेंगे रात के सफर में। तब तक के लिए मैं आरजे ख्वाहिश,
1: मैं आरजे गुमसुम,
0: हम दोनों लोग फिर से आएंगे एक नए सफर को लेकर के। तब तक के लिए शुभ रात्रि।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को